0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो खुश।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुनेरी आवाज 107.8 एफएम वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।

0: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना एमपी छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ज्ञान की कुछ बातें। आशा करती हूँ आप हेल्दी वेल्दी होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं चिंता और भय रूपी दो दुश्मन की। कहा गया है कि चिंता रावण की बेटी है प्रथम दृष्टि में। यह बात पूरी तरह से सही प्रतीत होती है क्योंकि चिंता बहुत कुरूप होती है, परंतु फिर भी मनुष्य इसे छोड़ नहीं पाते, इसी से तंग होते हैं और इसी में उलझे भी रहते हैं। चिंता मनुष्य को रावण मनोविकारों और दुर्बलताओं का बंदी बनाकर रखती है। उसी तरह देखते हैं कि भय पर विजय अनिवार्य है। अगर रावण का एक सर्वशक्तिमान इसका बेटा भी है जिसका नाम है भय, अगर कोई चिंता के चंगुल से निकलने की ठान भी लेता है तो फिर उसका यह भाई उसके आगे आ खड़ा होता है। चिंता और भय ये दोनों मिलकर मनुष्य को रावण का गुलाम बनाकर रखते हैं और निरंतर उसका शोषण करते हैं। भय कुरूप है जिसका मुख कभी मनुष्य देखना भी नहीं चाहता है। यह छुपकर वार करता है और इसके बारे में इसके वार को बड़े बड़े योद्धा बुद्धिमान भी पहचानने में चूक जाते हैं। इसका सांकेतिक चित्रण रामायण में रावण के सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद के रूप में दिखाया गया है, जो अपनी गर्जन से सभी को भयभीत कर देता था। जीवन में सफलता पाने और रावण की जेल से छूटने के लिए भय पर विजय अनिवार्य है। भय का वार बाहर ही और अंदर भी होता है। भय दोनों ही तरफ से वार करता है, बाहर से भी और अंदर से भी। बाहरी रूप है असफलता का, पराजित होने का, प्रतिष्ठा और पोजीशन को खो देने का, आर्थिक नुकसान का, दुश्मनों और ईर्ष्या करने वालों का, दुर्घटना, अनहोनी, बीमारी या मृत्यु आदि का। आंतरिक भय का रूप होता है अपने पर विश्वास ना होने का, जैसे अपनी कार्य क्षमता पर संदेह का भय, जिसे नर्वसनेस भी कहते हैं। अपने किए गए गलत कर्मों या पापों की आत्मग्लानि से उत्पन्न भय, अज्ञात भय, अनुमान एवं आशंका जनित भय, इच्छाओं के अपूर्ण रह जाने का भय, अपनों की उपेक्षा का भय, भविष्य की अज्ञात गति का भय, काल्पनिक भय और अंधविश्वास जनित भय इत्यादि। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपसे फिर आकर मिलती हूँ और अपनी चर्चा इसी तरह जारी रखते हुए आइए सुनते हैं इस गीत को।

तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और आगे की चर्चा हम जारी रखते हैं, चिंता भय रूपी दो दुश्मन। भयभीत व्यक्ति जो होता है आशंकित रहता है, डर की बीमारी लोभ मोह आलस्य या अहंकार की तरह हमेशा प्रकट नहीं होती। यह परिस्थिति आने या कुछ भी अनचाहा होने की प्रकट हो जाती है। यह डर मनुष्य के मन में कई सीमाएं बना देता है, जिनमें मनुष्य सीमित होकर ही रह जाता है और बाहर निकलने की कोशिश करते ही भय का नागफन फैला लेता है। जैसे कि यह विचार कि मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरी ताकत ही नहीं, मेरा भाग्य बस यहाँ तक ही मेरा साथ देगा, इससे आगे नहीं, इससे ज्यादा का सोचते ही असफलता या अनिष्ट का अज्ञात भय प्रकट हो जाता है। समस्या हो या अवसर, दोनों ही हालात में या जो भयभीत जो व्यक्ति आशंकित ही रहता है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मन में जो बाहरी डर है उनके सच होने की कई संभावनाएं उसे नजर आने लगती है। उदाहरण के तौर पर घर से बाहर निकलने पर कोई भी व्यक्ति किसी दुर्घटना से घायल हो सकता है, लेकिन ऐसा सोचकर लोग घर से बाहर निकलना नहीं छोड़ देते, लेकिन सावधानी के संस्कारों को विकसित करते हैं। एक होता है, परंतु क्या होता है, भयभीत व्यक्ति का ध्यान जो है सावधानी और समाधानों की जगह केवल अशुभ संभावनाओं की ओर टिका रहता है। भय नकारात्मकता की ऊंची दशा की ओर बढ़ने का नाम है, और इस स्थिति में चाहे व्यापार या व्यवहार हो अथवा पद प्रतिष्ठा या जीवन के समाप्त होने की कोई भी संभावना भयभीत व्यक्ति को वही कई प्रकार से दिखाई देती है। यदि यह कमजोरी ज्यादा बढ़ जाए तो मानसिक रोगी में बदल जाती है। आंतरिक भय इच्छाओं की व्याकुलता, मनोविकारों से उत्पन्न दुर्बलता और आशाओं की पूरा होने न होने के अंदेशों द्वारा सताता है, जिनका स्वरूप होता है अनुमान, दुखद स्मृतियों और नकारात्मक ख्यालों की बेचैनी व घबराहट। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपसे फिर आकर मिलते हैं, और तब तक के लिए सुनते हैं इस गीत को।

तो स्वागत है आपका फिर से इस कार्यक्रम में। और चर्चा हम अपनी जारी रखते हैं इसी तरह, चिंता व भय रूपी दो दुश्मन, हिम्मत का टूट जाना ही मूर्छा है, ये सारे एहसास मन बुद्धि के आगे धूम की तरह छा जाते हैं, जिससे बुद्धि को सोचने समझने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। और ऐसे में बुद्धि मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों का निदान नहीं कर पाती और व्यक्ति उन्हीं विचारों से घायल और निराश हो जाता है। इन्हें ही हम रावण के शक्तिशाली मायावी बेटे मेघनाद द्वारा बादलों में छिपकर किए गए गुप्त प्रहार कर सकते हैं। जो लक्ष्य में मन लगाए हुए लक्ष्मण को मूर्छित कर देते हैं। हिम्मत का टूट जाना ही मूर्छा है और ईश्वरीय ज्ञान की संजीवनी इस मूर्छा का उपचार। लेकिन उस संजीवनी को लाने वाले हनुमान समाप्त कर एक परमात्मा राम के निश्चय और बल के उमंग उत्साह में उड़ने वाले हनुमान ही हो सकते हैं। देखो तय भय के मूल में मुख्य दो बातों का अभाव। भय का समाधान भय से भागना या उससे जूझते रहना, मतलब भय से भागना और मतलब उससे जूझते रहना होता है। नकारात्मकता से व्यक्ति जितना ही जूझता है उतना ही फंसता है, क्योंकि इस जूझने की प्रक्रिया में भी वह ध्यान तो नकारात्मकता की ओर ही देता है। इसीलिए 100 झूठ को गलत सिद्ध करने की मेहनत करने की बजाय एक सत्य को दृढ़ता से अपना लिया जाए तो 100 झूठों से युद्ध करने की हाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। भय के मूल में जो होता है मुख्य दो बातें हैं, इसमें मुख्य दो बातों का अभाव भी होता है, तो या तो ज्ञान का अभाव या फिर अपनी शक्तियों का वो भूल जाना होता है। यदि ज्ञान की जागृति है तो यह वह जो भय है वो भय को उत्पन्न ही नहीं होने देती, और शक्ति है तो भय विचलित नहीं कर सकता। आत्मा उस परिस्थिति या समस्या को जीत लेती है। परमात्मा की शिक्षाएं ज्ञान और शक्तियों का महासागर है। जब मनन चिंतन द्वारा इस सागर का मंथन किया जाता है तब ज्ञान गुणों के अनेक रत्न एवं संजीवनी प्राप्त होती है, एवं ज्ञान के गुह्य अनुभव आत्मा को भूली हुई शक्तियों को जगा देती है। यही अनुभव आत्म स्थिति और अचल बना देते हैं। यही अचलता वास्तविक अमरता है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इसकी

तो स्वागत है आपका फिर से इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। तो हमारा आज का विषय है चिंता को भय रूपी दो दुश्मन। परमात्मा के संग का रंग एक होता है, परमात्मा के संग का रंग आत्मा को निर्भय और साक्षी बना देता है। अर्जुन की भांति सर्वशक्तिमान परमात्मा को सदा अपने सारथी यानी कि मार्गदर्शक के रूप में याद रखने वाले निर्भय हो जाते हैं। अंगद की तरह परमात्मा के एक बल एक भरोसे पर अपने संकल्प का कदम जमा लेने वाले भी सर्व संदेहों से मुक्त हो जाते हैं। हनुमान की तरह एक बार राम नाम लेकर अर्थात परमात्मा को याद से परमात्मा की याद से चाहे विशाल और जब चाहे लघु हो जाते हैं और अपने उमंग उत्साह की उड़ान से समस्याओं के कैसे भी सागर को पार कर जाते हैं और निर्भय रहते हैं। विशाल होना अर्थात ऊंचा मनोबल और लघु होना अर्थात विनम्र और सरल होना। यहाँ शारीरिक रूप से छोटे या बड़े होने की बात नहीं बल्कि परमात्मा की याद की शक्ति से समय अनुसार शक्ति को धारण करने की बात है। जब भाव और भावना से परमात्मा से दिल का संबंध जोड़ लिया जाता है तो उसके संग का रंग आत्मा को निर्भय और साक्षी बना देता है। आत्मा की अनुभूति जो होती है आत्म अनुभूति और परमात्मा के साथ जो होता है परमात्मा की अनुभूति चित्त को उन विकारों से मुक्त कर देती है जो अशुद्ध कामनाओं के अपूर्ण रह जाने का भय पैदा करते हैं। परमात्मा प्रेम की लगन अंतरात्मा को पवित्र कर देती है और पवित्रता आत्मा को सुखी और संतुष्ट कर देती है। फिर आत्मा स्वयं में ही इतना संपन्न अनुभव करती है कि ना तो उसे कुछ बाहर से पाने की लालसा ही बांध सकती है और ना ही कुछ खो जाने का भय भयभीत कर सकता है। इस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान आत्म अनुभूति योग के निराले अनुभव परमात्मा प्यार और संबंध की अनुभूति एवं दिव्य संस्कारों की पवित्रता आत्मा को ऐसा समर्थ बना देती है जो रावण का कोई भी रूप या विघ्न आत्मा को भयभीत नहीं कर सकता। और यही वो अमोद शास्त्र है जो हमें सदा काल के लिए विजयी बना देते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए। ओम शांति।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड, मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज, ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की जोड़ में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणे की आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अब एक निवेद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट की जब हमने बात की थी तो हमें लगा था कि अच्छा सेल्फ को मैनेज करने की बात होगी, लेकिन इस पूरी श्रृंखला में जिस तरह से हम देख रहे हैं सेल्फ कहीं बाहर की बात नहीं बल्कि अपने ही अंदर जो मैं हूं उसको पहचानने की बात थी। और अगर पिछली कड़ी को देखें तो हम सारे लेबल सारे पर्दों को हटाकर सारे बाहरी आवरणों को हटाकर खुद तक पहुंचे थे कि मेरी अपनी सही पहचान क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि फिर जहां मेरी अपनी पर पहचान हुई कौन हूं मैं ये जाना, तो उसके बाद वैल्यूज कौन सी होंगी मेरे पास और फिर जीवन का पर्पस क्या होगा। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। जहां पिछली कड़ी अगर हम देखते हैं तो बहुत सी बातें करते करते रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते देखते सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आई थी, बहुत सी और चीजें देखी थी। तो फिर हमने पिछली कड़ी में ये जाना था कि मेरी अपनी सही पहचान क्या होती है, कौन हूँ मैं। आई थिंक फाइनली वी हैव टॉक्ड अबाउट इट कि मैं वो चैतन्य शक्ति, वो एनर्जी, वो बीइंग हूँ। अब आगे हम वैल्यूज इसी पर बेस करें,
1: क्योंकि जब हम देखते कि जब तक आइडेंटिटी का आंसर राइट नहीं आता हु एम आई, तब तक हम एक अलग ही दिशा में चल रहे होते हैं। जैसे हमने वो सारे लेबल्स देखे तो लेबल्स के आधार से हमने वैल्यूज देखे कि इफ आई एम अ प्रोफेशनल तो मेरी वैल्यूज क्या है, इफ आई एम अ मदर तो मेरी वैल्यूज क्या है, इफ आई सी माई सेल्फ ओनली एज एन इंडियन तो मेरी वैल्यूज क्या है। सिमिलरली अपने पर्पस को भी देखे उसी के साथ, राइट। अब आपके इतने सारे लेबल्स हैं, लेट्स से आप एक लेबल ले, आई एम अ मदर, तो पर्पस ऑफ लाइफ क्या बन जाता?
0: टू टेक केयर ऑफ माई चिल्ड्रन इन द राइट वे, इन द राइट यू नो डायरेक्शन।
1: तो किसी भी आप हाउसवाइफ को पूछे कि आपके जीवन का पर्पस क्या है, मेरे बच्चों को बड़ा करना, उनके अंदर अच्छे संस्कार डालना, तुरंत व्हिच इज फाइन, वेरी फाइन। आप एक डॉक्टर से मिलते हैं, पूछिए आपके जीवन का पर्पस क्या है, तो तुरंत क्या आंसर निकल कर आएगा?
0: मेरा अपना काम अच्छा करना, पेशेंट्स को ठीक करना,
1: विच इज वेरी नोबल, नोबडी इज डिनाइंग दैट। लेकिन इज दिस माई पर्पज ऑफ लाइफ और इज दिस द रोल दैट आई एम प्लेइंग इन लाइफ? हीलिंग, इज दिस द पर्पज ऑफ माई लाइफ या इज दिस माई जॉब, माई प्रोफेशन, माई रोल? अब कई बार हम समझते कि ये है मेरा जॉब, लेकिन उसमें मैं इतना पैशनेट हूं, मैं उसको इतना दिल से कर रहा हूँ, एंड विच इज ट्रू के मैं ना पूरी सिंसियरिटी से कर रहा हूँ, तो यही मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है।
0: मैं मिशन भी बना लेता हूँ कई बार,
1: मेरे जीवन का जो
0: मिशन है, मेरे जीवन का मिशन।
1: यस, तो हु एम आई आंसर के ऊपर ही हमारा पर्पस और वैल्यूज डिपेंड करता। तो आज जो एक छोटी सी हम गलती कर बैठे वो ये कि अपने रोल्स को, अपने रिश्तों को, अपने जिम्मेवारियों को ही अपना पर्पस ऑफ लाइफ बना लिया। जो जॉब में हम थे वही मेरा पर्पस ऑफ लाइफ बन गया। एक प्रोफेशनल को देख लो, व्हाट्स योर पर्पस ऑफ लाइफ? टू बिकम सो एंड सो इन द कॉर्पोरेट लैडर, रीच हियर एंड देयर, दैट कैन बी माय गोल। लेट्स मी नॉट मिक्स कि मेरा गोल क्या है और मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, क्योंकि आपका प्रोफेशन भी टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ किसका है? मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर हमने क्या किया, जो हम आई होप एवरीवन डिड इट विद अस यस्टरडे, कि अपने लेबल्स को जैसे जैसे हम साइड पर रखते गए तो वी केम टू द फाइनल आंसर कि मैं कौन हूं, ये सब कुछ मेरा है, यहां तक कि ये शरीर भी ये मेरा है, मैं हूं वो शक्ति, एनर्जी, कॉन्शियसनेस जो इसको चलाती है, जो ये सारे रोल्स
0: प्ले करती है,
1: जो ये सारे रिश्ते निभाती है, लेकिन मैं आई कौन है, वो आई का आंसर आ गया। तो जो हमने तीन क्वेश्चंस देखे थे कि जो अपने जीवन में बहुत फोकस्ड होकर चलेंगे उनके तीन क्वेश्चंस के आंसर होते हैं, हु एम आई, वेयर एम आई एंड व्हाई एम आई हियर। दीज थ्री आंसर्स वी वांट। तो हु एम आई आया कि आई एम दिस प्योर बीइंग एनर्जी। जैसे हम ये कॉन्शियसनेस में बैठते कि मैं ये वो चैतन्य शक्ति हूं, अगर रोज इसको थोड़ा बार बार करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, तो यू विल रियलाइज कि जो व्हाई एम आई हियर यू नो एंड वेयर एम आई, तो जो जब हु एम आई आता तो उसका नेचुरल इम्पल्स ये आता कि थॉट क्रिएट करना, कर्म में आना और लोगों के साथ एनर्जी एक्सचेंज करना, दिस इज वेयर आई एम इन द फील्ड ऑफ रिलेशनशिप्स। मेरा इस सृष्टि पर शरीर लेकर आखिर ये पर्पस क्या है, मैं क्यों हूँ, टू कम इनटू रिलेशनशिप और टू कम इनटू एक्शन विद अदर सोल्स. आत्मा का नेचुरल इंपल्स है एनर्जी लेना,
0: टू इंटरैक्ट. यस,
1: टू इंटरैक्ट, ये नेचुरल इंपल्स है. लेकिन वो मुझे तभी समझ में आता जब मुझे याद आता कि हु एम आई एंड वेयर एम आई. आई एम इन दिस फील्ड ऑफ रिलेशनशिप्स एंड व्हाई एम आई हियर. कि ये जो मेरा नेचुरल सेल्फ पता चला तो मेरी जो क्वालिटीज है, मेरी जो वैल्यूज है, उनको औरों के साथ शेयर करना, ये मेरा नेचुरल संस्कार बन जाता है. इफ आई रिमेम्बर दैट आई एम अ कॉन्शियंट बीइंग, देन टू गिव लव टू पीपल विल बिकम माय नेचुरल. दैट्स व्हाई आई एम हियर. लेकिन जब वो आंसर नहीं हो रहा होता,
0: पर्पस ऑफ माय लाइफ बिकम्स लाइक टू गिव लव टू पीपल.
1: व्हाट डू यू थिंक?
0: यस, दैट मेक्स सेंस.
1: What do you think? Now think about it. Because a purpose of life kiska dhoondna hai?
0: The being.
1: Who am I? I am a human being. I am not a human doing. Abhi tak purpose of life kiska dhoond rahe the? Jo doing tha. Mujhe kya karna hai, kya karna hai, kya karna hai. Kyunki who am I? Mother. To purpose of life usse connected. Who am I? Doctor. Purpose of life usse connected. Who am I? A pure being. Purpose of life?
0: उससे कनेक्टेड.
1: इसीलिए जब तक वो हुए माई आंसर नहीं हो रहा था तो पर्पज ऑफ लाइफ ढूंढना वॉज इम्पॉसिबल. सो नाउ वेन आई सिट बैक, सो इट डजेंट मीन दैट आई एम नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस मेडिसिन, या इट डजेंट मीन कि मैं अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखने वाली.
0: कितना इजी हो जाता है पता है पर्पज ऑफ लाइफ को समझ पाना फिर. और हम सारा टाइम ढूंढते रहते हैं, उसी को, उसी में इन्वॉल्व रहते हैं और हर चीज में उसी को ढूंढ रहे होते हैं कि ये मेरा पर्पस है, ये मेरा पर्पस है. इन द वे यू सेड, वेरी ट्रू. कितनी बार हम अपने प्रोफेशन बदल रहे होते हैं, कितनी बार
1: हमारी
0: बार बार बदलता जाएगा हमारा.
1: नहीं, और कई बार लगता है ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है, मैं अपना जॉब बदल कर देखता हूँ, आई विल फाइंड इट देयर. इट वॉन्ट कम टिल आई रिमेम्बर पर्पस ऑफ लाइफ किसका. आपको याद हो जब हम बचपन में खेलते हैं आपस में तो हम अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, यू नो, मैं ये बनूंगा, आप ये बनोगे, एंड ऑल दैट. वी ड्रेस अप इन डिफरेंट वेज और हमें वो खेल खेलना अच्छा लगता है. लेकिन खेल खेलते खेलते हमें ये तो याद रहता है ना
0: कि हम कौन है
1: और ये हमारा खेल है. और हमें ये भी पता होता है कि थोड़ी देर के बाद ये सारे जो हमने ओढ़े हैं अपने ऊपर, ये सारे उतर जाएंगे. यही खेल हम अपने जीवन की यात्रा में खेलते हैं. जैसे जैसे जैसे वी आर ग्रोइंग, हम एक एक लेबल अपने ऊपर ओढ़ते जा रहे हैं, विच इज पार्ट ऑफ द जर्नी. लेकिन सिर्फ ये था कि बचपन में ये याद था कि मैं कौन हूं और ये मैंने सारा कुछ ओढ़ा है. लेकिन अब क्या हो गया, जो मैं ओढ़ा है वो ही मैं हो गया. और उसको ही हमने मैं ये हूं, तो सारा कुछ जो मेरे जीवन में कनेक्टेड था अब वो उससे हो गया. एंड देन जो हमने पहले डिस्कस किया, जो हम कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि फॉर माई फैमिली आई हैव टू डू दिस जॉब. वाई? बिकॉज माई वैल्यूज एंड माई पर्पज ऑफ लाइफ वॉज फर्स्ट टेकिंग केयर ऑफ फैमिली. लेकिन जहां मुझे समझ में आया कि मैं कौन हूं, तो फिर मुझे अपना पर्पज ऑफ लाइफ ढूंढना बहुत ईजी हो जाएगा. तो जब हमें परमात्मा ने आकर ये स्मृति दिलाई, ये सब कुछ आपका है, आप एक चैतन्य शक्ति, और वो भी कैसे, प्योर लवफुल. क्योंकि परमात्मा ने आकर हमें अपनी ही पर्सनालिटी, जो कि हमें पता थी लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल गए थे, उसकी स्मृति में नहीं थे, तो परमात्मा ने, शिव बाबा ने आकर हमें याद दिलाया, प्योर बींग, लवफुल बींग, हैप्पी बींग, ब्लिसफुल बींग, पावरफुल, शक्ति स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप. जब आप एक मदर हैं तो पर्पस ऑफ लाइफ था बच्चों को बड़ा करना. जब आप एक पीसफुल बीइंग हैं तो पर्पस ऑफ लाइफ
0: टू क्रिएट पीस. ओह यस,
1: सिंपल. जब आप एक हैप्पी ब्लिसफुल बीइंग हैं, पर्पस ऑफ लाइफ
0: टू क्रिएट दैट हैप्पीनेस.
1: आंसर चेंजेस. नाउ आई एम अ पीसफुल बीइंग playing the role of a mother. The sentence change ho gaya.
0: It becomes so easy to create happiness then, you know, playing mother also.
1: Yeah.
0: Pehle kyunki wo responsibility
1: change ho jayega aapka.
0: Kyunki pehle responsibility bachcho ko dekhni itni zyada hai ki bacche ne doodh piya ya nahi piya, bacche ne homework kiya ya nahi hai. Ye to yaad hi nahi rehta ki happiness bhi create karni hai. Tension is baat ki hoti hai ki wo doodh pi le ya wo khana kha le ya wo apna homework kar le. एंड उसमें हम कितना एंग्री और कितनी बार कितने परेशान।
1: अब ये जो हम एंगर क्रिएट कर देते, दर्द क्रिएट करते, हर्ट क्रिएट करते, ये सब करते करते हम क्या भूल गए, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या था। और इसलिए वो बार बार बीच में वो क्वेश्चन ट्रबल करता, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ करते हुए मैं अपना पर्पस ऑफ लाइफ अचीव नहीं कर रहा था। क्योंकि मैं जो हूँ उसको मैं भूला हुआ हूँ ना, मैं खुद अपने को ही भूला हुआ हूँ। और मैंने वो जो ओढ़ लिया अपने अराउंड बॉडी, फिर रिलेशनशिप, प्रोफेशन और लेबल्स, तो वो सबको ओढ़कर उसी को बचाने में और उसी को प्रोटेक्ट करने में मैंने जो अपने आप को कहा कि इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस और इतने सारे एडजस्टमेंट्स हम करते गए, और अंदर ही अंदर मैं जो था वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट होता गया। एंड दैट्स व्हाई द बिगेस्ट प्रॉब्लम एवरीबडी हैज टुडे इज डिससैटिस्फैक्शन। दे लुकिंग फॉर सैटिस्फैक्शन। व्हाई आर वी लुकिंग फॉर सैटिस्फैक्शन?
0: इफ आई एम डूइंग द रोल, सी इफ आई एम डूइंग द कैरेक्टर,
1: Why am I not satisfied? अपना तो हर एक चीज कर रहे हैं ना, अच्छी तरह से निभा रहे हैं, संतुष्टता क्यों नहीं है? क्योंकि एक्चुअली मैं जो हूँ, आई एम नॉट बींग एबल टू एक्सपीरियंस दैट, आई एम नॉट बींग एबल टू एक्सप्रेस दैट। तो अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा, यू नो, जैसे लेट्स लुक एट इट लाइक अ लिटिल गेम, कि अंदर कोई है जो बंद है, ठीक है, ऊपर से किसी ने सारा उसको ढक लिया, तो जो अंदर वाला है वो तो अंदर बिल्कुल अपने आप को कैसा फील कर रहा है, सफोकेटेड, कि मैं जो हूँ मैं अपने आप को
0: एक्सप्रेस
1: नहीं कर पा रहा, मैं सारा दिन इन्हीं का ध्यान रख रहा हूँ। तो फिर मेरे अंदर वो घुटन होती है कि मैं असंतुष्ट हूँ, मैं डिससैटिस्फाइड हूँ। सब कुछ कर लिया जीवन में, प्राप्त भी कर लिए वो सारे गोल्स ऑब्जेक्टिव्स, बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ बन गए, बच्चे भी वेल सेटल्ड हो गए, प्रॉपर्टी भी सारी है, क्या चीज नहीं है आपके पास? सैटिस्फैक्शन। कॉमन आंसर है आज, सैटिस्फैक्शन अंदर वो एक वैक्यूम है। क्यों? ये सब डूइंग पार्ट सारा कर लिया। क्यों वैक्यूम है? क्योंकि पूरी जीवन कैसे बिता रहे हैं, हु एम आई, ये लेबल, तो पर्पज ऑफ लाइफ क्या समझा, ये करना, वैल्यूज क्या समझे, इसका ध्यान रखना, इसको सेफ रखना। मैं निग्लेक्ट हो गया पूरी तरह से, तो मेरे अपने ही जीवन की यात्रा में अपनी वैल्यूज और अपना पर्पस नहीं एक्सपीरियंस किया, तो संतुष्टता संतुष्टता कहाँ से आएगी?
0: नहीं आ सकती।
1: आई विल फील सफोकेटेड
0: एंड वी आर ऑल फीलिंग दैट। यस,
1: अब हम गुस्सा कर रहे हैं, जस्टिफिकेशंस भी दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो बात हमें तकलीफ तो देती है, बिकॉज हु एम आई इज अ पीसफुल बीइंग। तो जैसे ही
0: और हमने अपने साथ ही कितना अन्याय किया है,
1: क्योंकि हम अपने आप को जानते नहीं थे ना, इसलिए तो न जानने के कारण हम बाहर ही ढूंढते रह गए सारा कुछ, और हमने सोचा कि पता नहीं क्या होगा मेरा
0: हम अदरवाइज वैसे कितने अच्छे हैं, मतलब अब देखें
1: सारे बहुत अच्छे हैं,
0: इसलिए कि हमारे पास जो जो जिम्मेदारी थी, जो जो हमने अपना पर्पस माना, जो जो हमने देखा कि हम ये चीजें हैं, लेबल्स को समझा, तो वो तो हमने अच्छी तरह से निभाया ही,
1: लेकिन निभाते हुए अपना ध्यान नहीं रखा। कल से भी हमने वही निभाना है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि मेरा रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो सारे चेंज हो जाएंगे, बट सिर्फ पर्पस ऑफ लाइफ होगा टू क्रिएट हैप्पीनेस, टू क्रिएट लव, क्रिएट नॉट टेक, अगेन
0: क्रिएट।
1: अभी क्या था, क्योंकि मैंने अपने को नहीं पहचाना, तो मैं अपनी वो वैल्यूज और पर्पस कहाँ ढूंढ रहा था, चाहिए तो था मुझे, क्योंकि दैट्स हु एम आई, लेकिन मैं उसको फिर कहाँ ढूंढ रहा था,
0: मेरा बच्चा अच्छा होमवर्क कर ले तो मेरे को खुशी होगी, उसके अच्छे मार्क्स आ जाए तो होगी,
1: तो क्योंकि मैंने अपने पर्पस ऑफ लाइफ डूइंग में डाल दिया कि कुछ करने से मैं अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करूंगा, तो मैंने सोचा वो लक्ष्य प्राप्त करने से मुझे खुशी मिलेगी। क्योंकि फाइनली एट द एंड ऑफ द डे क्या चाहिए,
0: खुशी,
1: संतुष्टता, शांति। कहाँ ढूंढ रहे हैं कि ये पूरा होगा लक्ष्य तो मुझे मिलेगा, ये लक्ष्य को मैं प्राप्त कर लूंगा तो मिलेगा, क्योंकि वन थिंग इज वेरी क्लियर कि जब हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तभी संतुष्टता होती है, नहीं तो देयर विल ऑलवेज बी अ कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन हमने लक्ष्य क्योंकि बाहर बना दिए, तो फिर हम खुशी को भी कहाँ ढूंढने लगे,
0: बाहर। इनफैक्ट वही, क्योंकि पहचान ही नहीं थी, पहचान ही जिसको माना उसी से जुड़ा हुआ तो लक्ष्य बनाया, और हम अमेजिंग, यस वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट, हम ये बार बार कहते हैं कि मैंने अचीव तो कर लिया, लेकिन फिर एक अचीवमेंट के बाद इसीलिए हम दूसरे अचीवमेंट की तरफ भागते,
1: बिकॉज खुशी तो मिली नहीं थी,
0: और
1: ना?
0: तब हम ये कहते हैं कि हम तो भागते ही रहेंगे फिर इस चक्कर में।
1: तो अब क्या हुआ, एक कॉन्शियसनेस शिफ्ट से कि मैं ये सब नहीं, मैं आत्मा हूँ, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ सिंपल हो गया एंड माय पर्पस इन लाइफ इज टू एक्सपीरियंस माय क्वालिटीज एंड टू एक्सप्रेस देम. शांति, प्यार, पवित्रता, इसका अनुभव करना. और अनुभव कब होगा? जब हम उनको अपने इंटरैक्शंस में एक्सपीरियंस कर रहे थे. अब हम ना अनुभव करते हैं ना उनको हम एक्सप्रेस करते हैं, हम एक्चुअली उनकी डिमांड करते हैं. मुझे शांति दो, मुझे प्यार दो, मुझे रिस्पेक्ट दो. मिल नहीं रहा, अगेन क्वेश्चन, मैं यह क्या कर रहा हूं? सो नाउ द ट्रांजैक्शन साइड हैज टू चेंज. ऐसा नहीं, ऐसा. एंड नाउ लेट्स ट्राई एंड पुट दिस एज द पर्पस ऑफ माई लाइफ. पर्पस ऑफ माई लाइफ टू बी हैप्पी एंड देन प्ले माई रोल्स. पर्पस ऑफ माई लाइफ बी पीसफुल देन प्ले माई रोल्स.
0: इट्स माय कोर वैल्यू. इट्स माय कोर वैल्यू.
1: अब अपनी वैल्यूज की लिस्ट निकालिए. जब हमने पहले लेबल के आधार से वैल्यूज की लिस्ट निकाली तो निकली पावर, पोजिशन, फैमिली, ये सब वैल्यूज की लिस्ट. आई केयर फॉर देम. लेकिन जब मुझे ये समझ में आता कि मैं तो चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, तो आत्मा की वैल्यूज की लिस्ट क्या निकलेगी?
0: पीस,
1: पीस, हैप्पीनेस, लव. अब आने दो सिचुएशन आपके सामने, अब प्रायोरिटाइज करना.
0: आई कैन एक्चुअली जस्ट विजुअलाइज, यू नो, कि अब अगर बच्चे को पढ़ाना है या बच्चे ने खाना खाया है नहीं खाया, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ अब अगर हैप्पीनेस क्रिएट करना है, लव क्रिएट करना है, वो क्रिएट करके अगर मैं खिलाती हूँ,
1: वो क्रिएट करते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्ले करना है, तो सारा जीवन जीने का तरीका चेंज हो जाएगा.
0: And in fact, it'll become much easier to do all these things, you know.
1: And most important is ki sab kuch karte hue bhi andar se kaisa feel karenge.
0: Bahut acha. In fact, hamari energy utni waste nahi hogi. Because hame bahut zyada efforts nahi karna pad raha hoga.
1: And for jo cheeze hum anubhav karna chahte hain, hum unko bahar nahi dhoondenge. And we will be very clear ki mere jeevan ka purpose hai, apne ko pehchan liya, ab usko har sambandh mein, har role mein, हर प्रोफेशन में. आई एम अ डॉक्टर, हीलिंग इज माय प्रोफेशन, लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ
0: लव, हैप्पीनेस.
1: लव और हैप्पीनेस के साथ वो करना. हॉस्पिटल गए, बहुत सारे मरीजों को ठीक तो कर दिया, लेकिन इन द प्रोसेस कई बार गुस्सा क्रिएट किया, कई बार दर्द क्रिएट किया, किसी और को डांट दिया, ये किया, तो आई विल नॉट फील कंटेंटेड even after healing so many people.
0: उस वक्त जब वो सर्जरी करके that momentarily जो happiness है वो definitely
1: देखे. वो तो achievement है. Achievement है, which is very good. मैंने एक task लिया, एक जिम्मेवारी उठाई, वो achieve कर लिया, very nice. लेकिन करते हुए experience क्या किया, express क्या किया, इस पर अब ध्यान रखना शुरू करना है कि energy कौन सी है. क्योंकि my purpose of life is the being, उसका पर्पस ऑफ लाइफ नॉट द डूइंग. बस वो छोटी सी एक जो कहे ना कंफ्यूजन जो हो गई, उससे हर स्टेप पर गलती होती गई. हर स्टेप पर. इसीलिए परमात्मा ने आकर कहा सिर्फ एक छोटी सी भूल कि मैं आत्मा हूं, ये भूल गया, और मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, और शरीर से जुड़े हुए जो सारे लेबल्स थे, इस एक विस्मृति से, इस एक भूल से एवरीथिंग वेंट all over wrong. Today, all our anger, stress, pain, everything is only because of this one illusion. And that's why one correction, bahut mehnat nahi hai gusse ko khatam karna, isko no, one correction.
0: Actually, wo wahi baat hai na ki jaise hum ye kahe ki hum ye cheeze hatani hai, wo bahut mushkil ho jata hai. Lekin agar ye hi thought create hona hai ki ye mere jeevan ka purpose hai, you know, to create happiness.
1: Simple है, मेरे जीवन का purpose क्या? खुश रहना. खुशी चाहिए नहीं. अभी तक क्या था जीवन में, क्या चाहिए? खुशी चाहिए. खुश रहना, और फिर खुश रहकर क्या करना? Automatically औरों को वो तो मुझसे transmit होती जाएगी. Tomorrow let's go back to our office.
0: खुश खुश.
1: Yeah. In this purpose, very clearly written here. Purpose of life: to be happy, to be peaceful, and do the work. Answer yourself in the evening. आज का दिन कैसा बीता? अब कंटेंटमेंट कहाँ ढूंढ रहे हैं बाहर?
0: और पर्पस लेकर अगर जाएंगे तो हम कर भी लेंगे.
1: कर भी लेंगे, क्योंकि जो भी पर्पस हम उठाते हैं उसको हम कर लेते हैं. सिर्फ वो फिल इन द ब्लैंक पर ही अगर गलत आंसर लिख दिया था तो फिर उसी के ऊपर सारा फोकस था. तो पर्पस ऑफ लाइफ टुमारो मॉर्निंग, राइट फ्रॉम सुबह जब अपने बच्चों को उठाना है,
0: हैप्पीनेस से उठाना है. Oh, yes, that's challenging.
1: No, that's not challenging. That's the purpose of your life. Purpose of life situation dependent to nahi hota. लोग अपना पर्पस अचीव करने के लिए बड़े से बड़े चैलेंजेस को क्रॉस करते हैं, इसलिए पर्पस ऑफ लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट. ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, तो मेरा लक्ष्य क्या हो सकता है? मेरे से ही तो जुड़ा हुआ हो सकता है,
0: मेरी वैल्यूज को एक्सप्रेस करूँ. यस,
1: तो कल से बस ये वो ही काम करना है सारा जो पहले कर रहे थे. नथिंग एल्स इज चेंजिंग आउटसाइड, फोकस इज चेंजिंग इनसाइड.
0: मुझे लगता है शिवानी, इसमें काम सिर्फ ये करना होगा,
1: ध्यान रखना, ध्यान रखना है,
0: सिर्फ याद रखना है, बाकी सारी चीजें तो अपने आप ही होनी है.
1: इसीलिए तो परमात्मा बार बार कहते हैं एक छोटी सी बात, सोल कॉन्शियसनेस.
0: अच्छा, हमने क्या किया? ऑटोमेटेड हमने ये चीज कर ली और उन पे काम करते गए. वो जो सारे काम है वो ऑटोमेटेड हो जाएंगे.
1: वो ऑटोमेटेड हो जाएगा, यहाँ ऑटोमेटिक नहीं होगा. अपना क्रिएट हमें करना है. काम तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जब राइट अभी भी काम तो वैसे भी हो रहा है. संतकारा काम तो हमें करना ही आता है, सिर्फ क्या करना नहीं आ रहा था, क्रिएट कैसे करना है. और क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था कि शांति कैसे क्रिएट करनी, खुशी कैसे क्रिएट करनी, मैं औरों से मांगने लगे, आई विल अचीव दिस, तब मुझे ये होगा. और वो अचीव, लाइक मेनी पीपल आई हैव मेट, दे विल से मेरे जीवन का पर्पस है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे इस रोल तक, यू नो, इस टाइटल तक पहुंचना है. और टेंशन हुई हुई है उस बात की कि मैं पहुंचूंगा नहीं, करूंगा नहीं, पहुंच पाया या नहीं, रास्ते में कौन से ऑब्स्टिकल्स आएंगे. तो पर्पस ऑफ लाइफ चैलेंजिंग हो, तो मैं कौन ध्यान में रखकर अब जीवन की यात्रा पर कल चले, तो देखते हैं कल का दिन कैसा बीतता है.
0: बिल्कुल. लेकिन सिस्टर शिवानी, एक बात यहाँ ये जानना चाहेंगे कि मुझे अपने आप को पहचानते हुए मैंने अपने वैल्यूज और पर्पस ऑफ लाइफ को तो समझा, लेकिन मैं जो अभी तक जिंदगी जी रहा था या जी रही थी, उसमें बहुत सारे चीजों को मैंने पर्पस बनाया हुआ था और वो एक ऐसा ट्रेंड पे जी रहा था. तो ये पर्पस ऑफ लाइफ मेरे साथ हमेशा हर पल याद रहे मुझे, इसके लिए यू नो हाउ शुड आई
1: प्रिपेयर? इसके लिए मुझे सुबह अपने आप के साथ बैठकर, जो हम कहते हैं मेडिटेशन, तो हम मेडिटेशन में अपने आप के साथ बैठकर अपने आप को फिर याद दिलाते. शुड वी डू इट नाउ फॉर अ फ्यू मिनट्स?
0: दैट विल बी नीडेड.
1: लेट द बॉडी सिट वेरी रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल, और शरीर को हल्का रखते हुए अपने आप को महसूस करने की, देखने की कोशिश करें. ये शरीर तो जड़ है, मैटर है. ये हाथ तो वही करता जो मैं इससे कराता हूं. ये आंखें वही देखती जो मैं इसके द्वारा देखना चाहता हूं. मैं कौन हूं जो चूज करता है इस शरीर के द्वारा क्या करना है? शरीर को चलाने वाली शक्ति, एनर्जी, कॉन्शियसनेस, मैं आत्मा हूं. आई एम एन इटर्नल एनर्जी, पॉइंट ऑफ लाइट, द सोल. अपने आप को धीरे धीरे देखने का प्रयास करें. शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, अति सूक्ष्म छोटा सा टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, जस्ट लाइक अ लिटिल स्टार इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड. दिस इज मी, ये मैं हूं जो ये शरीर धारण कर अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाता. मैं शक्तिशाली आत्मा हूं. आई एम अ पावरफुल बींग. हर परिस्थिति का मैं मास्टर हूं. शांति, खुशी मेरी अपनी प्रॉपर्टी, मेरी अपनी नेचर है. दिस इज हु आई एम. आई एम अ पीसफुल सोल. आई एम अ ब्लिसफुल सोल. मेरे जीवन का लक्ष्य अपनी वैल्यूज को, अपने गुणों को अनुभव करना और अपने संबंधों में लेकर आना. टू एक्सपीरियंस पीस एंड टू एक्सप्रेस इट इन एवरी इंटरेक्शन. टू फील लव एंड टू एक्सप्रेस इट इन एवरी इंटरेक्शन. Because this is who I am. Tomorrow, as I go on in the journey of my life, मुझे सिर्फ यही याद रखना है कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ. आई एम अ ब्लिसफुल बींग एंड आई विल एक्सप्रेस इट विद एवरीवन आई मीट बिकॉज दिस इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ. ओम शांति.
0: ओम शांति. लाइफ बिकम्स एक्चुअली सो ब्यूटिफुल. थैंक यू सो मच कि आज हम जो अभी तक इतने पर्पस ढूंढ रहे थे, सचमुच में एक क्लैरिटी के साथ ना सिर्फ अपनी वैल्यूज, अपनी पहचान, बल्कि पर्पस ऑफ लाइफ समझ में आता है. शांति. आज तक जो भी हमने बीड़ा उठाया, जो भी हमें कर्तव्य निभाने को कहा गया, हमने बहुत अच्छी तरह से निभाया. हमें पर्पस मिला लाइफ का, जो भी रोल था उसमें, जो भी पर्पस था उसे बहुत अच्छी तरह से निभाया. हम कर्मठ लोग हैं, अच्छा काम करते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं. लेकिन जब अपनी पहचान हुई तब समझ में आया कि सबसे बड़ा अन्याय तो अपने ही साथ हो रहा था, क्योंकि जो मेरी अपनी पहचान है, जो मैं हूँ, उसकी कोर वैल्यूज को ना समझते हुए मैं अपना ही पर्पस नहीं जान पा रहा था. सो आज जब ये पता चला है, एक ऐसा पर्पस जो मेरा रियल पर्पस है लाइफ का, वो जब समझ में आ रहा है तो उसे भी मैं उसी खूबी से निभाऊंगा, ये मैं समझ सकता हूँ. सो कौन हूँ मैं, मेरी वैल्यूज क्या है, मेरा पर्पस क्या है, ये अब समझ में आया. निभाऊंगा कैसे, वो भी उसी शिद्दत से और उसी कर्मठता से. कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सवाल आपके मन में उठता है, आपका हम स्वागत करते हैं. आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0-9873-444-666, 0-9879-944-555, 0-9999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@pkmail.org.

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में, तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल, सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। लाइफ स्किल्स यानी जिंदगी जीने की कला कैसी हो, कैसे हम वो टेक्निक सीखे, ये इस पूरी श्रृंखला में हम सीख रहे हैं। अगर पिछली कड़ी को देखें, अभी तक बहुत से रिश्तों पर काम कर रहे थे। इनफैक्ट रिश्तों पर काम करते करते अपने साथ, मन के साथ एक रिश्ता हमने कायम किया था। अब हमने जाना है कि शरीर के साथ रिश्ता कैसे कायम करना है। बॉडी के वो डिफरेंट ऑर्गन्स, वो डिफरेंट पार्ट्स जो डिजीज्ड हैं या नहीं भी डिजीज्ड हैं, लेकिन उनको लेकर अगर प्रॉब्लम है या वैसे भी, उनके साथ भी क्या रिश्ता कायम किया जा सकता है, ये एक नई बात है। लेकिन हमने हर बार एक्सपेरिमेंट किए हैं, अनुभव हमें बताता है कि हमारा प्रयास जो है वो सही दिशा में है। आज फिर आगे बात करते हैं विजुलाइज कैसे करना है। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। आपने कहा था कि कई तरह से, तीन तरह से जो बीमारी आ गई है, या अगर बीमारी नहीं भी है तो बॉडी के साथ, ये बॉडी ऑर्गन्स के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, वो एक बार हमें फिर बता दें।
1: सबसे पहली बात तो है विचारों पर, कि विचारों को हम सही बना करके बॉडी पर पॉजिटिव इफेक्ट कर सकते हैं, बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है अपने इमोशंस के साथ डील करके, कि भी इमोशंस को हम सही करें, और विशेष जो गुण की आवश्यकता है हर एक ऑर्गन को, वो गुण का हम गहराई से अनुभव करें तो वो ऑर्गन्स हेल्दी हो जाएंगे। ये जैसे कि विटामिन्स की तरह है, कि भी हम टॉनिक लेते हैं तो ऑर्गन्स का भी अपना टॉनिक है जिससे वो ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं। और तीसरा है विजुअलाइजेशन, क्योंकि बुद्धि व चित्रों की भाषा समझती है, तो सही रूप से जो बीमारी हुई है उसकी पैथोलॉजी को समझ ले कि उसमें क्या नेगेटिविटी आई है, और फिर उस पैथोलॉजी को रिमूव करने के लिए पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करे। कैंसर के बारे में भी हमने सोचा, वो विजुअलाइजेशन प्रतिदिन करे तो भी बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।
0: वो परिणाम हमें कितनी देर में, क्योंकि हम हर बार परिणाम को अनुभव करना चाहते हैं, तो वो कब हमें अनुभव होना शुरू हो सकता है?
1: करीब 10 दिन में तो अनुभव होने ही लगेंगे। लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं कि जो रेगुलर नहीं कर रहे हैं, है ना, इतने फेथ से नहीं कर रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी कमजोर है, तो अप्रोक्सीमेटली 8 वीक्स तो जरूर करना चाहिए। है 8 वीक्स तक गिव अप नहीं करो। अगर 8 वीक्स तक आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे, फिर भले आपको निर्णय पर आओ कि इसकी इफेक्ट हो नहीं रही है, लेकिन नियमितता से, पूरे विश्वास से अगर इसका अभ्यास करें तो 8 वीक्स में डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे।
0: अब अगर इस तरह से गुणों पर कंसंट्रेट करने की बात है, तो उसमें कुछ हमें मेडिटेशन के पैटर्न में परिवर्तन करना होगा?
2: नहीं, परिवर्तन नहीं करना। मेडिटेशन मीन्स व्हाट, कि आत्मा के ये 7 क्वालिटीज हैं, ये ऑलरेडी हैं, इट्स नॉट नीडेड फ्रॉम एनीवेयर एल्स, ये है, हम भूल गए हैं, हमें उसको री इमर्ज करना है। और जो मुझ आत्मा की 7 क्वालिटीज है, वो 7 क्वालिटीज का परमात्मा सागर है। आई एम अ पीसफुल सोल, शिव बाबा इज द ओशन ऑफ पीस। तो इफ आई एस्टैब्लिश माई कॉन्टैक्ट विद द ओशन ऑफ पीस, तो मुझे अपनी पीस को एक्सपीरियंस करना वो ईजियर हो जाता है। अब उसको जो इसके साथ हमें जोड़ना है बॉडी के विजुअलाइजेशन के साथ, तो हम जो मेडिटेशन हमेशा करते आए हैं सेम करें, उसमें एक थर्ड एस्पेक्ट ऐड कर दे कि परमात्मा से शांति की किरणें मुझ आत्मा पर, और फिर मुझ आत्मा से लंग्स पर, या परमात्मा से वो प्यार की किरणें मुझ आत्मा पर, वहां से मेरे हार्ट पर। सो आई जस्ट ऐड वन मोर स्टेप। लेकिन इसमें हम ये करते हैं कि पहले जो अपनी मेडिटेशन कर रहे हैं उसको करें, क्योंकि मेडिटेशन मींस अपने आप को बॉडी से डिटैच करके सोल कॉन्शियस करना। अब कई बार नहीं तो हम उस बॉडी के पेन, फिर पेन के कारण उसकी प्रॉब्लम्स, फिर थॉट्स कई बार उस तरफ चले जाते हैं। तो हम थोड़ा सा ध्यान ये रखते हैं, सपोज माय टाइम इज 15 मिनट्स, मैं कर पाती हूँ तो 15 मिनट्स आई डू माय मेडिटेशन, व्हेन देन एज अ फॉलो अप टू दैट आई कंटिन्यू विद दिस, नॉट कि शुरू में
0: ही आई कम बैक, यू नो, यस, व्हेन आई कम बैक फिल्ड, यस,
2: देन आई डू दिस। तो सपोज अगर मैं रोज 15 मिनट बैठ रही हूँ, लेट्स से, तो वो ही 15 मिनट करो और वो गुण पर चिंतन करो, परमात्मा से वो शक्ति अपने अंदर भरो, उसके फॉलो अप आई विल डू दिस फॉर अनदर 5 मिनट्स, 10, जैसे भी कंफर्टेबल है। और फिर वो सिर्फ मॉर्निंग में या इवनिंग में नहीं, इवन वो जो हम 1 मिनट आफ्टर एवरी 1 आवर करते हैं, उस हर 1 मिनट पे भी हम ये कर सकते हैं। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, वो लेजर बीम की तरह परमात्मा से मुझ पर और मुझसे इस हाथ पर पड़ रहा है. इमेजिन इफ यू कीप डूइंग इट सो मेनी टाइम्स इन द डे, yes it will work definitely. 8 weeks to acha lamba time hai. It will definitely work.
0: I think I can actually feel ki wo jaldi hi results aane shuru.
1: ye bahut hi achhi baat Shivani ben ne clear ki hai. kai log ye samajhte hai ki bas shuru mein hum baith jaye bas shanti mil rahi hai, meditation nahi karna hai, wo nahi kaam karega. kyunki ye jo sari technique hai, jab aap deeper level par jate hain, hai na, atma ki bhi gehrai mein jate hain, tab uski effect hoti hai. और पहले मेडिटेशन करो 10 मिनट 15 मिनट, तब आप गहराई में जाएंगे. फिर विजुअलाइजेशन तो 2 मिनट भी काफी हो, लंबा ना भी हो, सिर्फ उसमें क्लैरिटी, जितनी क्लैरिटी होगी, जितनी अच्छी इंटेंसिटी होगी, 2 मिनट में पावरफुल रिजल्ट्स मिल जाएंगे.
0: अच्छा, अगर हर रोज हम 2 मिनट ही कर पाए,
1: पहले 15 मिनट तो मेडिटेशन, हाँ, फिर 2 मिनट विजुअलाइजेशन.
2: बेसिकली 15 मिनट में अपने वो एनर्जी तो क्रिएट कर ली ना. अस्सी जैसे गिरीश भाई ने कहा, वो विटामिन है जो आपने अपने ऑर्गन को देना है, लेकिन पहले वो विटामिन अपने अंदर प्राप्त तो कर ले. आप मार्केट से जाकर पहले वो विटामिन लेकर आते हैं, दैट कुड टेक 15 मिनट्स. गोली खाने में कितना टाइम लग रहा है?

0: आई जस्ट कांट इमेजिन, विजुलाइज नहीं कर पाते हैं।
1: आई विल गिव यू वन एग्जांपल कि जिस पर मैंने खुद काम किया है इसलिए मैं आपको गहराई से बता पाऊंगा, वह है डायबिटीज। कि डायबिटीज आज बहुत बढ़ रहा है, हमने इस पर रिसर्च भी की, छोटा सा बताता हूँ फिर विजुअलाइजेशन को हम डिस्कस करें। कि हमने करीब 52 पेशेंट्स पर यह प्रयोग किया और उनको 15 दिन तक वहां पर माउंट आबू में रखा ताकि 15 दिन अच्छे से हम उनकी लाइफस्टाइल में परिवर्तन ला दे। शुरू में उनकी ब्लड शुगर चेक की, 15वें दिन भी ब्लड शुगर चेक की, साथ साथ ब्लड इंसुलिन को भी चेक किया जो आमतौर पर चेक नहीं करते। शुरू में ब्लड इंसुलिन को चेक किया, 15वें दिन भी चेक किया और फिर पाया कि उनमें से 72% 15 दिन में उनका डायबिटीज कंट्रोल में आ गया
0: बिना दवाई के।
1: नॉर्मल दवाइयां वो ले रहे थे लेकिन पहले तो कंट्रोल में नहीं था। हमने दवाइयों में कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ परिवर्तन था कि उन्होंने रेगुलर थोड़ी एक्सरसाइज की, खाने में परिवर्तन किया और मेन फोकस था ये विजुअलाइजेशन पर, मेडिटेशन पर। अर्थात कहेंगे कि मोर देन 70% मेडिटेशन की इफेक्ट हुई। और जो अमेजिंग चीज इसमें थी कि उनका जो ब्लड इंसुलिन था वो पहले दिन और 15वें दिन में 48% कमी आई।
0: अच्छा, इंसुलिन लेवल की?
1: हाँ, ब्लड इंसुलिन। आम व्यक्ति यह सोचेगा कि भी इंसुलिन के तो हम इंजेक्शन लेते हैं, वो कम क्यों हुआ? परंतु इसका अर्थ है कि अभी शुगर को कंट्रोल करने के लिए उन 15 दिनों में उनको 48% कम इंसुलिन की जरूरत पड़ी, क्योंकि वो जीवन शैली तो परिवर्तन हुई और यह मन के द्वारा भी उन्होंने अपनी बीमारी पर नियंत्रण प्राप्त किया। उनको जो विजुअलाइजेशन कराते हो, मैं आपको बताता हूँ कि डायबिटीज के पेशेंट्स में हमें मुख्य रूप से 4 लेवल पर काम करना होता है जो विजुअलाइजेशन करना है। सबसे पहला तो यह जो पेंक्रियास की ग्रंथि है, यह गाजर जैसी ग्रंथि है पेट में, उस ग्रंथि को आराम देने की जरूरत है।
0: अच्छा, वो ओवरवर्क है,
1: उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, इसके कारण डायबिटीज हुआ। तो सबसे पहला तो यह स्टेप है। सेकेंड स्टेप है कि अब इंसुलिन को रिलीज करना है। उनमें पेनक्रियाज सही मात्रा में इंसुलिन रिलीज नहीं कर रहा है। दवाइयां भी क्या काम करती है, वो पेनक्रियाज को स्टिम्युलेट करके इंसुलिन को रिलीज करती, या आप इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। तो मन के द्वारा भी यही किया जा सकता है। फिर थर्ड स्टेप है कि जो शुगर खून में घूम रही है, डायबिटीज मतलब क्या कि खून में बहुत ज्यादा शुगर है, जरूरत से ज्यादा, और उसको रक्त में आवश्यकता नहीं है। शुगर की आवश्यकता तो शरीर की मांसपेशियों में है, ब्रेन को शुगर की आवश्यकता है, तो ब्लड वेसल्स से उसको मसल्स में भेजना, वह कार्य भी हम मन के द्वारा कर सकते हैं।
0: तो अदरवाइज जो ब्लड में जो शुगर है वो मसल्स तक क्यों नहीं जा पाते?
1: क्योंकि एक है ना द्वार होता है, कहे सिंपल सी भाषा में समझाता हूं कि भी एक द्वार है, वो आमतौर पर जैसे आप कुछ खाना खाते हैं खून में शुगर बढ़ती है तो द्वार खुल जाता है और जो शुगर है वो मसल्स में चली जाती है। परंतु डायबिटीज के पेशेंट्स में वो द्वार बंद ही रहता है, वो खुलता नहीं है
0: क्योंकि इंसुलिन नहीं है।
1: हाँ, इंसुलिन सही मात्रा में नहीं है।
0: अच्छा, इंसुलिन
1: तो वो काम नहीं कर रहा है।
0: इंसुलिन है तो वो द्वार खोलता है।
1: हाँ, और वो सही मात्रा में हो तब वो रिसेप्टर पर अटैच होता है और द्वार खुल जाता है।
0: ओहो, अच्छा।
1: तो जितनी मात्रा में होना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं है। और चौथी बात जो मन से करनी है कि जो इफेक्ट हो गई ऑलरेडी डायबिटीज की, कि भी डायबिटीज के कारण जो हमारे नर्व्स है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं,
0: किडनी
1: पर सुन होने लगे हैं, किडनी पर इफेक्ट हो रही है, आंखों पर इफेक्ट हो रही है, हार्ट पर, तो उसको भी हमें रिवर्स करना है और ये मन के द्वारा भी कर सकते हैं। ये
0: चारों कैसे करें?
1: हाँ, चारों पर हमने अच्छे से काम किया। एक सबसे पहला तो है कि पेनक्रियास को आराम देना है, तो पेशेंट्स को ये बताया कि आप ठीक से ध्यान करो, जिससे शिवानी बेन ने बताया कि हम तो 15 मिनट करवाते थे, 15 मिनट अच्छे से ध्यान करो, जब ध्यान की गहराई में जाओ फिर आप ये अलग अलग तरीके से विजुअलाइजेशन करो। एक तो कि आत्मा से वो सफेद किरणें निकल रही है, बाबा से शक्ति ली, आत्मा में शक्ति भरी और फिर वो पेनक्रियास पर पड़ रही है और बादल की तरह चारों ओर छा गई, और नहीं पूरा बादल छा गया पेनक्रियास पर, उसको आराम मिल रहा है।
0: I could visualize actually. Cuddle it.
1: ना, उसको पूरा आराम मिला और पेनक्रियास अभी फिर से उसमें शक्ति आ गई, उसका कायाकल्प

0: हेल्प हो गया है,
1: रिलैक्स हो गई वो।
0: हाँ, वो रिलैक्स हुई अच्छे से। फिर अभी जो सेकंड लेवल है कि हमें इंसुलिन को रिलीज करना है, तो उसके लिए फिर से ये सोच सकते हैं कि अभी भी आत्मा से एक नाउ पावरफुल रे इज कमिंग, वो आती है पेनक्रियास को स्टिम्युलेट करती, और पेनक्रियास को स्टिम्युलेट करते तो उसमें से इंसुलिन रिलीज हो रहा है। एक व्यक्ति ने यह ड्रॉ किया कि भी पेनक्रियास है वो संतरे जैसा है, मौसम्बी जैसा है, उसमें जूस है, पेनक्रियास
1: अच्छा, तो
0: का जूस है। उसने
1: निकला।
0: कहा कि उसको मैं रिलैक्स करता हूँ अच्छे से, थोड़ा सा प्रेशर देता हूँ तो इंसुलिन रिलीज हो रहा है। ना, दिस इज साइकोलॉजिकल, बट दिस कैन रियली हैपन, क्योंकि अल्टीमेटली बुद्धि है वो पिक्चर्स को अच्छे से कैच करती है और इंसुलिन रिलीज हो सकता है। दूसरी एक बात हम लोगों को समझाते हैं कि कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास गरम गरम जलेबी बन रही है, तो क्या होगा?
1: मन करेगा खाने का,
0: हाँ, फिर क्या होगा? खरेगा तो
1: हम खा लेंगे,
0: नहीं,
1: पैसे
0: उससे
1: देंगे।
0: पहले क्या होगा? मुंह में पानी
1: अच्छा,
0: आएगा
1: मुंह में पानी
0: है ना, देखो वो सोच के ही वहां से गुजर रहे, मुंह में पानी आया। तो ये भी एक ग्रंथि है, ये
1: अच्छा,
0: सलाइवा जो है वह सलाइवा एक ग्रंथि से निर्माण होता है, सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है। जैसे इंसुलिन है ऐसे ही है, लेकिन अलग प्रकार का है। तो सिर्फ सोचने से सलाइवा निर्माण हो सकता है, तो इंसुलिन क्यों नहीं निर्माण हो सकता है? सब पेशेंट कहते हैं हाँ हाँ जरूर हो सकता है ना, तब उनको कन्विंस
1: तब
0: करके
1: ये, हाँ, तब ये एक्चुअली अब ट्रस्ट हो गया ना
0: हाँ
1: कि
0: इट
1: इट्स
0: वर्क्स,
1: पॉसिबल
0: पॉसिबल।
1: दैट इट इज
0: और
1: वर्किंग।
0: फिर प्रैक्टिकली बताते कि खाने से पहले, जैसे ही खाने की डिश आ गई, आप डाइनिंग टेबल पर बैठे, या तो उससे पहले भी, चाहे तो वहां टाइम नहीं है, आपने डिसाइड किया कि अभी मुझे लंच लेना है, डिनर लेना है, पहले 15 मिनट अच्छे से योग करो, फिर ये विजुअलाइज करो कि ऐसे पेनक्रियास को स्टिमुलेशन मिल रहा है, उसमें से जितना मुझे 15 यूनिट्स चाहिए तो 15 यूनिट इंसुलिन रिलीज हुआ। देन यू ईट योर फूड एंड इट रियली हैपेंस।
1: अच्छा, उतना ही रिलीज होगा।
0: हाँ,
1: तो हम थायराइड को भी तो कर सकते
0: हर
1: हैं,
0: हर ऑर्गन को
1: उतना ही
0: कर सकते
1: जितना
0: हैं।
1: चाहिए।
0: नहीं, जितना चाहिए उतना भी, और अगर भाई आपने किया आपको जरूरत नहीं है तो भी वो रिलीज करेगा। पहले भी मुझे इन बातों पर विश्वास था, परंतु ये घटना हुई तो ये फेथ और बढ़ गया। कुछ साल पहले माउंट आबू में ऐसी शिविर हुई थी, वहां एक महिला को डायबिटीज था, उनके पति को डायबिटीज नहीं था, वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, वो भी उसमें आए थे। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ करके उनको जब ये पूरी विधि करा रहे थे, तो उनके पति ने भी सारा किया और उनको अच्छा सा फेथ था, तो उन्होंने ये सचमुच किया अच्छे से कि भी इंसुलिन रिलीज हो रहा है, मेरी शुगर कम हो रही है। तो जैसे वो प्रयोग पूरा हुआ, उनको चक्कर आने लगे, है ना, वीकनेस लगने लगी, तो लगा इनकी शुगर कम हुई है, तुरंत उनको शुगर दी, थोड़ी तो ठीक हुए। भले एक
1: अच्छा,
0: मिस्टेक थी एक प्रकार से, परंतु इससे एक बहुत बड़ा फेथ डेवलप हो गया।
1: कि इट इज
0: मैंने
1: एक्चुअली वर्किंग।
0: मैंने सोचा कि अगर नॉर्मल व्यक्ति में शुगर कम हो सकती है तो डायबिटीज के पेशेंट में तो और इजी है।
1: और मुझे लगता है आज तक सबके अगर चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं शुगर थोड़ा सा तो
0: तो
1: लेवल
0: लेवल है
1: बढ़ा
0: ही,
1: होगा
0: हाँ, वो
1: ही।
0: थोड़ा सा कम हो तो अच्छा ही है। तो ये सेकेंड लेवल हुआ। फिर अभी थर्ड है कि भी ब्लड से शुगर को मसल्स में भेजनी है।
1: अब क्योंकि खाना खा लिया, उसके बाद का विजुअलाइजेशन।
0: उसके बाद का विजुअलाइजेशन कि आपने खाना खा लिया, अभी धीरे से शुगर बढ़ी और उस शुगर को मुझे कम करनी है। तो फिर से कि भी मैं गहराई से रिलैक्सेशन में गया और जो मेरे रिसेप्टर्स है वो भी एक्टिव हो गए, जो ब्लड वेसल्स में रिसेप्टर्स है वो सारे एक्टिव हुए, तो द्वार खुल गया और वो जो शुगर थी वो मसल्स में गई। उनको मैं और एक विजुअलाइजेशन कराता हूं। यह सोचो कि भी शुगर की जो कणिकाएं है ना, स्क्वायर स्क्वायर कणिकाएं, यह सोचो कि खून में ढेर सारी है, वो ढेर सारी कणिकाएं घूम रही है और वो दिक्कत दे रही है। अब वह शुगर के स्क्वायर से वो सारे मसल्स में जा रहे हैं और ब्लड में अब कम हो गए।
1: ब्लड सिर्फ रेड रेड रह गया,
0: हाँ,
1: वो व्हाइट
0: वो
1: व्हाइट
0: व्हाइट,
1: स्क्वायर्स
0: हाँ,
1: निकल गए।
0: स्क्वायर से वो
1: आई कैन
0: अंदर
1: एक्चुअली
0: चले
1: सी
0: गए।
1: दैट, मैं कर पा रही हूँ। और इसको एक्चुअली बनाया भी जा सकता है।
0: बना बना के बताते, प्रैक्टिकल जब पिक्चराइज करो ना तब इजी है। वन दूसरा एक कहते हैं कि भी आपकी शुगर अगर 250 है तो ये चित्र करो, 250 250 लिखा है सारे बॉडी में, 250 250 250 लिखा हुआ है, ब्लड में उतने सारे स्क्वायर है। अभी वो कम होने लगे, सारे मसल्स में चले गए, ब्रेन में चले गए
1: 200
0: और
1: हुए।
0: कम हुआ। हाँ, अभी 150 हो गई। तो भी आप अपना फिगर डिसाइड करो कि भी आपको चाहे कि भी मेरी फास्टिंग शुगर 110 होनी चाहिए, पोस्ट लंच 150 होनी चाहिए, तो रियल ये क्रिएट करो, बस 150 150 150 लिखा है और सचमुच हो गया।
1: वो ब्लड में जितना
0: या इन दैट
1: लिखो,
0: नो जीवन आत्मा में वह शक्ति है कि वह प्रैक्टिकली ब्लड से शुगर को मसल्स में भेज सकता है।
1: डज इट रिक्वायर क्वाइट लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन?
0: रादर देन कॉन्सेंट्रेशन नो, यू नीड मोर ऑफ मेडिटेशन, है ना, रिलैक्सेशन की जरूरत है। जितना आप डीप रिलैक्स होंगे, पीसफुल होंगे, उतना ही इफेक्ट अच्छी होगी।
2: आप शरीर से डिटैच्ड होंगे ना, जैसे हम दूसरों को राय ज्यादा अच्छी दे पाते हैं क्योंकि हम डिटैच्ड होकर उस प्रॉब्लम को देख रहे हैं। अभी तक हम डायबिटीज सोचते थे तो हम वी वर ऑलवेज इन पेन, मुझे क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, मेरा ही प्रॉब्लम है, मेरा ही ऑर्गन वीक है। अब डिटैच होकर हम उसको हील कर रहे हैं। इट्स लाइक अ डॉक्टर हीलिंग अ पेशेंट, नाउ आई एम हीलिंग माई ओन बॉडी। सो इफ आई गेट डिटैच्ड, लेकिन वो डिटैच्ड उस इलनेस से और उस पेन से हम तभी हो सकते हैं जब सोल कॉन्शियस है। इसलिए सोल कॉन्शियस होने के बिना ये करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक वही थॉट्स आ रहे हैं लेकिन बीच में कुछ और थॉट्स आ जाते
1: वो
2: हैं।
1: आते हैं, वही तो मैं कह रही हूँ, एकदम से सडनली यू नो कुछ अच्छा दूसरे फिर डाउट्स, मतलब क्या मैं अगर कर सकती होती तो क्या इतनी बीमारी होती।
2: एग्जैक्टली, क्योंकि वो इसलिए भी है, वी डोंट नो द पावर ऑफ द माइंड, हम अपने मन की शक्ति को नहीं जानते। हमारे ही मन ने ये बहुत सारे डैमेजेस क्रिएट किए, अब हमारा ही मन ये सारे जो हीलिंग है, माय माइंड विल डू इट। सी इफ माय माइंड कैन ब्रेक द थिंग, माय माइंड कैन हील द थिंग। अगर जो इन्होंने कहा कि वो द्वार है, वो जो रिसेप्टर है वो बंद हो गया, ये मेरे थॉट पैटर्न ने किया, तो फिर वो द्वार मेरे थॉट पैटर्न ही उसको खोलेगा ना। इट्स जस्ट दैट वो गेट बंद करते टाइम आई वॉज नॉट अवेयर, अब गेट खोलने का टाइम आई विल बी फुल्ली अवेयर दैट आई एम डूइंग इट, इट विल डेफिनेटली वर्क। लेकिन हमें रिजल्ट वो तभी मिलेगा जब हम पहले मेडिटेशन को अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये थॉट्स नहीं हम तब तक क्रिएट कर पाते। नहीं तो क्या होगा, एक थॉट क्रिएट करेंगे, कुछ और थॉट्स आ जाएंगी, और कुछ नहीं तो घर की कोई बात, ऑफिस की कोई बात आ जाएगी, देन द पावर ऑफ द थॉट विल नॉट वर्क। पावर ऑफ द माइंड टू वर्क, फिर वो थॉट पावरफुल, पॉजिटिव एंड कॉन्सेंट्रेटेड होगा, उसमें कोई
1: कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा,
2: डाइल्यूशन भी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि एक थॉट है कि द्वार खुल रहा है, दूसरा थॉट है ऑफिस में तो आज ये काम किया नहीं, देन तो क्या एक थॉट से मैं पॉजिटिव इमोशन क्रिएट कर रही हूँ, दूसरे थॉट से मैं स्ट्रेस क्रिएट कर रही हूँ, तो आई विल बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डोर एक्चुअली एक्चुअली, सो इट वॉन्ट वर्क प्रॉपरली। इट हैज टू बी वेरी फोकस्ड, चैनलाइज थॉट्स। इसलिए मेडिटेशन का जो अभ्यास रेगुलर रीति से करेंगे, पर उनके लिए ये करना इट्स जस्ट एन एक्सटेंशन, इट्स जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट यू आर ऑलरेडी डूइंग, सो बिकम वेरी सिंपल देन
1: एक्चुअली।
0: और एक एस्पेक्ट आपको बताता हूँ, जो डायबिटीज में है कि भी अधिकतर जो टाइप 2 डायबिटीज है लोगों को, कि जो करीब 30-40 साल के बाद होता है, टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन तो होता है, अधिक भी होता है, जिनको डायबिटीज नहीं है उनसे भी उनमें इंसुलिन ज्यादा होता है, परंतु इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, जिसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, और सरल भाषा में समझाते हैं कि जंग लग गया है। जैसे इंसुलिन चाबी का काम करता है और जो रिसेप्टर्स है वो ताले जैसे।
1: अच्छा, जैसे, तो वो इंसुलिन जो है वो जंग लगी चाबी
0: तो, हाँ, काम नहीं कर रहा। तो अगर नहीं, अगर ताले को जंग लगाए तो क्या करते, उसमें ऑयल डालेंगे, वो जंग खत्म होगा तो वही चाबी काम करने लगेगी। तो ऐसे डायबिटीज के पेशेंट्स को हमारे सारे शरीर में जंक लगा है, वो एक्सरसाइज की कमी के कारण भी लगा है, गलत आहार से भी लगा है, और नेगेटिव इमोशन से लगा है, टेंशन ग्रीड सभी नेगेटिव इमोशन से भी, उसे भी खत्म करना है। तो एक तो इमोशंस पर विजय प्राप्त करे और दूसरा विजुअलाइजेशन भी कार्य करेगा। इसमें जब हम पेशेंट्स को करवाते थे तो एक दो पेशेंट ने बहुत अच्छे यूनिक से विजुअलाइजेशन बताए। एक पेशेंट ने यह कहा कि मैं ये चित्र निर्माण करता हूं कि मेरे पास एक वैक्यूम क्लीनर है, यहां पर वैक्यूम क्लीनर लगाया है, वो वैक्यूम क्लीनर स्पिरिचुअल वैक्यूम क्लीनर काम कर रहा है और मेरी मेरा जो सारा जंक है उसको खींच लेता है, सारी बॉडी है एकदम उसका ऑरा अच्छा हो गया, ऑरा एकदम क्लियर हो गया, तो वो थोड़ा सा इंसुलिन ही काम करने लगा है और मेरी ब्लड शुगर कम हो गई,
1: तो फिर इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ रही
0: कम। हाँ, फिर काफी इंसुलिन उतने दिनों में हमने देखा है, 5-7 दिनों में भी इंसुलिन की आवश्यकता, मेडिसिन की आवश्यकता 50-60% कम हो जाती है।
1: इनफैक्ट अगर हम ये विजुअलाइजेशन देखें शिवानी, ये सिर्फ डायबिटीज या उसके लिए नहीं,
0: सब
1: हर ऑर्गन पे काम,
2: पेन मैनेजमेंट के लिए भी यूज हो पाएगा।
1: पेन के लिए कैसे कर सकते हैं?
0: पेन मैनेजमेंट के लिए पेन में दो बातें हैं, एक तो जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं जिसके कारण फिर दर्द होता है, और दूसरे जो नर्व्स है उसमें भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस आ रहे हैं, उसके कारण भी फिर अल्टीमेटली दर्द हो रहा है। तो दोनों प्रकार के विजुअलाइजेशन हो सकते हैं। एक तो मैं एकदम रिलैक्स टू मेडिटेशन की स्टेज में चला गया और बाबा की किरणें मिल रही है, एकदम जैसे ठंडी ठंडी किरणें मिल रही है और मेरे मसल्स को रिलैक्स कर रही है, मेरे सारे मसल्स रिलैक्स हो गए। ये भी विजुअलाइज करो कि मसल स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग कैसे दब जाती है, उसको मैंने रिलीज कर दिया।
1: हाँ,
0: या दूसरा मैं ये विजुअलाइजेशन बताता हूँ, जैसे कॉटन, मेडिकेटेड कॉटन होता है कि जिसको प्रेस किया गया है, तो ऐसे ही मसल्स भी प्रेस हो गए, उसको मैं लूज कर रहा हूँ और फिर से वो रिलैक्स हो गए, फिर से रिलैक्स हुए तो दर्द भी गायब हो गया।
2: आप डेंटिस्ट के पास बैठे हैं, आप ये एक्सपेरिमेंट करें। I've personally seen the dentist says आपको दर्द क्यों नहीं हो रहा, मैं रूट कनाल कर रहा हूँ, आपको पेन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि एक तो हम सोल कॉन्शियस स्थिति में बैठे हैं और उसको वो vibrations भेज रहे हैं, वो विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। डॉक्टर अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। पहले जब हम बैठते थे डॉक्टर के पास, we were creating thoughts of pain, you know, अब मुझे दर्द होगा, ये क्या कर रहा है, ये तो बहुत पेनफुल प्रोसेस है, तो जितना होना चाहिए था उससे भी शायद ज्यादा हुआ करता था। अब वी आर क्रिएटिंग द राइट काइंड ऑफ थॉट्स एंड द विजुअलाइजेशन टेक्निक। आत्मा की ये दोनों जो फैकल्टीज है, माइंड एंड इंटेलेक्ट, ये दोनों जब इतने ब्यूटिफुली हार्मनी में काम करती है कि मन थॉट क्रिएट करता, बुद्धि विजुअलाइज करती, एक्सपीरियंस होना ही होना है। दैट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड रिजल्ट कि माइंड एंड इंटेलेक्ट वर्किंग इन हार्मनी, इट वर्क्स। एंड एनी काइंड ऑफ पेन, नी पेन है, बैक पेन है, हेडेक है, स्टमक पेन हो रहा है, चोट लगी है, वूंड है, अभी अभी आपको चोट लगी है, आपको बहुत दर्द हो रहा है, सिट बैक, डोंट गेट इंटेंगल्ड इन द पेन, हाय मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इट बिकम्स अ विशियस साइकिल ऑफ पेन, जस्ट चेंज द पैटर्न ऑफ थॉट, क्रिएट दिस विजुअलाइजेशन, इट वर्क्स।
0: और एक बात ये भी है कि जो नर्व्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जा रहे हैं ये भी विजुअलाइज करो कि जो फास्ट इम्पल्सिस जा रहे हो, क्योंकि मैं आत्मा शांत हो गई, मैं शांत हुई तो ऑटोमेटिक नर्व्स पर जाने वाले इम्पल्सिस भी शांत हुए और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस कम हुए तो मेरा दर्द भी गायब हो गया। दिस ऑल्सो कैन वर्क। आप आर्थराइटिस का पूछ रहे थे। आर्थराइटिस क्या है कि दो हड्डियों के बीच में एक गैप होता है, उसके बीच में गद्दी है, कार्टिलेज जिसको कहते, कि भी ये गद्दी घिसने लगी है और करीब 25 इयर्स के बाद देखेंगे सबकी वो गद्दी घिस रही है, किसकी 1% है, किसकी 50% है। अगर 60-70% घिस जाए तो फिर नी रिप्लेसमेंट करानी पड़ती है। तो अभी इसमें क्या विजुअलाइजेशन का भी जरूरत क्या, एक तो बताता हूं पहले, उस पर जो प्रेशर आ रहा है ना, वो प्रेशर को हमें कम करना है। अगर ये विजुअलाइजेशन करे कि मेरे सारे मसल स्ट्रांग हो रहे हैं, एक्सरसाइज भी करिए उससे भी स्ट्रांग होंगे, विजुअलाइजेशन से भी वो मसल्स स्ट्रांग होंगे, और मसल जब स्ट्रांग हो गए तो वो हड्डी को पकड़ के रखेंगे। अभी कमजोर है तो उस पर प्रेशर आ रहा है।
1: अच्छा, तो वो गद्दी मेंटेन रहेगी,
0: मेंटेन रहेगी, वो जो गैप है वो मेंटेन रहेगा, तो पेन नहीं होगा। एक तो ये विजुअलाइजेशन काम करेगा। दूसरा ये अच्छा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि ये जो कार्टिलेज है ना, उसमें कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट से बनता है, ये केमिकल है जिससे बनता है, ग्लूकोसामाइन से वो बनता है। तो ये विजुअलाइजेशन करे कि जब वहां पर ब्लड फ्लो हो रहा है तब ब्लड के अंदर ये जो ग्लूकोसामाइन है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है, वो कार्टिलेज में डिपॉजिट होने लगा है, पहले नहीं हो रहा था, अब वो वहां पर जाकर के चिपक जाता है, वो चिपक रहा है और मेरा कार्टिलेज धीरे धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना। सचमुच फेथ से करो कि वह से 0.5 millimeter है, उसे धीरे धीरे बड़ा हो ही रहा है और कार्टिलेज अच्छा हो गया तो सपोर्ट मिल गया, तो दर्द गायब हो गया।
2: इतना क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि मैं आत्मा अपने शरीर को रचती हूँ। आई एम क्रिएटिंग माई बॉडी एक्चुअली। वी अंडरस्टूड आई एम क्रिएटिंग डेस्टिनी, आई एम क्रिएटिंग, बट आई एम क्रिएटिंग माई बॉडी। इसी अगर जैसे ये कहा कि कार्टिलेज डेवलप हो रहा है, आई एम क्रिएटिंग इट विद द पावर ऑफ माई माइंड। अगर ये मेरी रचना है तो मुझे इसको कितने प्यार से रचना चाहिए, लेकिन हम इसको कोसते रहते हैं सारा दिन, घुटना देखो मेरा कैसा है, दर्द ही होता रहता है। एक्चुअली आई एम सेंडिंग इट द रॉन्ग एनर्जी, तो मैं अपनी ही रचना का नुकसान कर रहे हो सारा दिन। एक लैक ऑफ अवेयरनेस थे हर जगह, जहाँ फायदा कर सकते थे नुकसान करते आ गए।
1: जो भी बोल रहे, जो भी सोच रहे, बहुत सोच समझ के बोले और कहें और सोचे,
2: सोचकर सोचे, पहले ध्यान से सोचे।
1: वेरी ट्रू शिवानी, डॉक्टर पटेल, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ हर बार कुछ अपने ही बारे में नया जानने को मिलता है और एक्सपेरिमेंट करने का हमारे पास स्कोप होता है। ओम शांति।

मेरी बॉडी जो अभी तक मुझे लगता था कि ऑटोमेटेड मोड में है, मुझे इसके सिस्टम्स के बारे में कुछ नहीं पता, पता भी है तो सारी चीजें डॉक्टर के हाथ में है, आज मैं खुद अपना हीलर हूँ, हीलर बन सकता हूँ, हीलर विद इन। व्हाई डोंट वी सर्च फॉर दैट कि कौन है, कौन से वो थॉट्स हैं, कौन सी वो फीलिंग्स हैं और कौन सा वो विजुअलाइजेशन है जो मेरे सारे डिजीजेस को हील कर सकता है। ये हम लर्न कर रहे हैं, ज्ञान आ गया, अब हमारा एक्सपेरिमेंट होगा। हम प्रयास करें, कोशिश करके देखें, इस प्लेटफॉर्म पे पता चला है कि रिजल्ट्स जरूर आते हैं। आपके अनुभव आपकी शक्ति बनेंगे और आपको और आगे पावरफुल थॉट्स क्रिएट करने में मदद करेंगे। हमारे फोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी। ओम शांति।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखे एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

दाब रहे हैं।

आइए इस विश्व के पालनहार उस निराकार को हम अपनी भावनाओं के स्वर में साकार करें। संगीत सुमन के अभिनंदन से सुकर्मों का आधार था।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन, आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान चिंतन, जहां हम विचारों की गहराइयों में उतरते हैं, ज्ञान के नए आयाम खोजते हैं और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मनन करते हैं। इस कार्यक्रम में हम दर्शन, संस्कृति, विज्ञान, समाज और आध्यात्मिकता से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा करते हैं। हमारा उद्देश्य है आपके मन में नए विचारों का संचार करना और आपको चिंतन की एक नई दिशा देना। तो आइए ज्ञान की इस रोशनी में आगे बढ़ें और नए दृष्टिकोणों को समझें। ज्ञान चिंतन, एक नई सोच, एक नई दिशा। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आप सुन रहे हैं ज्ञान चिंतन। हमेशा की तरह मैं आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। आज का विषय है ध्यान का विज्ञान और आत्मिक शांति। यह विषय सुनने में जितना आध्यात्मिक प्रतीत होता है उतना ही वैज्ञानिक भी है। आज का मनुष्य बाहरी रूप से सुविधाओं से घिरा हुआ है पर भीतर से अशांत, तनावग्रस्त और असंतुलित होता जा रहा है। लगातार बदलती अपेक्षाएं, प्रतिस्पर्धा, सूचनाओं का बोझ और भविष्य की चिंता, ये सब हमारे मन को थका देते हैं। प्रश्न यह है कि क्या शांति केवल परिस्थितियों के बदलने से आएगी या फिर उसका स्रोत हमारे भीतर है। यहीं से ध्यान की आवश्यकता और उपयोगिता समझ में आती है। ध्यान को अक्सर केवल साधु संतों की साधना या धार्मिक क्रिया मान लिया जाता है, जबकि वास्तव में ध्यान एक मानसिक और तंत्रिका वैज्ञानिक प्रक्रिया है। विज्ञान कहता है कि हमारा मस्तिष्क लगातार तरंगे उत्पन्न करता है, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा वेव्स। जब हम अत्यधिक तनाव में होते हैं तब बीटा वेव अधिक सक्रिय होती है। ध्यान के अभ्यास से मस्तिष्क धीरे धीरे अल्फा और थीटा अवस्था में प्रवेश करता है, जहां शांति, स्पष्टता और रचनात्मकता बढ़ती है। आधुनिक शोध बताते हैं कि नियमित ध्यान से ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है, तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है, एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है और यहाँ तक कि नींद की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। यह केवल अनुभव नहीं बल्कि प्रामाणिक तथ्य है। अब प्रश्न उठता है, ध्यान आत्मिक शांति कैसे देता है? आत्मिक शांति का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण। ध्यान हमें सिखाता है कि हम मन के अधीन नहीं है बल्कि मन के निरीक्षक है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो विचार आते हैं पर हम उनसे जुड़ते नहीं। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और आत्मा की मूल अवस्था शांति का अनुभव होने लगता है। इस झील का पानी जब तक हिलता रहता है तब तक उसमें प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखता। पानी के स्थिर होते ही प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार मन के स्थिर होते ही जीवन के निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं। ध्यान का एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पक्ष यह भी है कि यह न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाता है, अर्थात मस्तिष्क की खुद को सकारात्मक रूप से बदलने की क्षमता। नियमित ध्यान करने वाले व्यक्ति में करुणा, धैर्य और भावनात्मक संतुलन स्वाभाविक रूप से विकसित होने लगता है। ध्यान के लिए किसी विशेष स्थान या लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। दिन में केवल 10 से 15 मिनट शांत बैठकर आंखें बंद कर श्वास पर ध्यान केंद्रित करना भी पर्याप्त है। यदि हम चाहें तो सकारात्मक संकल्प या आत्मिक पहचान, मैं शांत आत्मा हूँ का अभ्यास भी कर सकते हैं। याद रखिए, ध्यान पलायन नहीं है या जीवन से भागना नहीं है बल्कि जीवन को बेहतर ढंग से जीने की कला है। ध्यान हमें परिस्थितियों को बदलने की नहीं बल्कि स्वयं को मजबूत बनाने की शक्ति देता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस शांति को हम बाहर खोजते हैं वह वास्तव में हमारे भीतर ही है। ध्यान उस शांति तक पहुँचने का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सेतु है। यदि हम इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लें तो न केवल हमारा मन शांत होगा बल्कि हमारा व्यवहार, हमारे संबंध और हमारा संपूर्ण जीवन भी संतुलित हो जाएगा। इसी संदेश के साथ आज के इस चिंतन को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ और सुनते रहें इसी तरह प्यार से। खुश रहें, खुशियां बांटें। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि यह चर्चा आपके मन को स्पर्श कर गई होगी और इसने नए विचारों को जन्म दिया होगा। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर एक नई सोच और विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। खुश रहें, खुशियां बांटें। नमस्कार।
1: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन

वक्त के भंवर पैरों से लिपटे हुए थे, वक्त की गर्दिश तेज थी और पांव रोके नहीं रुकते थे।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: There is a time to bid goodbye to the old and the ordinary and to awaken the beauty within. That time is now. It is time to wake up and take charge of life. Awaken to a new way of thinking. Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Sister Shivani is with us.
2: Om Shanti.
1: Welcome, sister. Welcome to Being Bliss.
2: Thank you.
1: सिस्टर, बचपन से हम एक बात सुनते आते हैं कि लाइफ इज अ कंपटीशन, कंपटीशन, कंपटीशन। मैंने कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती पढ़ी, मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे और व्यूअर्स से। आई एम इन कंपटीशन विद नो वन, आई रन माय ओन रेस, आई हैव नो डिजायर टू प्ले द गेम ऑफ बीइंग बेटर देन एनीवन, आई जस्ट एम टू इम्प्रूव to be better than I was before. That's me and I'm free.
2: Last line dekhna kya hai? I am free because I'm not in competition with anybody. Ab ye jab hum sunenge, padhenge, ho sakta hai padhte hue achhi bhi lagegi. Kahenge haan nice, but believe nahi karenge. Isko hum believe nahi kar payenge. क्योंकि बहुत डीप इनग्रेन सिस्टम है ये बिलीफ सिस्टम, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीफ सिस्टम्स है अभी का, जो हमारी खुशी को काफी हद तक कम करने का कारण बन रहा है आज। एंगर इज गुड, फिर भी कोई मानेगा, कोई बोलेगा नहीं कहाँ गुड है, मालूम है इतने नुकसान होते हैं, तबीयत भी खराब होती है, यू नो स्टिल वील से हाँ नहीं। टेंशन इज नेचुरल, भी कोई कहेंगे कि नहीं इट्स नॉट, बट लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन। Yeah, I am in competition with other people. This is something which majority, very very big number is going to say ki haan, ye to hai.
1: Agar kisi se kaho ye baat that you will be free, to bolta bhaiya mujhe free nahi hona hai, I want to win.
2: Very good. Mujhe aage jana hai.
1: Free aap ho jao, aapki marzi, mujhe aage jana hai, mujhe number one banna hai, win karna hai.
2: Absolutely.
1: To phir ye kahe ki freedom de raha hai?
2: Haan, ab ye hame apne aap se puchna hoga, pehle apne man ko open kare. You know, पुराना बिलीफ सिस्टम कभी कभी एक नई चीज को सुनने के लिए ओपन भी नहीं होता है, तो सुनते हुए भी उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे। स्वीकार मतलब ये नहीं कि उसको एक्सेप्ट कर लो, लेकिन स्वीकार सिर्फ ट्राई करने के लिए, मानने के लिए नहीं। नए बिलीफ सिस्टम को मानना है अभी वो जरूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ उतना स्वीकार करना है कि उसके बारे में सोचे, और फिर सोचकर अगर 1% भी लगे कि लेट्स ट्राई, तो ट्राई करने तक। एक्सेप्ट करना तो बहुत बाद में है, दैट इज ओनली आफ्टर सीइंग द रिजल्ट, जब हमने एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट देखा। लेकिन ये वाला जो बिलीफ सिस्टम है कि लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन, ये इतना इनग्रेन्ड है कि इसका ऑपोजिट कि देर इज नो कॉम्पिटिशन, हम किसी के साथ कॉम्पिटिशन में नहीं है, इसको तो स्वीकार करने में ही काफी रेजिस्टेंस आने वाला है। तो इसलिए पहले जस्ट स्टॉप एंड ओपन योर माइंड कि कोई कुछ कह रहा है, इसके पीछे कोई डीप मीनिंग होगा। सारा दिन में पहली बात तो अपनी एक वो तैयार करें कि किस किस के साथ फील करते हैं कि हम कंपटीशन में हैं, क्योंकि आज कंपटीशन सिर्फ प्रोफेशन में नहीं रहा, घर में भी आ गया है। घर में भी कॉम्पिटिशन होगा, एंड इतना सटल होगा कि हम रियलाइज भी नहीं करेंगे कि हम कम्पीट कर रहे हैं।
1: घर में मतलब पति पत्नी में या भाई बहन में,
2: हर एक के साथ हो सकता, आपका किसी के साथ भी हो सकता है ना। किसका किसके, आप सोच के थोड़ी करते हैं ये, घर में स्पेसिफिकली आप सोच के नहीं करेंगे जितना आप ऑफिस में, क्योंकि ऑफिस में बिजनेस में इट्स वेरी क्लियर, इट्स मोर लाइक ब्लैक एंड व्हाइट। द अदर डे आई वॉज इन अ बैंक, बैंक के सीनियर लोगों की एक ट्रेनिंग थी, तो उन्होंने कहा, आई सेड व्हाट इज कॉज ऑफ स्ट्रेस, कहते वी आर नंबर वन एंड वी हैव टू रिमेन नंबर वन, राइट। तो उनसे एक ही बात पूछी कि आप नंबर वन हैं और आपका इतना जो भी है प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, जो भी ये इतना है, अब आपको अपनी कैपेसिटी पता है, आपको अपने एम्प्लॉइज की कैपेसिटी पता है और आपने एक टारगेट सेट कर लिया, इस साल में हम यहाँ हैं, दो साल में हमें यहाँ पहुंचना है। अब अगर आप दो साल में इतनी मेहनत करते हैं, सारे एम्प्लॉइज डेडिकेशन मोटिवेशन से करते हैं, आपने सोचा था यहाँ पहुंचना है लेकिन आप यहाँ पहुंच गए, जितना सोचा था उससे ज्यादा अचीव कर लिया है ना, तो यहाँ पहुंच गए, लेकिन आप नंबर वन नहीं है।
3: ओह गॉड, कोई और आ गया है आपसे ऊंचा।
2: ठीक है, आप नंबर वन नहीं है, समबडी एल्स इज नंबर वन, आप नंबर टू या नंबर थ्री है पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में, लेकिन जो टारगेट आपने सेट किया था ना उससे आपने कई गुना ज्यादा अचीव किया है। विल यू बी हैप्पी और नॉट?
3: नो
2: नो
3: नो।
2: व्हाई?
3: क्योंकि दूसरा आगे बढ़ गया ना।
2: सी दिस इज इट,
3: वन नंबर तो नहीं रहे ना, थर्ड आ गया ना।
2: अब इस पर चिंतन करना चाहिए ना, हमें ये सोचना होगा ना, मैं यहाँ हूँ जीवन में किसी भी चीज में।
3: मैं 60 मार्क्स चाहता था,
2: हाँ,
3: मुझे 80 आ गए।
2: मैंने 60 नहीं, मेरे 80 आए मतलब मेरी कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा आए ना, आई शुड नॉट बी हैप्पी फॉर दैट।
3: दूसरा अनहैप्पीनेस तो क्रिएट करना ना, दूसरा 90 लेके।
2: अच्छा, मतलब जीवन का लक्ष्य, चाहे स्कूल में चाहे करियर में चाहे बिजनेस में, जीवन का लक्ष्य अपनी बेस्ट कैपेसिटी और अपने टारगेट और टारगेट से भी ज्यादा पहुंचना, वो लक्ष्य ना होकर सिर्फ दूसरे से आगे जाने का लक्ष्य। अब लेट्स से इट इज अनदर वे कि यहाँ तक अभी है, दो साल में यहाँ पहुंचने का सोचा था, यहाँ नहीं पहुंचे, यहाँ पहुंचे, जितना सोचा था उसका नहीं, अभी यहाँ है, यहाँ पहुंचना था। सर 60 आपने कहा 60 है, 80 पहुंचना था दो साल में, 70 पहुंचे, लेकिन नंबर वन है। अभी खुश है?
3: बिल्कुल।
2: सी दिस, नाउ वी विल हैव टू आस्क आवरसेल्फ, व्हाट इज द बिलीफ सिस्टम? क्या बिलीव सिस्टम है? 60 है, 80 पहुंचना था, 80 नहीं पहुंचे, 70 पहुंचे लेकिन नंबर वन है इसलिए खुश है, 80 पहुंचना था, 95 पहुंचे लेकिन नंबर वन नहीं है,
3: 96 दूसरा पहुंच गया ना,
2: तो खुश नहीं है। अब ये हमें रुक कर अपनी चेकिंग करनी पड़ेगी कि दूसरे से आगे पहुंचना इसमें खुशी है या अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बेस्ट परफॉर्म करना और जो हमें अर्न करना था, अचीव करना था, जहां पहुंचना था वो प्राप्त करना, उसमें खुशी है।
3: समझिए, मेरी फिल्म बन करती है 100 करोड़ का बिजनेस, और मैं चाह रहा था 70, लेकिन दूसरे की 110 कर जाए तो,
2: हाँ, तो
3: मैं 30 से खुश नहीं हूँ।
2: राइट,
3: मुझे दुख इस बात का है कि मुझे 120 करना है अभी।
2: नाउ दिस विल बिकम द बिगेस्ट कॉज ऑफ आवर स्ट्रेस इन लाइफ, ये हमारी जीवन में खुशी को खत्म कर दुख और टेंशन क्रिएट करने का सबसे इजी साधन है।
3: तो चलिए, मैंने 20 करोड़ की पिक्चर बनाई, मेरी 40 बन गया या 30 बन गया, आई शुड बी कंटेंट?
2: नो, नॉट आई शुड बी कंटेंट, नो, वी आर नॉट सेइंग कि आपने जितना भी अचीव किया उसमें कंटेंट हो जाए, नॉट एट ऑल। इम्पोर्टेंट है आपको आपकी कैपेसिटी पता है, आपने अपनी कैपेसिटी और परिस्थितियों को देखते हुए एक टारगेट रखा, जैसे आपने कहा मूवी बनाई, टारगेट रखा, टारगेट अच्छा रखे, जितना रखना है उसको रखे, टारगेट को अचीव कर लिया, इनफैक्ट टारगेट से भी थोड़ा सा ज्यादा अचीव कर लिया, तो खुश नहीं होना चाहिए?
3: लेकिन मार्केट में दूसरे लोग तो, लोगों ने हमसे बड़ा टारगेट लगाया ना।
2: अच्छा, अभी अगर दूसरों ने हमारे से बड़ा टारगेट लगाया, कल कोई और उनसे और ज्यादा टारगेट लगाएंगे, परसों कोई और उससे और ज्यादा टारगेट लगाएगा, हम टारगेट किसकी कैपेसिटी के हिसाब से रखेंगे?
3: हम तो देखेंगे कि दुनिया में जो सबसे हाईएस्ट टारगेट लगाया उससे 1% ज्यादा रखेंगे।
2: विल यू बी एबल टू डू दैट?
3: एंड
2: विच मीन्स
3: द रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ, वो तो करते ही है।
2: इसका मतलब हम खुश कब होंगे? जब वील बिकम नंबर वन इन द वर्ल्ड, क्योंकि जैसे ही हम किसी भी फील्ड में यहाँ नंबर वन बनेंगे, हमारे से आगे कोई और है, फिर कोई और है, खुशी कभी नहीं आने वाली है। वी विल नेवर बी हैप्पी लाइक दिस। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब हम यहाँ से यहाँ अपने टारगेट की तरफ अचीव कर रहे हैं, हम जा रहे हैं अपने टारगेट पे, अगर हमारा फोकस औरों से आगे जाना ना हो, ये मेरा फोकस नहीं है कि मुझे औरों से आगे जाना है. अगर मेरा कंप्लीट फोकस सिर्फ ये है कि मुझे अपना टारगेट अचीव करना है, क्योंकि दो बातों में कितना अंतर है. मुझे अपना टारगेट अचीव करना है, ये एक फोकस है, और दूसरा है मुझे उससे आगे जाना है,
3: सबसे
2: आगे जाना है. ओके, वो तो फिर और बहुत बड़ा फोकस है. अब अगर मेरा सिर्फ इतना सिंपल फोकस होता कि ये है, यहां मुझे पहुंचना है, तो ये इजी था ना, ये बहुत इजी था. अपनी पूरी मेहनत लगा दीजिए, अपने सारे रिसोर्सेज लगा दीजिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स आप चूज कर लीजिए कि आपको अपना बिजनेस, क्योंकि आज हर चीज कई तरीके से हो सकती है. आपको यहां से यहां जाना है, सपोज मुझे यहां से यहां तक जाना है, बीच में बाधाएं भी तो आएंगी ना, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन मुझे यहां से यहां जाने का तरीका मैं चूज करूंगी. एक है मुझे सीधा भागना है, कोई ऑब्स्टिकल अगर रास्ते में आएगा, मुझे ऑब्स्टिकल के अराउंड अपने को मोल्ड करके क्रॉस करके जाना है. कोई और होगा जो ऑब्स्टिकल आएगा कहेगा मैं तो ऑब्स्टिकल को उखेड़ के फेंक दूंगा, वो उसका जीवन जीने का तरीका है, ये मेरा जीवन जीने का तरीका है. एवरीवन विल चूज देयर वे. कोई और होगा वो कहेगा ऑब्स्टिकल को उखेड़ूंगा भी नहीं, उसको खत्म कर दूंगा, ताकि वो ऑब्स्टिकल, वो व्यक्ति मेरे जीवन में फिर कभी खड़ा ही नहीं हो सकेगा. वो भी एक तरीका है. हर एक के जीवन जीने के तरीके अलग अलग है. कम्पीट करेंगे सबके साथ कि इनसे आगे जाना है,
3: कर तो रहे ना लोग
2: खुशी,
3: वो तो खुश है बिकॉज दे नंबर वन अपने बिजनेस में.
2: एक सिंपल रेस में भी क्या सिखाते हैं, जहाँ एक्चुअल कॉम्पिटिशन होता है, चाहे वो रनिंग रेस है, स्विमिंग है, कहीं भी जहाँ रेस है, तो जब बच्चे स्टार्टिंग लाइन पर होते हैं तो उनको क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा,
3: क्या दिया जाएगा,
2: सीधा देखना, फोकस ऑन योर गोल, अपनी सारी एनर्जी कहाँ लगानी है, आपको अपने टारगेट पर पहुंचना है, आपको
3: इधर
2: उधर नहीं देखना है. क्यों नहीं इधर उधर देखना है, इधर उधर देखो ना कि मैं किसके आगे हूं, किसके पीछे हूं, मुझे किससे आगे जाना है, किसके पीछे हूं मैं अभी, ये नहीं देखना चाहिए. क्यों सिखाते हैं लुक स्ट्रेट.
3: हमारे स्कूल में जब स्विमिंग का कॉम्पिटिशन था तो मैंने बैक स्ट्रोक, डाइविंग वगैरह सब में मैं फर्स्ट आया था. सिर्फ फ्री स्टाइल में एक दूसरा लड़का मुझसे आगे था, तो उसने एक ही मिस्टेक की कि उसे डर था कि सुरेश पहले ना करे, तो उसने सिर्फ स्विम करते करते ऐसे देखा कि मैं कहाँ हूँ, आधा सेकंड देखा होगा स्विमिंग में करते करते ऐसे दिखा, एक सेकंड, और मैं हाथ उधर लगा और ऑलमोस्ट पैरेलल चल रहे थे, मेरा पहले गया, उसका टच हुआ, ठप ठप लाइक दिस.
2: नाउ यू गिव अस द आंसर.
3: आई गॉट द चैंपियनशिप.
2: अब आप ये बताइए कि यहाँ क्या हुआ, अगर वो आपकी तरफ नहीं देखते तो कौन पहले पहुंचता,
3: वो पहले पहुंचते
2: ना. जैसे ही आप, अब इट्स नॉट अबाउट कौन पहले पहुंचता, बट उनकी जर्नी को देखिए कि आपकी तरफ देखने से उनका फोकस हटा. सिर्फ फोकस नहीं हटा, फियर, इनसिक्योरिटी, ये दो बहुत बड़े इमोशंस हैं जो हमारी एफिशिएंसी को डाउन करते हैं. फियर, ये वो स्प्लिट सेकंड में ये सारे इमोशंस क्रिएट हो जाते हैं. क्यों हमारी स्पीड, हमारी एक्यूरेसी, हमारी एफिशिएंसी हर चीज में कम होगी, क्योंकि जैसे यहां देखा, मतलब फियर है, इनसिक्योरिटी है.
3: बड़े बड़े लोगों को फियर होता है, उसमें क्या है. मैं भी पहले ऐसे ही समझता था, यार इतना बड़ा एक्टर है, उसको मुझसे फियर थोड़ी होगा. जब लोग मुझे आके बोलते थे यार ये आदमी तुझसे इनसिक्योर हो गया, मैंने कहा जा छोड़ो यार, इतना बड़ा सुपरस्टार, इतने बड़े एक्टर, इतने मेरे सीनियर लोग, मुझसे इनसिक्योर होंगे. हाँ है, तो मैंने बोला यार इसको मुझसे कुछ चाहिए होगा. है जो आप कह रहे हैं, वो इनसिक्योरिटी भी है, फियर भी है, फिर भी वो नंबर अच्छी पोजीशन में है.
2: फियर है,
3: तो आप ये कह रहे हैं कि
2: फियर है, इनसिक्योरिटी है, हाँ, अच्छी पोजीशन में है, हाँ, लेकिन खुश नहीं है.
3: अच्छा, अभी फ्रीडम वाली बात. आप
2: फ्रीडम, फियर है, इनसिक्योरिटी है, तो खुश कैसे है.
3: हाँ,
2: जब जितनी देर मेरे अंदर डर है, इवन इफ आई एम नंबर वन,
3: जो बैंक वाला जो नंबर वन,
2: हाँ, वो तो कांस्टेंट फियर में है कि कहीं हमारे से कोई आगे ना चला जाए. तो फियर है, इनसिक्योरिटी है, तो पहली बात तो खुशी नहीं है.
3: एक तो मैं नंबर वन कभी नहीं था,
2: हाँ,
3: ना नंबर टेन था, मैं तो एक कैरेक्टर एक्टर था, फिर भी इनसिक्योरिटी किस बात की.
2: किस बात की इनसिक्योरिटी?
3: कंपटीशन में भी नहीं था।
2: किस बात की इनसिक्योरिटी नहीं है? ये एक संस्कार होता है, ये एक संस्कार है। क्योंकि जब हम फर्स्ट आते हैं ना, इवन स्कूल में हमने देखा है, जिस स्टूडेंट को फर्स्ट आने की आदत पड़ जाती है, वो फर्स्ट में रहकर भी खुश नहीं होता कभी, क्योंकि अब उसके ऊपर एक कांस्टेंट ये इनसिक्योरिटी है कि अब मैं कभी सेकंड ना आ जाऊं। तो फर्स्ट पहुंच कर भी, फर्स्ट रहकर भी इतना टाइम फियर और इनसिक्योरिटी है, क्योंकि अब जो खुशी का जो वो बन चुका है पैरामीटर, वो मार्क्स, टारगेट, प्रॉफिट नहीं, बट नंबर वन पर टिके रहना, तो वो है, वो एक कांस्टेंट फियर और इनसिक्योरिटी है। अब तो कांस्टेंट वो मेरे जीवन का साथी बन जाएगा अब, फियर एंड इनसिक्योरिटी। एंड सिर्फ फियर एंड इनसिक्योरिटी नहीं, फिर जेलसी भी आएगी उसके अंदर। इसको एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स से हम एक ड्राइव पर जा रहे हैं, दो गाड़ियां हैं, दोनों गाड़ियां अलग अलग हैं, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, डेस्टिनेशन भी सेम है, ए से बी तक पहुंचना है, दो कार्स में दो परिवार है, ठीक है। अब जब तक वो अपनी ड्राइव पर है, अब परिवार खाते पीते, हंसते खेलते, गाने सुनते, बातें करते हुए अपनी जर्नी पर है, ब्यूटीफुल जर्नी, पहुंच जाएंगे ना, चार साढ़े चार घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन चलते चलते एक थॉट क्रिएट कर लेते हैं कि मुझे इससे आगे जाना है, रेस करते हैं। अब एक बार ये एक थॉट क्रिएट कर ली, रेस थी नहीं, वो अपनी यात्रा पर थे, ये अपनी यात्रा पर थे, अपने अपने परिवार से एंजॉय कर रहे थे, लेकिन एक थॉट क्रिएट कर ली, इनसे आगे जाना है। अब बाकी की ड्राइव कैसे हो जाएगी? पूरा फोकस ही चेंज हो जाएगा, हंसना खेलना बंद हो जाएगा, खाने पीने की तरफ ध्यान नहीं देंगे, यहाँ परिवार से बात करने की बजाय सारा फोकस क्या होगा, मुझे उसके आगे जाना है। अब जो जर्नी एंजॉय हो रही थी, हंस खेल कर पहुंच जाते वहां पर जहां जाना था, अब उस जर्नी में स्ट्रेस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, अब उस जर्नी में गुस्सा भी आना शुरू हो जाएगा अगर थोड़ा भी अपने आप को उनसे पीछे देखा। अब अगर फैमिली जो गाड़ी चला रहे हैं मेन, उनसे अगर फैमिली बात करने की कोशिश करे, कहेंगे चुप करो, मेरा पूरा ध्यान किस तरफ है, मुझे उससे आगे जाना है। पूरा पर्सपेक्टिव उस जर्नी का चेंज हो जाएगा, एक थॉट, एक बिलीफ सिस्टम के चेंज होने से कि मुझे उसके आगे जाना है। अब दोनों कार्स अलग अलग हैं, कैपेसिटी दोनों गाड़ियों की अलग अलग है, दोनों का चलाने का तरीका भी अलग अलग है, दोनों के सेफ्टी पैरामीटर्स की डेफिनेशन अपनी अपनी है। अब अगर एक पाए कि मैं दूसरे से आगे जा ही नहीं पा रहा हूं क्योंकि उसकी गाड़ी ज्यादा पावरफुल है, वो ड्राइव फास्ट करता है, वो सब, ये वाला सिर्फ उससे आगे जाने के लिए कोई ना कोई रूल ट्रैफिक का, सड़क का तोड़ देगा, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है अब आगे जाने के लिए। देयर इज नो वे दैट आई कैन गो अहेड इफ आई ड्राइव सेफ एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द रोड। तो फिर या तो रेड सिग्नल तोड़ देंगे, या ओवर स्पीड कर देंगे, या रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर देंगे, या उनको पीछे करने के लिए भी कुछ कर देंगे, कुछ भी करेंगे सिर्फ उनसे आगे जाने के लिए, मतलब अपने वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। आज जो हम इतना एथिक्स और प्रिंसिपल्स में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उसका रीजन एक ही है, हमें दूसरे से आगे जाना है। ये कॉम्प्रोमाइज, अगर हमें दूसरे से आगे ना जाना होता, हम कभी वैल्यूज प्रिंसिपल्स पर कॉम्प्रोमाइज ना करते, क्योंकि हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते।
3: वैल्यूज एंड प्रिंसिपल सिस्टर तो बिना कॉम्पिटिशन के भी कई लोग नहीं करते ना।
2: अच्छा, अब अगर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे, एक जो भी आत्मा अपने वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स पर कॉम्प्रोमाइज करेगी, मतलब डिसऑनेस्टी यूज करेगी, कोई अनएथिकल प्रैक्टिस यूज करेगी, कहीं थोड़ा चीटिंग एलिमेंट भी हो सकता है, जो ये सब एलिमेंट्स चूज करेंगे, एक खुशी नहीं हो सकती, दूसरा आत्मिक शक्ति, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज किया है अपने वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स पे, सोल पावर कम होती जाएगी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमने लास्ट टाइम देखा, कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो रहा है।
3: सबसे बड़ी अच्छी बात आपकी एक मुझे लगी इस एपिसोड में, कि आपने कहा था कि अंत में देखो कि वो बंदा सुखी है।
2: यस, नहीं हो सकते।
3: गाड़ी तेज चलाकर बच्चे पीछे से हाथ भी लगाए तो हाथ मत लगाओ, मतलब ज्यादा स्पीड में ज्यादातर राइट लेफ्ट हो जाए मतलब गाड़ी उलट जाएगी।
2: चलो नहीं उल्टी,
3: पिकनिक पे जा रहे हैं सारा मजा खराब।
2: एब्सोल्युटली, जीवन जी रहे थे सारा मजा खराब।
3: निकले घर से किस लिए थे,
2: जीवन किस लिए जी रहे थे?
3: ना ड्राइव पे,
2: ड्राइव पे, ये भी तो जीवन ड्राइव थी। खुश रहना था, रिश्ते प्यार से चलाने थे, खाते पीते गाने बजाते मौज करते करना था। जीवन कैसे
3: तो ऐसे होता ना सिस्टर। हाँ। जब मैं हैदराबाद में यहाँ से गया बॉम्बे, किस लिए गया था?
2: हाँ।
3: तो अच्छा, कोई मेरी हॉबी थी फिल्म एक्टिंग।
2: हाँ।
3: थोड़ी बहुत फिल्म में काम कर लेंगे, थोड़ा खाना वाना अच्छा मिल जाएगा, गाड़ी वाड़ी रखेंगे। तो आई वाज अर्निंग के लिए और पैशन के लिए काम करते थे। शुरू कहाँ होता है, बाद में थॉट्स कहाँ चले जाते हैं, कॉम्पिटिशन में आदमी इतना थक जाता है।
2: ये हुआ एग्जैक्टली। शुरू कहाँ हुआ?
3: पिकनिक,
2: सुबह सुबह अपनी गाड़ी में बैठे, क्लियर थे मुझे यहाँ पहुँचना है, प्यार से पहुँच जाते। सिर्फ बीच में कहीं चलते चलते ये बिलीफ सिस्टम, क्योंकि मेजोरिटी का ये बिलीफ, मेजोरिटी क्या, इसको तो कहेंगे ऑलमोस्ट हम सब का ये बिलीफ सिस्टम है, तो वो बिलीफ सिस्टम पूरे जर्नी के तरीके को ही बदल देगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कॉम्प्रोमाइज जो आ जाएगा, एंड इसका जो लॉन्ग टर्म डीपर इम्पैक्ट है कि सिर्फ औरों से आगे जाने के लिए जो हम कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट कर लेंगे, वो कार्मिक अकाउंट हमारे सामने आज भी आएंगे और हमारे सामने आने वाले समय में भी आएंगे, और हो सकता है कि ये कॉस्ट्यूम चेंज करने के बाद भी आएंगे।
3: अगले जन्म
2: अगर धोखा दिया, झूठ बोला, किसी को एक्सप्लॉइट किया, ये सब कुछ करके आगे पहुंच भी गए, आज भी खुश नहीं हो सकते क्योंकि अनएथिकल। हाँ, आज मटेरियलिस्टिकली सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, पोजीशन में भी नंबर वन हो सकते हैं, दैट्स ऑल पॉसिबल, लेकिन ये सब करते हुए जीवन के सारे पहलू में, रिश्तों में, सेहत में अपनी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अपनी इमोशनल हेल्थ में, इन कंट्रोल, पावरफुल एंड हैप्पी, नॉट पॉसिबल।
3: ये बात सब हम सब ने देखी होगी ना,
2: नॉट पॉसिबल,
3: आस पास, अड़ोस पड़ोस, फ्रेंड्स में,
2: एब्सोल्युटली
3: सब ने किसी ना किसी का एग्जांपल तो सभी को मालूम होगा ना।
2: yes.
3: कि ये आदमी ने ये एथिकल प्रैक्टिस नहीं करके ये किया, आज जेल में है।
2: right.
3: फलाने की फैमिली
2: वो
3: कुछ
2: तो
3: नहीं
2: बड़े
3: है,
2: कोई जेल में है, ये तो चलो फिर कुछ कुछ केसेस होंगे, सिर्फ मेजोरिटी का देखना है, कुछ एक्सट्रीम फिर हम उसको अपने साथ नहीं रिलेट कर सकते।
3: तो रोज पढ़ते हैं ना सिस्टर, फलाने ये स्कैम किए, कितने महीनों से,
2: फिर कुछ है अगेन, वो कुछ कुछ लोग हैं, वो कुछ कुछ लोग हैं, उसका तो प्रैक्टिकल में दिख रहा है कि ये कॉन्सिक्वेंस है। वी आर टॉकिंग अबाउट, कोई भी कॉन्सिक्वेंस आपको बाहर नहीं दिख रहा, बाहर सब कुछ अच्छा है। आपके पास बाहर सब कुछ अच्छा है, इतने बंगले, इतनी गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन अगर यात्रा पर कोई दूसरे तरीके अपनाए थे ये सारा कुछ अचीव करने के लिए, क्योंकि सोचा हमें सिर्फ नंबर वन पर होना है, तो आंतरिक खुशी नहीं हो सकती आज।
3: नींद भी अच्छी नहीं आती।
2: हाँ, नींद नहीं अच्छी आएगी, स्वास्थ्य पर भी उसका असर पड़ेगा। अब इसी को थोड़ा सा एक शिफ्ट करना है, एक थॉट है सिर्फ, क्योंकि कार्मिक अकाउंट्स जो क्रिएट हो रहे हैं, आज धोखा दे दिया, ये कर दिया, करते टाइम क्या कहा, टारगेट है, पहुंचना ही है, करना ही है, लेकिन फिर उसका जब कॉन्सिक्वेंस आएगा तब कहेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने तो किसी के साथ कुछ किया ही नहीं, क्योंकि जब कर रहे थे हमने कहा ये तो नेचुरल है, आगे जाने के लिए ये सबको किया ही जाता है, जो भी करेंगे वो मेरे सामने वापस भी आएगा। इस एक बिलीफ सिस्टम को थोड़े दिन के लिए, अभी चेंज भी नहीं करना है, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी के साथ खेलना है, सारा दिन एक्सप्लोर करना है, और सारा दिन देखो, सुबह से जीवन में, करियर में, रिश्तों में, हर जगह देखो, हम यात्रा पर हैं। इट्स माय जर्नी ऑफ लाइफ, माय प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, आई एम ऑन अ जर्नी। इस जर्नी में मुझे ये अचीव करना है, हमें अपने गोल्स, अपने टारगेट सेट करने हैं, टाइम पीरियड कितनी देर में मुझे उस गोल तक पहुंचना है वो भी मुझे सेट करना है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चलने का तरीका, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। अगर 80 की स्पीड पे गाड़ी चलानी है दैट्स सेफ फॉर मी, मैं इंजॉय करती हूँ अगर 80 पे चले, लेकिन दूसरा 100 पे जा रहा है और उससे आगे जाने के लिए
3: और तीसरे 120 पे जा रहा है।
2: yes.
3: कहाँ तक करेंगे?
2: कहाँ तक करेंगे नहीं, करते जाते हैं लेकिन फिर अपनी ड्राइव को एंजॉय नहीं करते हैं।
3: जैसे आपने कहा ना मुझे कि भाई वो तो कोई जेल में है या स्कैम में है, पकड़ा गया है, वो तो दिख रहा है, लेकिन छोटी छोटी बातें, उन छोटी छोटी बातों से याद आया, व्हाट अबाउट जो टीवी सीरियल्स पे दिखाते हैं और जो हमारी घरों में होता है, बहुओं में, सास बहु में, फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मतलब रिश्तों में जो पेन है कंपटीशन का, वो तो मैं भूल ही गया।
2: रिश्तों में बहुत कंपटीशन है आज, सक्सेस की डेफिनेशन में, इवन हस्बैंड एंड वाइफ के बीच कंपटीशन।
3: बच्चा अगर बोल दे कि आई लव माय मदर मोर देन डैडी, तुम बहुत डांटते हो, गंदे हो, मेरी मम्मी अच्छी है, वह कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता।
2: क्यों? संस्कार बन गया ना।
3: प्यार कहाँ गया मेरा और मेरी पत्नी का? फिर
2: हम क्या करेंगे? अब एक बार मेरा संस्कार बन गया, सपोज मैंने ऑफिस में रखा था वो संस्कार, क्रिएट किया कि मुझे आगे जाना है, आगे जाना है,
3: मतलब आगे ऑफिस से घर पे आ जाता है संस्कार।
2: संस्कार तो यहाँ रहता है ना।
3: हाउ कैन इट बी
2: संस्कार? जैसे आपने गुस्सा ऑफिस में किया,
3: कंपेटिटर है ऑफिस में।
2: नहीं, गुस्सा ऑफिस में किया। कॉम्पिटिशन जो संस्कार है वो बाहर नहीं है, संस्कार यहाँ है। गुस्सा ऑफिस में किया, घर पर आता है ना फिर आकर, घर पर
3: तो
2: आता है ना, स्टाफ के साथ क्रिएट किया, बच्चों पर आता है ना।
3: हाँ जी, वो भी।
2: क्यों? क्योंकि संस्कार बन गया, जो किया वो संस्कार बन गया। अब संस्कार तो मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गया ना।
3: तो मतलब मैं जिनसे प्यार करता हूँ, मेरे बच्चे से, बीवी से, फैमिली से, आपस में भी कंपटीशन करने लग जाऊंगा अगर मेरा संस्कार बन गया।
2: अब मेरा संस्कार बन गया कि आई हैव टू बी
3: नंबर। कंपीट तो मैं दुश्मन से कर रहा था।
2: कंपीट मतलब आई हैव टू बी नंबर वन
3: इवन एट होम।
2: आई हैव टू बी नंबर वन इज माय संस्कार नाउ। आप फैमिली की बात कर रहे हैं, हम ये देखते हैं कि सोशल वर्क में भी आएंगे, सेवा में भी आएंगे, यहाँ तक कि एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में भी आने के बाद वो संस्कार साथ में आता है, आई हैव टू बी नंबर वन, क्योंकि वो मेरा संस्कार है। संस्कार ये नहीं चूज करता कि ये मुझे यहाँ एक्टिव होना है, यहाँ एक्टिव नहीं होना है। संस्कार मीन्स माय पर्सनालिटी। जहां हम निस्वार्थ कर रहे होंगे ना, एक समाज सेवा कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं है, एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में है, जीरो मनी इन्वॉल्व्ड है, कोई इनकम नहीं है, कुछ नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं, टारगेट नहीं, बोनस नहीं, अचीवमेंट कुछ नहीं है, लेकिन संस्कार का क्या करेंगे कि आई हैव टू बी नंबर वन, वो तो वहां भी आता है। तो इसलिए फैमिली में इट्स अ संस्कार, आई हैव टू बी द बेस्ट, मुझे आगे होना है सबसे, कहीं भी मुझे लगे कि दूसरे को मेरे से ज्यादा अप्रिसिएशन, दूसरे को मेरे से ज्यादा पूछा जा रहा है, सफलता मिल रही है, आई एम इन कॉम्पिटिशन, वेरी सटल कॉम्पिटिशन विद द अदर पर्सन।
3: सिस्टर, ये संस्कार का तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि जो मतलब मैंने अभी तक समझा था कॉम्पिटिशन सिर्फ दुश्मन से होता है, कम्पिटिटर से, ये संस्कार बन के घर पर भी आ जाएगा और मुझे ये परमानेंटली तकलीफ देगा, इसका मुझे अंदाजा नहीं था।
2: संस्कार मींस मुझे आपसे आगे होना है।
3: हाँ, तो ये तकलीफ दे रहा है ना,
2: तो
3: तकलीफ भी हो रही है ना,
2: तो खुशी।
3: यही बात मैं अगले एपिसोड में आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही आई ओपनर है, ये कॉम्पिटिशन भी पेन दे रहा है एंड में।
2: यस,
3: तो थैंक यू सो मच सिस्टर, अगले एपिसोड में मिलते हैं और इसे कंटिन्यू करते हैं।
2: थैंक यू,
3: थैंक यू सो मच, नमस्कार, थैंक यू।
1: Everything that we do, whether at work or in family, let us set our goals and use our skills and qualities to achieve them. The focus should be on our own journey, not in reference to others around us. If we keep striving to go ahead of others and appear to be in a race, then stress, anxiety, fear and jealousy will be our normal emotions. If we focus only on our goal, then there will be no insecurity. We will be confident and motivated. This stability will give us the energy which will empower us to achieve our goal. When we create insecurity and jealousy, we will achieve less than our capacity. It is because we want to go ahead of others, we compromise on our values, principles, and ethics. Compromising on values depletes the power of the soul.
4: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा. कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत.
5: अश्विनी
4: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं.
6: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे.
4: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत.
7: साधी भोळी माझी आई, सुखाची कोसावली.
4: या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.

किस्मत पे छा रही है क्यों रात की स्याही, किस्मत पे छा रही है क्यों रात

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। पर स्थिति किसी और की स्थिति, वो परिस्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: कहा मोहिनी, आज हम और तुम दोनों मिलकर रसराज की रंग भरी सुराई में तूफान उठा दें। इससे इतना रस छलक पड़े कि उस जमाने की प्यास बुझ जाए जिसमें हम और तुम जी रहे हैं।
1: हाँ रचो जितने गीत रचना चाहते हो, जब तक रचते रहोगे मैं उन्हें सुर में गूंथ कर नाचती रहूंगी। देखें पहले शब्द थकते हैं या भाव।
2: कारी कारी कारी अंधियारी थी रात, एक दिन की बात, जब सघन गगन से घन न गरज उठी, सावन की घटा घूंघट में छुपा कर, चपल चपल बिजली की छटा, एक नार करके सिंगार, एक नार तीखी तलवार, या थी वो कटार करके सिंगार, चली उस पार जहाँ थे उसके किसन मुरार, चमक झुम झुम रमक झुम झुम चमक झुम झुम।

सनन सनन पवन चले, झनन झनन झांझर बोले, अमृत घोले दिल न डोले, कामिनिया चले होले होले, नयन झुके पग न रुके, बेला मिलन की न टले, अचरा ढले दीपक जले, पिया मिलन गोरी चले, छुम छुम छुम छमक छमक, झुम झुम झुम झमक झमक, छुम छुम

छोर गिरे बरसात उठे घन घोर घटा करे शोर पपिया पी है कहाँ मेरा पी है कहाँ कहे गोरी के प्राणों का प्राण पपिया सन में लगन लगी मन में अगन जगी बंद किए दोना नैना उघारे प्यार पुकारे सो प्रीत किनारे चली है वो सांसों की डोर सहारे।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अहो ऐकलत का?
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
1: क्या सुन रहे हो?
2: रेडियो पुनेरी आवाज।
1: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियाँ बांटो।
3: ख्वाबों का सफर आरजे सनी के साथ।

0: रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर खाबों का सफर, मैं हूं आपका हम सफर सनी। जी हां श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के इस सफर को बहुत ही यादगार और खुशनुमा सफर बनाते हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों से बातें करते हुए। और कहते हैं ना, आंखों से दूर न हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है गुजरता है गुजरता जाएगा। आइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में एक खास मेहमान है जो खास मेरे साथ जुड़ी हुई है, और पूजा हमारे साथ है। पूजा आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर अभी मैं फर्स्ट ईयर क्लास में हूँ और मैं डॉक्टरी कर रही हूँ।
0: अच्छा अच्छा, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं?
1: या सर डॉक्टर बनना चाहती हूँ और सिंगर भी बनना चाहती हूँ।
0: चलिए बहुत ही अच्छी बात है, और बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं अच्छे सिंगर्स होते हैं, इसीलिए डॉक्टरों का पेशा जो है थोड़ा सा मेहनत और थोड़ा सा मगज वाला रहता है, तो इसीलिए संगीत एक उनको जो है सुकून देता है, संगीत से उनके मन को शांति मिलता है। तो इसीलिए डॉक्टर के साथ साथ कॉन्ट्रोवर्सी देखा गया है कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो है अच्छे सिंगर्स भी होते हैं। तो चलिए पूजा, मैं चाहूंगा कि हमारे सभी श्रोताओं को ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम में शुरुआत में बहुत ही खूबसूरत गाना मैं सुनाना चाहूंगा। और आज का हमने टारगेट रखा है, जो भी गाने हम लोग आज के इस एपिसोड में सुनाएंगे वो बी अक्षर से यानी बा से सुनाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आपको बी अक्षर वाला कोई गीत याद हो तो बताइए और उसे थोड़ा सा गुनगुना दीजिए।
1: ओके सर।

ओके पूजा, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुनाया। आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, और बहुत ही खूबसूरत आवाज है आपकी, बहुत ही अच्छा लग रहा था सुनते सुनते, मैं भी खो गया था कुछ पल के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूजा ने बहुत ही प्यारा सा गीत याद दिलाया है और उसे गुनगुना के भी सुनाया है। आशा करता हूँ आपका दिल में ऐसा फील आया होगा कि चलो इस गीत को सुनते हैं, तो चलिए जरूर सुनाऊंगा मैं इस गीत को। और दोस्तों इस गीत को जो है लिखा था साहिर लुधियानवी साहब ने, और मुकेश जी ने इसे गाया था, और संगीतकार थे रोशन, रोशन जी ने इसको संगीत दिया था, और फिल्म है जो एल्बम था वो दिल ही तो है 1963 का। ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए ख्वाबों के सफर में आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है खाबों के सफर इस कार्यक्रम में, और मैं हूं आपका हम सफर सनी, और मेरे साथ आज है पूजा, जो आपको कुछ नई बातें और कुछ गाने जरूर सुनाने वाली है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पूजा, कैसा फील कर रहे हैं आप?
1: सर अच्छा लग रहा है, साथ में नर्वस भी बहुत हूँ।
0: नर्वस किस लिए है? चलिए पूजा, और मैं चाहूंगा कि जिस तरह से आप संगीत को सीख रहे हैं, तो संगीत सीखते समय किस तरह की बातों का ध्यान रखना पड़ता है और रोज कितना टाइम आप देते हैं संगीत के लिए, वो थोड़ा सा बताइए।
1: सर जो संगीत है वो मेरे लिए बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मुझे मेरे पापा के लिए कुछ करना है, इसीलिए मैं संगीत सीखना चाहती हूँ और सीख भी रही हूँ और बहुत मेहनत कर रही हूँ। और संगीत को जितना मैं पढ़ाई को अपना वैल्यू देती हूँ, उतना ही मैं संगीत को भी देती हूँ।
0: ओके पूजा, और समय कितना देते हैं संगीत सीखने के लिए रोज आप?
1: सर ज्यादा नहीं हो पाता है, स्कूल लाइफ है। अच्छा। सो मैं 3 या 4 घंटे दे पाती हूँ।
0: ओके, 3 या 4 घंटे भी बहुत है पूजा, आशा करता हूँ। मुझे लगता है कि हमारे सभी दोस्त जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और खास हमारे विद्यार्थी जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा 3 से 4 घंटा संगीत के लिए बहुत बड़ा समय है, और साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो एक तरह का मोटिवेशन है हमारे विद्यार्थियों के लिए। मैं चाहूंगा कि पूजा से ये मोटिवेशन जरूर ले, पढ़ाई के साथ साथ संगीत को सीखना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कमाल है। तो आइए पूजा, मैं चाहता हूँ कि जैसे 2 लाइनें मेरे पास हैं तुम्हारे लिए खास, डूबते डूबते कश्ती को उछाल दे दूं, मैं नहीं कोई तो साहिल पे जाएगा, मैं नहीं कोई तो साहिल पे जाएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर, और पूजा अभी कौन सा गीत आपके दिल में या दिमाग में आ रहा है मुझे बताइए।
1: सर अभी मेरे मन में अचानक से आजकल ऐसा आ रहा है कि भौरा जो है, भौरा मींस कि आजकल के जो लड़के लड़कियां एक दूसरे के पीछे रहते हैं, तो आजकल के माहौल को देख के मुझे वही गाना याद आ रहा है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, 1950s और 60s के बीच में जो गाने हैं, वो जो आपने भौरा शब्द यूज किया, तो भौरा बड़ा नादान है, ऐसा कुछ है?
1: सर ये जो भौरा है, इसमें जो पहले के जो जैसे कि आप जान सकते हैं कि अभी जो लड़के होते हैं और पहले के जो लड़के होते हैं, तो वो लड़कियों के पीछे ऐसे ऐसे भागते रहते थे, पर वो सामने से कुछ नहीं बोल पाते थे कि उन्हें क्या बोलना है। तो ये जो गाना है वो उनके लिए है, पर तो मैं ये गाना आजकल के जो नौजवान है उनको बताना चाहूंगी कि आप पहले के जमाने का प्यार देखो और अब का देखो, कितना डिफरेंट है दोनों में। जो पहले का प्यार होता था,
0: कुर्बानी एक सच्चाई होती थी।
1: Yes, sir.
0: शायद वो ना मिले तब भी उनकी यादें बनी रहती थी। तो पूजा, मैं चाहूंगा कि इस गीत का जो मुखड़ा और स्थाई है वो जरूर आपकी आवाज में हम सुनना चाहेंगे अभी।
1: जी सर। भवरा बड़ा नादान

कली।

ओके पूजा, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया है और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा। और बहुत ही प्यारा सा गीत है ये, और जिस तरह से आपने इसकी पृष्ठभूमि बताई कि आज के नौजवान किस तरह से लड़कियों के पीछे भागते हैं और उन्हें देखते रहते हैं और उनसे बातें करने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन उस समय 1962 में साहेब बीबी और गुलाम इस फिल्म का रिलीज, ये फिल्म से ये गाना है, तो उस समय इस फिल्म में जो चीजें बताई गई थी वो बहुत ही एक अलग सात्विक, जिसको कह सकते हैं प्यार, जहां पर व्यक्ति बोल नहीं पाता सिर्फ देखता है, तो ये चीजें इसमें किस तरह से एक प्यार का जो अलग रूप है वो दिखाया गया है। तो आइए शकील बदायूं का लिखा ये खूबसूरत नगमा आशा भोसले की आवाज में, और इसे संगीत से सवारा था हेमंत कुमार साहब ने। जी हाँ, फिल्म साहेब बीबी और गुलाम 1962 में ये रिलीज हुई थी, उस समय का ये पॉपुलर गाना था और उस समय रेडियो पे यही गाना जो है काफी समय बसता रहता था। तो चलिए अब हम फिर से उस पुराने जमाने को याद करते हैं और इस गाने का लुत्फ उठाते हैं। और पूजा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद दिलाया है। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों से बातें हो रही हैं और आज के इस ख्वाबों के सफर को और ही खुशनुमा बनाने के लिए हमारे साथ है पूजा, जिनसे बातें हो रही हैं। पूजा, अब मैं चाहूंगा कि एक और गीत जो है बहुत ही रोमांटिक हो, उसके बारे में कुछ याद आ रहा तो बताइए।
1: ये जो सॉन्ग है, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आजकल के नौजवान होते हैं वो प्यार में कुछ भी कर देते हैं, तो ये उसी फिर से कि वो ये नहीं सोचते किसके ऊपर क्या हर्ट हो रहा है, बस हमें वो करना है, मतलब करना है, ऐसा होता है उनके
0: साथ। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। पूजा, मैं चाहूंगा कि ये गीत आप थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। और कहते हैं कि जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, जब सब मुंह फेर लेते हैं तो खुदा साथ देता है। आइए पूजा को सुनते हैं।
1: बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम,
0: जी सुनाइए।

ओके पूजा, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद दिलाया है, और मुझे लगता है कि ये पिक्चराइज किया गया था शशि कपूर और बबीता पर, प्रकाश बेरा की फिल्म थी, और बहुत ही प्यारा सा ये गीत था उस समय, बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग था, आज भी सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, और इसे लता मंगेशकर ने गाया था, और खास करके कल्याण जी आनंद जी का संगीत था, और फिल्म थी हसीना मान जाएगी, 1968 में रिलीज हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस गीत का लुफ्त उठाते हैं, बहुत ही प्यारा सा गीत है, तो आइए आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। दोस्तों कहते हैं नेकिया करके डाल देना दरिया में, वरना नेकियों के बोझ से तूफान में फंस जाओगे, क्योंकि नाव वही तेज चलती है जिसमें बोझ कम हो। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम में। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक थीम लेके जब हम लोग काम करते हैं तो थोड़ा सा रिसर्च जरूर होता है, इसमें कुछ सोचना पड़ता है, कुछ बातें तैयार करनी पड़ती है और एक टारगेट जो चीजों को लेके चलते हैं उसे पूरा करने के लिए हमें थोड़ा सा मशक्कत ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से हम लोग इन चीजों को मेहनत करके आप सभी तक पहुंचाते हैं तो आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। कुछ एक सीक्वेंस के साथ उन चीजों को जब हम लोग सुनते हैं तो बड़ा मजा आता है। और आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है ख्वाबों के सफर में। और आज के इस सफर को खुशनुमा बनाने के लिए हमारे साथ पूजा है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है और बहुत सारे गानों का कलेक्शन उनके पास है, ओल्ड मेलोडीज 50s एंड 60s के वो सुना रही है। तो आइए पूजा, आपका फिर से एक बार स्वागत है। पूजा के लिए मैं कहना चाहूंगा, कभी अपने सपनों को हकीकत की दुनिया दिखाओ, खुद को इस दुनिया में आजमाओ, दुनिया में सबसे अलग अपनी पहचान बनाओ। आप सुना है रेडियो पुनीरी आवाज। पूजा बताइए अब कौन सा गीत आप हमें सुनाने वाली हैं, किस गीत की तरफ आप इशारा करने वाली हैं?
1: सर ये जो गीत है वो 1916 का है, वो है बोल मेरी तकदीर में क्या है।
0: मैं चाहूंगा कि कुछ गुनगुना के भी सुनाइए।
1: हाँ जी सर, क्यों नहीं। बोल मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफर अब तो बता, जीवन के दो पहलू हैं हरियाली और रास्ता। बोल मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफर अब तो बता, जीवन के दो पहलू हैं हरियाली और रास्ता।
0: ओके पूजा, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने ओल्ड मेलोडीज में से 1962 का गाना आपने सुना है, बोल मेरी तकदीर में क्या है। ये बहुत ही पॉपुलर गाना था, हरियाली और रास्ता इस फिल्म का शायद ये टाइटल सॉन्ग था। तो आइए इस फिल्म के गीत को हम लोग पूरी तरह से सुनेंगे। पूजा ने जिस तरफ इशारा किया, लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना और शंकर जयकिशन का संगीत उस समय बहुत ही पॉपुलर रहा। ये गाना जो है बहुत अच्छी तरह से लोग इसको सुना करते थे। तो आइए इस गाने का लुफ्त उठाते हैं ख्वाबों का सफर इस प्रोग्राम में। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। मैं हूँ आपका हम सफर सनी। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम में। और बहुत ही अच्छे अच्छे गीत आपको जो है सिलेक्टेड सॉन्ग्स ओबी 50s एंड 60s के हम लोग सुना रहे हैं। और पूजा बहुत ही अच्छा कलेक्शन लेकर हमारे बीच में आई है, तो आशा करता हूं आप सभी को आज का ये ख्वाबों का सफर जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ऐसा कहते हैं कि जब दुनिया तुम पर उंगलियां उठाए, जब लोग तुम्हारे रास्ते में मुश्किलें लाए, तो ना हार हौसला इन मुश्किलों के आगे, खुद को साबित कर विजेता, तू पलट कर वार कर, गरबार ना हमारा ना कोई ठिकाना। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत लाइनें जो है मैंने आपको सुनाया अभी, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा या ये जो शब्द है वो हमें किस तरह प्रेरित करते हैं कि हम जब भी अच्छी चीजें करने जाते हैं या हम अपने मन की बातें करने जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से लोगों की कुछ बातें या लोगों के द्वारा रास्ते में कुछ मुश्किलें जरूर आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों के आगे हमें अपने आप को साबित करने का एक मौका मिलता है। इसके बजाय कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इस मौके को हाथ से गवा देते हैं, लोगों के बिछाए हुए शब्दों को या उनके मुश्किलों को देखकर हम रुक जाते हैं। रुकना मौत की निशानी है, आगे बढ़ना जिंदा दिली का काम है, आगे बढ़ना जीने का हम सबूत देते हैं, तो आगे बढ़ते रहना है हमें। किसी भी तरह का मुश्किल हमारे बीच में है, उन्हें अनदेखा करते हुए हमें अपने रास्ते पे चलते रहना चाहिए। तो आइए पूजा, कैसे फील कर रहे हैं आप?
2: बहुत अच्छा लग रहा है।
1: कंफर्ट हो गए आप? चलिए बहुत ही अच्छी बात है, आप कंफर्ट फील कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि पूजा, जैसे कि हम लोग 50s एंड 60s के सिलेक्टेड सॉन्ग सुनाते हैं, तो अब कौन सा एक गीत आपके जहन में आ रहा है?
2: सर अभी तो मेरे जहन में बस एक ही गीत आ रहा है कि बहरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहां जाएं।
1: ओके, मुझे लगता है कि ये हमारे फिल्म 1966 का ये गीत है शायद, मुझे लगता है दो बदन ये फिल्म का नाम है, और जिसमें इस गीत को लिखा था शकील बदायूं साहब ने और मोहम्मद रफी साहब ने इसे गाया था और रवि साहब ने इसे संगीत से संवारा था। तो चलिए इस गीत को सुनते हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत ही खूबसूरत गीत था उस जमाने में, आज भी लोग इसे जब सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा फील करेंगे। तो आइए इस गीत का आनंद उठाते हैं। पूजा आप क्या कह रही है?
2: जी सर, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ सुनाने के लिए।
1: जी
2: जी सर।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत गीत का आपने आनंद उठाया है और पूजा जी ने जिस गीत को शुरुआत किया था वो गीत आपने अभी पूरा सुना। तो चलिए, बहुत ही अच्छा लगता है। 50s और 60s के जो गाने हैं वो बहुत ही कहीं ना कहीं हमारे दिल को छू जाते हैं। थोड़ा सा अगर हम टाइम दें और इन चीजों को समझें और इसमें जो मैसेजेस छुपे हुए हैं वो कहीं ना कहीं हमारे निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं हमारे दिल की बातों को ये गीत जो है बयां करते हैं। तो वहीं आगे बढ़ते हैं ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम में, और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए हम इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। और हम जिस रेडियो से बातें कर रहे हैं, रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM, इसका टैगलाइन ही है खुश रहो, खुशियां बांटो। आइए पूजा, आपका फिर से एक बार स्वागत है। पूजा, आप कैसे फील कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए अपनी फीलिंग्स।
1: सर, अब और भी अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, मैं दूसरे के सामने गा रही हूँ। मौका मिलना बहुत बड़ी बात होती है
0: जी, जी।
1: और आज आपने मुझे दिया, मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगी आपको।
0: ओके पूजा, और अब जो 1950 या 60s का जो गाना है, एक कुछ अलग फ्लेवर मैं सुनना चाहूंगा आपसे। तो मैं चाहूंगा कि कौन सा एक गीत आप सुनाने वाले।
1: सर, ये जो गीत है वो बहुत ही पुराना है और अभी जो मैं हूँ वो 21st century, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था गाना, पर कोई बात नहीं, मैंने कोशिश की और आई होप सबको अच्छा लगे ये गाना
0: जी। ये जो गाना है इसका भाव क्या है, कुछ बता सकेंगे आप, इसकी फीलिंग क्या है, किस विषय को लेकर ये गाना बना है।
1: ये जो गाना है वो मोहब्बत से जुड़ा हुआ है, मतलब किसी की मिलने की तड़प जब हद से ज्यादा होने लगती है तो जो इंसान होता है उसे समझ में नहीं आता वो जिए या मर जाए, कुछ इस तरह से है।
0: ओके, चलिए, मोहब्बत की कश्मकश में बंदा कहाँ जाए, जिए या मरे, ऐसी सिचुएशन पे है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा एक स्टाइल जरूर सुनाइए, फिर हम लोग इस गीत की तरफ बढ़ते हैं।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: ओके पूजा, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया है मोहब्बत का, आशा भोसले की आवाज में शायद ये गाना है। कल्पना फिल्म का 1960 का ये गाना आपने सुनाया है। जान निसार साहब ने लिखा था, बहुत ही अच्छा राइटर है जिन्होंने इस गीत को लिखा था। संगीतकार ओपी नैयर साहब, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूजा ने बहुत ही अच्छी तरह से समा बांध दिया। पुरानी 1950s एंड 60s के OBB अक्षर से शुरू होने वाले गाने हमें सुनाकर बहुत ही अच्छा एक शो के अंदर एक फ्लेवर दे दिया है। तो पूजा, मैं चाहूंगा कि कैसा फील कर रहे हैं और संगीत का जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं और किस तरह से इस फील्ड में आपका रुचि बढ़ा और किस तरह से आपको परिवार से कौन व्यक्ति आपको सपोर्ट कर रहा है, थोड़ा सा बताइए।
2: संगीत तो मुझे पहले से बहुत अच्छा लगता था, पर पहले मेरे पापा जो है सपोर्ट नहीं करते थे, पर अभी वो भी करते हैं। उन्होंने मुझे पहली बार सुना था गाते हुए, तो उनको लगा हाँ मेरी बेटी भी कुछ कर सकती है, तो फिर उन्होंने मुझे डाल दिया क्लासेस में। फिर अभी मैं स्टार्टिंग की हूँ सीखने का, और मेरे लिए जो सबसे ज्यादा खास रखता है संगीत में वो मेरा भाई है। वो मेरे लिए सब कुछ करता है, मुझे लेके आना, घर से जाना, सब वो करता है। वो नहीं होता तो शायद मेरा संगीत भी नहीं होता।
1: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और संगीत में कौन सी जगह पे मुश्किलें आती हैं सीखते समय?
2: सर, मुश्किलें तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हम संगीत सीख रहे हैं, अगर हम उसको एक दिन भी अगर हम छोड़ देते हैं, मीन्स कि हम 10 दिन पीछे चले गए, जो संगीत होता है उसे रेगुलर आप 2 या 3 घंटे तो ही आप कुछ कर सकते हो लाइफ में। संगीत ऐसा कुछ छोड़ दो ऐसा नहीं होता। उसे लेके जैसे हम पानी और सांस के बिना नहीं रह सकते, वैसे जो संगीत होता है उसके बिना एक सिंगर जो भी गायक होता है उसको नहीं रहना चाहिए, उसके लिए वो जुनून होना चाहिए।
1: पूजा, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि कौन सा एक गीत आप अभी सुनाने वाली?
2: इस बार मैंने बहुत गा लिया, अभी आपको सुनना है मुझे।
1: अच्छा मैं गा तो नहीं सकता हूँ लेकिन मैं बता सकता हूँ। चलिए एक गाना मैं खास आपके ब्रदर जो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आपको ले जाना ले आना और इतनी अच्छी जो सेवा आपकी कर रहे हैं, उनके लिए एक गाना जरूर डेडिकेट करना चाहूंगा। और 1962 का हेमंत कुमार साहब का संगीत से सवारा एक गीत और उनका ही गाया हुआ एक गीत मैं आपके ब्रदर के लिए, ये शकील बदायूं का लिखा हुआ है और फिल्म का नाम है 20 साल बाद। तो आइए 1962 का ये फिल्म, और इसमें एक बहुत ही खूबसूरत गाना है, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही अच्छा लग रहा है और वार्म वेलकम के साथ खाबों के इस सफर के आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुंचे हुए हैं और आशा करता हूं आज का ये एपिसोड आपके दिल में कहीं ना कहीं एक जगह बना दिया होगा और कहीं ना कहीं ये जो 50s and 60s के गाने हैं आपके दिल को छुआ होगा। तो हमें सलाम भेजिएगा मैसेज के जरिए, हमें अच्छा लगेगा। आपका प्यार मिलता है तो हमें प्यार देने में और खुशी होती है। तो आइए आखिरी मोड़ पे मैं चाहूंगा कि पूजा, जिस तरह से आप संगीत के साथ कैसे आपका जुड़ाव हुआ, क्योंकि संगीत सीखना अलग बात है, किस तरह से उसमें माहिर बनना वो अलग बात है, लेकिन संगीत के साथ आपका जुड़ाव कैसे हुआ?
1: सर, जब मैं सेकंड क्लास में पढ़ती थी, जो मेरे सर थे ना, वो बहुत ही अच्छा गाते थे, वो पुराने फिल्म के गाने गाते थे, तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली आगे बढ़ने की और उन्होंने बोला तू अच्छा कर सकती है। और
0: टीचर के द्वारा आपको प्रेरणा मिली, ऐसा?
1: जी सर।
0: अच्छा, आपने जब एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे साथ संगीत का, डैडी ने आपको देखा एक गाना गाते हुए, तो कौन सा गाना आप गा रही थी उस समय?
1: सर, मैं उस समय पुराना गाना तो नहीं गा रही थी, पर मैं न्यू सॉन्ग गा रही थी।
0: हाँ, तो थोड़ा सा दो लाइन सुना दीजिए हमें।
1: हाँ सर, क्यों नहीं।

ओके पूजा, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मुझे लगता है कि हम लोग वक्त पूरा हो रहा है और हमें भी अब इजाजत लेना चाहिए। पूजा, हम लोग दोनों इजाजत लेते हैं आज के इस एपिसोड से। हमारे सभी श्रोताओं को सलाम नमस्ते खम्मा गनी के साथ जाते जाते मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गजल मेहंदी हसन साहब का आपके लिए सुनाने जा रहा हूँ। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर। और ये गजल भी बी से शुरू होती है, भूली बिसरी चंद उम्मीदें, ये आपके लिए खास और दुआओं में याद रखिएगा। आप सुनाए हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा 3 दिन बिल्कुल नहीं, तो वो 3 दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: हेलो यशु, कैसा है?
2: ठीक हूँ, आप बताओ?
1: मैं भी ठीक हूँ। और आजकल क्या कर रहे हो तुम? बहुत दिनों से दिख नहीं रहे स्टूडियो में।
2: भैया थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था मुंह पे, इस कारण तबीयत खराब हो गई थी।
1: अच्छा, और मम्मी पापा कैसे हैं?
2: मम्मी पापा तो ठीक हैं। आपको पता है क्या हो गया? पापा गए हैं दिल्ली।
1: अच्छा,
2: काम से। और जब तक मेरी तबीयत खराब थी तो मैं ही सुबह के समय, जब मम्मी तो जाते हैं स्कूल में पढ़ाने और मेरी बहन जाती है पढ़ने स्कूल में, तो उस समय दोनों चले गए होते हैं, मैं घर पे अकेला होता हूँ। और अब आसपास कितने सारे लेबर्स वर्कर्स काम करते हैं ना, तो घर पे अकेले रह रहे का थोड़ा डर लगता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मम्मी देकर जाते हैं घर पे कि संभालना।
1: अच्छा, और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तुम्हें?
0: हेलो बच्चों।
3: हाय दीदी,
0: कैसे हो तुम लोग?
3: ठीक है।
0: अच्छा, तो स्टूडियो में अभी तुम लोग बैठ के क्या बातें कर रहे थे? यश और पंकज, आप दोनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी।
1: दीदी अभी यश आया बहुत दिनों बाद, तो मैं बस पूछ रहा था कि आजकल कैसा है और क्या चल रहा है उसके घर पे। और इसने बताया कि इसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है क्योंकि इसके पापा कहीं बाहर गए हुए हैं।
0: भाई अगर मम्मी पापा घर पे ना हो, कोई भी एक घर पे ना हो, तो बच्चों पे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आ ही जाती है।
1: हाँ दीदी।
3: जी दीदी,
0: है ना? तो एक काम करते हैं, आज हम इसी बारे में बात करते हैं कि आप बच्चों के ऊपर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं।
3: जी दीदी।
2: ओके
0: ठीक है। सबसे पहले दृष्टि, आप बताओ कि कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप फील करते हो कि आपकी है?
3: कभी कभी जब मम्मी घर पे नहीं होते, मतलब मोस्टली मम्मा घर पे नहीं होती क्योंकि वो स्कूल में पढ़ाने जाते हैं ना, तो इस वजह से फिर घर को संभालना, जैसे बर्तन धोने का काम होता है, झाड़ू पोछा होता है, तो यश भी कभी कभी यहाँ स्टूडियो आ जाता है तो मैं घर पे वो सारे काम करती हूँ और मुझे लगता है कि वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो मुझे करनी चाहिए।
0: अच्छा, घर के अलावा भी कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको लगता है, चाहे वो पढ़ाई में अच्छा करने की हो या फिर कुछ और ऐसे काम हो, जो आपको लगता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है?
3: जी दीदी, क्योंकि स्कूल में हम लोग को कितने सारे काम देते हैं, कोई टीचर हमें इंग्लिश स्पीकिंग मॉनिटर बनाता है तो उसके लिए भी हमको पूरी क्लास को देखना पड़ता है कि वो लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं कि नहीं, तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मतलब मुझे लगता है मेरी स्कूल में जो फ्रेंड्स होती हैं, कभी कभी क्या होता है वो लोग एब्सेंट हो जाते हैं तो उनका काम करवाना ना उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसमें उनकी मदद करना भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
0: अच्छा, तो अभी यश आप बताओ, आपको कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फील होती हैं?
2: दीदी मेरे को रेडियो में जैसे हमारा उड़ान का शो आता है तो उसकी प्रिपरेशन के लिए दीदी ने जिम्मेदारी दी है कि हम कुछ चीज़ें घर से लाएं और कुछ इधर आके थोड़ी प्रिपेयर कर लें। और मम्मी ने कुछ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी हैं, जैसे घर पे साफ सफाई रखना, कोई ना कोई काम करते रहना और घर का संभाल रखना। और जैसे कुछ नीचे लेबर्स काम करते हैं, मेरे को थोड़ा डर तो लगता है, बट लेकिन फिर भी स्कूल में फ्रेंड्स की तो बस हेल्प करना, उनके साथ मस्ती करना, बस खेलते रहना, पढ़ते रहना फ्रेंड्स के साथ स्कूल में, जैसे उनकी हेल्प करना। और क्लास में जैसे मैम ने कुछ ना कुछ अगर हमें किसी चीज़ के लिए अपॉइंट किया हो तो वो काम बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे एक्यूरेट चीज़ करके मैम को थमाना।
0: ठीक है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ें बताई आपने। पंकज आप बताओ, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपको लगता है इस वक्त आपकी है?
1: मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सुबह आंखें खोलते ही शुरू हो जाती है, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि सुबह अपने टाइम पे उठना ताकि हम पूरे दिन का जो टाइम है उसको मैनेज कर पाए। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं 5 बजे उठूँ जिससे कि मैं अपने पूरे दिन का जो भी शेड्यूल है उसको मैं मैनेज करूँ। तो ये स्टार्टिंग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसके बाद बिना किसी के कहे और बिना मम्मी पापा के कुछ बोले ही अपने सारे कामों को करना, जैसे स्कूल के लिए रेडी होना, ब्रेकफास्ट करना और जो भी काम होते हैं हमारे, कपड़े वगैरह भी अच्छे से आयरन करके पहनना, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये मैं खुद करता हूँ।
4: ठीक है। और
1: घर पे कोई भी अगर सामान लाना हो बाहर से या कुछ भी काम करना हो जो करना चाहिए, तो वो सब करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है। और स्कूल में भी अगर टीचर नहीं हो तो स्कूल के क्लास की चीज़ों का ध्यान रखना और हमारे जो भी शेड्यूल के जो काम होते हैं उनका खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी शेड्यूल को तोड़े नहीं, तो वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
4: ये तो बहुत अच्छी बात है, शेड्यूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। अच्छा सैंडी, आपको क्या लगता है आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं?
5: यदि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम जब पंकज जैसे बोला कि जब उठते तब से, तो सबसे पहला तो टाइम का पंकज ने बताया वो है ही है। फिर दूसरा कि हम अपने कभी कभी कुछ काम के लिए मम्मी बोलती है तो मैं शायद कभी नहीं कर पाता, तो फिर मैं बाद में फील करता हूँ कि हाँ मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे करनी भी चाहिए। फिर फर्स्ट पढ़ाई, कि हमारी पढ़ाई के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब हम कुछ नहीं पढ़े करेंगे तो फिर हमारे मम्मी पापा को बुरा लगेगा, तो ये दूसरी पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर अगर स्कूल से आए तो अपना बैग सही जगह पर रखना, अपनी कॉपी किताब का ध्यान रखना, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि कभी कभी मैं किताबें यहाँ रख देता हूँ और फिर बैंक ध्यान नहीं देता हूँ, तो मुझे फील होता है कि हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे रखना चाहिए, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ नहीं मिलती है, फिर स्कूल के लिए कॉलेज के लिए लेट होते हैं, इसीलिए ऐसी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है जो हमें करनी चाहिए।
4: फ्रेंड्स के प्रति कुछ नहीं?
5: हाँ, फ्रेंड्स के प्रति भी है, जैसे कि अगर वो दुखी है तो मुझे पता करना है कि दुखी क्यों है, अगर मेरी बात से उसे कोई बुरा लगा तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे कारण बुरा क्यों लगा उसे, फिर उसे हैप्पी भी रखना, ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
1: दीदी, हमारी फ्रेंड्स के लिए तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि अगर हम अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर गए हैं और हमारे भले ही हमारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर गए हैं और वहाँ कुछ भी करते हैं, एक दूसरे को संभालना या किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको समझाना या उससे निपटना, सारे फ्रेंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम सही सलामत और सुरक्षित अपने घर पहुँचे।
5: हाँ, और दीदी दूसरी बात और कि हम कहीं जाते हैं और कुछ हमारे साथ गलत होता है तो फ्रेंड्स को तो पता है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम चाहें तो अपने घर वालों को भी बताना चाहिए कि बाद में कुछ प्रॉब्लम होती है तो कि हाँ मैं वो फिर मैं सिक्योर कर सके, इसीलिए ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी।
4: मतलब पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फील होती है? जी दीदी। हाँ यश, आप क्या कहना चाह रहे हो?
2: और दीदी, जैसे हमारे दोस्त को अपने से हमारे ग्रुप से अलग ना होने दे, छूट ना जाए किसी चीज को देखते हुए, तो ये भी बात है। अगर वो अलग हो जाए या उसको नया हो इस जगह पे, जैसे उसने देखा ना हो तो बेचारा परेशान हो जाएगा, अगर ना उसके पास फोन हो तो उसके लिए एक मुश्किल हो जाएगी ना, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे सारे फ्रेंड्स हमारे साथ बिल्कुल एक ग्रुप में ही साथ में चल रहे हैं इकट्ठा वैसे।
4: अच्छा
3: दीदी, हमें हमारे मैनर्स का ध्यान रखना, वो भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम किसी से जुबान ना लड़ाए।
4: ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फील होती है?
3: जी दीदी।
4: अच्छा, तो अब मुझे ये बताओ, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने फील की अपने फैमिली के प्रति, स्कूल के प्रति, टीचर्स के प्रति, फ्रेंड्स के प्रति, क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी भी हैं जो आपको अपने देश के प्रति फील होती हैं?
2: उसे स्वच्छ रखना, जैसे हमारे बाहर की कंट्री से हमारे इंडिया का कई कई जगह देखने आते हैं फॉरेनर्स, वो सोचते होंगे कि थोड़ी बहुत गंदगी है यहाँ पे, जैसे फॉरेन कंट्री साफ होती है वैसे हमें भी अपने भारत को स्वच्छ और साफ बनाना चाहिए ताकि और लोग आके हमारे भारत को देखें।
4: ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होता है?
2: यस दीदी।
4: और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी?
3: दीदी, हमें पॉल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
4: और पंकज?
1: दीदी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक और होती है टूरिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो, जो हमारे बाहर के जो फॉरेनर्स हमारे इंडिया में घूमने के लिए आते हैं, तो उन्हें काफ़ी लोग होते हैं जो उनको मिसगाइड कर देते हैं या किसी तरह उनसे कुछ पैसे कमाने की लालसा दिखाते हैं और उनको लूटने की भी कोशिश करते हैं, तो एक तरह से हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उनके साथ कहीं कुछ गलत हो रहा है या कोई उनको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है और वहाँ पर अगर हम मौजूद हों तो हम उन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं और उनको कुछ अच्छा बताया जाना चाहिए मेरे हिसाब से।
4: मतलब सही इन्फॉर्मेशन देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ। आपको लगते हैं? अच्छा, और सैंडी आपको?
1: दीदी, आजकल जैसे देश में काफी चर्चे में चल रहा भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार से जैसे हम खुद भी भ्रष्टाचार करते हैं। जैसे मैं भी कई बार बाइक पे जा रहा होता हूँ तो हेलमेट नहीं भी पहना होता, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाला अगर रोकता है तो मैं साइड से निकल जाता हूँ या उसको चकमा दे के कहीं से खिसक जाता हूँ। तो ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं टाइम बचाने के लिए या पैसे बचाने के लिए ऐसा कर लेता हूँ। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस जिम्मेदारी को अपने सर पे लूँ और जितना हो सके अपने देश के लिए कुछ करूँ। तो ये देश के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऐसे और भी देखा जाए तो कई तरह के भ्रष्टाचार हैं, जिस भ्रष्टाचार में हम साथ देते हैं, हम खुद जिम्मेदार होते हैं उनके। तो ऐसे भ्रष्टाचार हमें नहीं करने चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
4: बिल्कुल, मतलब किसी चीज को सपोर्ट ना करना, जो गलत काम है उसे सपोर्ट ना करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको
1: फील होता है। बिल्कुल।
4: तो मतलब आज से पंकज हेलमेट में ही हमेशा नजर आएगा।
3: जी दीदी।
4: अच्छा ठीक है बच्चों, देखो ये बात आपने बहुत अच्छी कही, क्योंकि कभी कभी हम किसी बारे में सोचते नहीं है, लेकिन जब हम सोचना शुरू करेंगे तो हमें समझ में आएगा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है।
3: जी दीदी,
4: है ना
2: दीदी। जैसे अगर किसी ने कोई गलत काम किया और हम उस बारे में जानते हैं बट लेकिन किसी को बता नहीं रहे हैं, तो फिर वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बताएं। हाँ। जैसे अगर वो हमारा दोस्त और हमें वो आ रहा है कि अगर हम बता देंगे तो आगे क्या होगा, ऐसे करके। लेकिन हम कुछ ना कुछ गलत ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बताएंगे तो आगे जाके उसकी फ्यूचर में उसको हेल्प मिलेगी। जैसे अभी हम उसको रोक देंगे वैसे काम करने से, तो फिर आगे जाके वो वैसे करेगा नहीं, क्योंकि उसे याद आएगा कि अरे हाँ मैंने किया था तो ऐसे हुआ था।
4: तो मतलब आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि अपने दोस्त को गलत कामों में साथ नहीं देना है।
2: यस दीदी, होती है,
4: फील होती है।
3: दीदी मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। सच बोलना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
4: बिल्कुल, सच बोलना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत अच्छी बात कही दृष्टि आपने। अच्छा ठीक है, ये तो आप लोगों ने बताया कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको फील होती है। अब ये बताओ, कभी कोई ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन आई है या कोई ऐसी सिचुएशन आई है जब आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया हो जबकि उस समय सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं थे कि आप वो चीज कर पाए, लेकिन क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसीलिए आपने वो काम किया हो?
1: दीदी एक बार क्या हुआ था, अभी ज्यादा दिनों की बात नहीं है, एक दो महीने पहले की बात है। तो मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन उनकी तबीयत अचानक खराब होने के कारण कंस्ट्रक्शन साइट पे जो भी लेबर्स या मिस्त्री काम करते थे उनका ध्यान रखना, उनसे काम करवाना या साइट को संभालना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी। क्योंकि अगर नहीं संभालते तो काफ़ी नुकसान हो जाता। तो मैंने 1.5 महीने तक कंस्ट्रक्शन साइट को संभाला था अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर।
4: ये तो पंकज ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि कभी कभी जब डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो हम हार मान जाते हैं या हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन दुखी ना होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानकर जो उसने काम किया उस सब के लिए मुझे लगता है हम सबको जोरदार ताली बजानी चाहिए।
1: थैंक यू।
4: अच्छा तो अब मुझे ये बताओ कि जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पाते हो तो आपको कैसा फील होता है?
3: बहुत बुरा लगता है दीदी। ये मेरे साथ आज ही हुआ, मतलब मैं रेस में थी और मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सफायर हाउस यानी कि जो ब्लू हाउस होता है उसको कैसे भी करके मुझे जिताना था रेस में, और उन्होंने बोला था जो फर्स्ट और सेकेंड आएगा वही जीतेगा। बट लेकिन हुआ क्या, जो मेरे साथ दो लड़कियां थी ना अलग अलग हाउसेस की, वो पहले भाग गई टाइम से पहले, और मैंने जब सर को बताया तो सर ने भी बोल दिया कि नहीं नहीं कोई बात नहीं होता है। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मेरे को सेकेंड या फर्स्ट आना चाहिए था, लेकिन मैं थर्ड आई तो मुझे लगा कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पाई।
4: अच्छा दृष्टि, देखो इसमें एक बात ये है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अच्छा परफॉर्म करने की होनी चाहिए, लेकिन फर्स्ट या सेकंड आए ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें नहीं लेनी चाहिए। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपना बेस्ट परफॉर्म करें, कहीं भी हमारी परफॉर्मेंस में हमारी तैयारी में कमी ना हो, लेकिन रिजल्ट क्या होगा वो तो हमारे हाथ में नहीं है। तो बच्चों कभी भी रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि अपनी परफॉर्मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना।
3: दीदी,
5: हाँ दीदी,
3: वो लोग जानते थे मैं फर्स्ट सेकंड आ जाऊंगी, क्योंकि जब उन्होंने सिलेक्शन किया था तो भी मैं फर्स्ट आई थी, लेकिन वो लोग पहले भाग गए इसलिए वो फर्स्ट आ गए।
4: हमें बुरा नहीं फील करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने अपना बेस्ट दिया तो दूसरों के कंपैरिजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, सिर्फ हमने क्या किया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है।
3: जी दीदी, और बाद में जिस दीदी ने मुझे सिलेक्ट किया था उन्होंने बोला कि अगर वो लोग जल्दी नहीं भागते तो आप फर्स्ट जरूर आते, इसलिए मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ऐसा बोला।
4: और सैंडी आप बताओ, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पाते हो तो कैसा फील होता है?
5: ऐसा तो बुरा लगता है दीदी, क्योंकि जो हमारा दायित्व था हमने पूरा नहीं किया, तो बाद में से फील होता है कि हाँ मुझे करना चाहिए था और नेक्स्ट टाइम करने की कोशिश भी करते हैं।
4: कभी आपने ऐसा कुछ फील किया है अपनी लाइफ में?
5: हाँ दीदी, एक बार घर पे शायद कुछ काम चल रहा था, पापा ने बोला था कि उस दिन संडे था, पापा ने बोला था कि काम करके रखना, वो गए थे ड्यूटी, फिर मैंने किया नहीं, शाम को आया तो उन्होंने बोला किया नहीं, फिर दूसरे दिन मैंने शायद नहीं किया, तो फिर मुझे तीसरे दिन से बुरा लगा कि हाँ मुझे कर देना चाहिए था, क्योंकि बाद में तीसरे दिन पापा ने खुद ने किया, फिर मुझे बुरा लगा कि हाँ मुझे कर देना चाहिए था, तो वो तो मुझे तो उस वक्त थोड़ा बुरा लगा था।
4: बिल्कुल, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो हमें बुरा तो लगता है, लेकिन उसके बाद हम स्टेप क्या लेते हैं वो भी बहुत मायने रखता है। अगर हम ये सोच लें कि हमें आगे करना ही है तो मतलब हमें एक लेसन मिल गया जो लाइफ लॉन्ग हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने में मदद करता है। तो क्या आपने ये लेसन दिया?
5: हाँ बिल्कुल दीदी।
4: अच्छा यश, आप बताओ आपको कैसा लगता है या फिर आप उसके बाद क्या करते हो?
2: जी वैसे तो बहुत बुरा लगता है जब मैं कोई काम पूरा ना कर पाऊँ, तो जैसे घर पे मम्मी अगर कोई काम देकर जाए और अगर वो पूरा ना हो तो जब मम्मी घर आते हैं तब थोड़ी डांट भी पड़ती है और बुरा भी बहुत लगता है कि मतलब एक काम पूरा नहीं कर पाए, जैसे कोई भी काम हो, घर का हो चाहे बाहर का हो, तो मतलब फिर उससे तो मैंने सीख ली और अब मम्मी कोई भी काम बोले तो मैं टाइम टू टाइम करके दे देता हूँ।
4: मतलब मम्मी जो काम बोलती है वो इम्पोर्टेंट ही होगा और मैं कर सकता हूँ तभी वो बोलती है, इसीलिए उसे तुरंत कर देना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल तुरंत कर देना सबसे अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात बताई यश आपने। पंकज आप बताओ, कभी आपने ऐसा कुछ फील किया है या फिर उसके बाद आपने क्या किया है?
1: दीदी बहुत पहले की बात है, जब मैं थोड़ा छोटा था और मेरे मम्मी और दीदी वगैरह सब गाँव गए हुए थे, मैं और मेरे पापा ही केवल यहाँ आबरोड में रह रहे थे, तो एक बार क्या हुआ कि पापा ने कुछ बाहर सूखने के लिए रखा था और पापा ने कहा था कि बारिश हो या कोई जानवर उसे खा जाए उससे पहले उसको तो घर में रख देना और ध्यान रखना थोड़ा, तो मैं खेलने में बिजी था और मैंने उस चीज़ का ध्यान नहीं रखा और इतने में कोई गाय आके उसने वो खा लिया, तो फिर जब पापा घर पे आए और उन्होंने देखा तो मुझे बहुत डांट पड़ी और फिर मुझे बहुत बुरा फील हुआ।
4: और उसके बाद फिर आपने क्या सोचा?
1: उसके बाद मैंने सोचा कि मैं दोबारा कभी ऐसी गैर जिम्मेदारी वाली हरकत नहीं करूंगा।
4: अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ, जब आप ये सोचते हो कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा फुलफिल करोगे और वो डिसीजन लेते हो तो क्या उसको हमेशा खड़े रह पाते हो या भूल जाते हो?
3: दीदी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भूल जाती हूँ, वरना तो मैं कर लेती हूँ।
4: अच्छा तो अब एक और बात मुझे ये बताओ
1: दीदी, कई बार होता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होती है लेकिन फिर भी हम उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते नहीं, उनसे दूर रहने की कोशिश करते।
3: जी दीदी।
4: अच्छा तो उनसे दूर रहने की जो हम कोशिश करते हैं तो वो क्या रीजन होता है, हम क्यों कोशिश करते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते क्यों हैं?
1: क्योंकि उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में शायद हमें ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, जैसे कि एक बार मुझे मेरी मम्मी ने कहा था कि कुछ काम दिया था करने को, एक हॉस्पिटल का बिल था उसकी कॉपी बनाने को कहा था कि इसकी कॉपी कर देना सारे जितने भी पेजेस हैं उनके, तो 30-40 पेज थे और उसमें बहुत सारे दवाइयों की लिस्ट थी तो उसको लिखना था मुझे, लेकिन वो इतने ज़्यादा थे कि मुझे देख के उसको करने की इच्छा नहीं हो रही थी तो मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं की थी, लेकिन बाद में बहुत देर बाद मैंने वो काम किया।
4: क्योंकि कभी कभी हमारा मन नहीं होता है।
1: हाँ, तो मैं यही कहना चाहता था कि कई बार हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें पता होती है लेकिन फिर भी हम उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं
4: क्योंकि हमारा मन नहीं होता है या फिर हमें मजा नहीं आता है वो करने में।
1: हाँ दीदी, हाँ
4: दीदी। है ना, लेकिन मजे से ऊपर होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसीलिए आपने करने की कोशिश भी की। तो यश आप बताओ, कभी आपने अपनी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की कोशिश की है?
2: नहीं दीदी।
4: अच्छा मुझे बच्चों आप ये बताओ, ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फील होती है जो आपके अराउंड लोग हैं, जो सबसे क्लोज लोग आपके अराउंड हैं, जैसे आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके टीचर्स हैं, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको फील होती हैं कि उन्हें फुलफिल करनी चाहिए आपके लिए? हम पंकज, आप बताओ।
1: दीदी, मेरे साथ कई बार क्या होता है कि स्कूल में जैसे काफी टीचर्स हैं जो दूसरे स्टूडेंट्स में और मुझ में काफी डिफरेंस देखते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इतने डिफरेंस जो वो महसूस करते फील करते वो होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर स्टूडेंट को एक जैसा ही देखें और उनसे अपनेपन जैसा व्यवहार करें।
4: अच्छा दृष्टि, आप बताओ।
3: दीदी, मुझे लगता है कि मेरी मम्मी को मुझे बहुत अच्छा अच्छा खाना बना के देना चाहिए। वैसे तो वो बहुत अच्छा खाना बना के देते हैं, लेकिन उनके काम की वजह से उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वो सुबह सुबह जल्दी उठ के खाना बनाते हैं और मैं उसमें उनकी हेल्प करती हूँ, लेकिन फिर भी मतलब मुझे चाहिए कि वो और अच्छा खाना बनाए,
2: यानी कि कुछ स्पेशल बनाए।
3: हाँ।
4: अच्छा, तो ये आपको फील होता है मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
3: जी दीदी।
4: और अच्छा यश, आप बताओ।
2: दीदी, मैं तो अपने दोस्तों के बारे में ये सोचता हूँ कि हर समय मेरे साथ ही रहे और कभी मेरे विरोधी टीम में ना चले जाए।
4: अच्छा, मतलब आपको ये लगता है कि आपके फ्रेंड्स की जिम्मेदारी है कि वो हमेशा आपकी साइड ले।
2: हाँ, अगर गलत काम हो तो मेरे को समझाए, लेकिन अगर सही बात है तो फिर उनको मेरे साथ ही रहना चाहिए।
4: और सैंडी, आप बताओ।
5: दीदी, मुझे मेरी मैम से ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा कभी लगता है कि हाँ मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, तो कभी भी मुझे ऐसा बोलती है अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। मैम को विश्वास होना चाहिए मेरे पे।
4: मतलब आपको ये लगता है कि आप पे विश्वास रखना टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
3: जी, हाँ। दीदी।
4: अच्छा, क्योंकि जब वो ऐसा नहीं करते तो आपको बुरा लगता है।
5: हाँ, बहुत।
4: और किसी से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है? राह चलते लोगों से फील होती है, कुछ ऐसा लगता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मम्मी पापा की?
3: दीदी, मुझे लगता है कि कभी कभी क्या होता है, कोई कोई लोग ना, किसी के अगर हम लोग के जैसे कभी ऐसा हुआ होता है किसी किसी के साथ कि उस जन के पैसे गिर जाते हैं, लेकिन बाजू में वो जो जाता है वो जानता है कि इसके पैसे गिरे हैं, लेकिन वो उसको नहीं देता, वो खुद रख लेता है। तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ना खुद रख कर उस जन को दे जिसके वो पैसे थे।
4: ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो हमें लगता है दूसरों को हमारे प्रति फुलफिल करनी चाहिए।
3: जी।
4: लेकिन अगर वो नहीं कर पाते हैं तो इन दैट केस आप लोग क्या करते हो? मतलब आपको कैसा फील होता है वो एक अलग बात है। जब वो लोग वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पाते तो आप क्या करते हो?
3: दीदी, मैं जब मेरी फ्रेंड ऐसे करती है तो मैं उसको समझाती हूँ कि देख, मैं तुझे कभी फ्रेंडशिप तोड़ना नहीं चाहती क्योंकि तू ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बट मैं उसको समझाती हूँ और बाद में फिर उन दोनों के बीच में जो वो फाइट होती है ना, उसको सॉल्व भी करना होता है, तो उसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग साथ में बैठ कर।
4: अच्छा, ये बात आपने अच्छी कही, क्योंकि कई बार नहीं समझ पाते, हमें लगता है दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारी बात को समझे, लेकिन सबका समझने का नजरिया अलग अलग होता है।
3: जी दीदी।
4: तो जिम्मेदारी हमारी हो जाती है कि अगर वो ना समझे तो हम उन्हें समझाएं, क्योंकि कभी कभी हम अपनी बात कहते नहीं है, दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो समझ जाएं।
3: जी दीदी, ये आपकी बात बहुत सही है।
4: है ना? तो समझाने में कोई पराई नहीं है, अगर कोई आपकी बात ना समझे तो उसे समझाओ। अच्छा सैंडी, आपको क्या लगता है?
5: दीदी, वो नहीं कर पाते बुरा तो लगता है, ये बात है। फिर मैं सोचता हूँ कि मैं खुद वो कमियां दूरी करता हूँ। कभी मैम बोलते कि मैम को विश्वास नहीं, तो फिर मैं सोचता कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँ तो मैम को लगे कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैम को मुझे विश्वास हो कि हाँ मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ और परफॉर्म करने की कोशिश भी करता हूँ।
4: ये अच्छी बात है अगर हम कोशिश करें अपनी तरफ से, क्योंकि हम दूसरों को तो बदल नहीं सकते।
3: जी दीदी।
4: है ना? तो दूसरे अपनी जिम्मेदारियां ना भी समझें, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है और ये हमारे प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि
5: हाँ,
4: हम
5: दीदी,
4: अच्छा परफॉर्म करें।
3: जी दीदी।
4: है ना? और पंकज, आप बताओ।
1: दीदी, जैसे स्कूल में टीचर्स तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कई बार नहीं भी निभाते हैं, या फिर उनसे कोई मिस्टेक में या किसी स्टूडेंट को समझने में गलती भी कर देते हैं अनजाने में, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस पर ज़्यादा ध्यान न देकर अपने जो भी काम है उसमें ध्यान देना चाहिए और मुझे अच्छा परफॉर्म करना चाहिए जो भी मेरा काम है उसमें।
4: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे पास एक टीचर है, लेकिन एक टीचर के पास कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं?
3: 65।
4: अब सोचो एक एक को समझ पाना कितना मुश्किल है।
3: बहुत ज्यादा दीदी,
4: है ना। तो कभी अगर बाय चांस या गलती से ऐसा हो भी जाए तो हमें बुरा फील नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो चलो आज हमने बहुत सारी बातें की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, और हमने ये समझा कि दूसरों की जो हमारे प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो फुलफिल नहीं भी कर पाते, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे प्रति हमारी भी हैं जो हमें पूरी करनी है।
3: जी दीदी।
4: तो इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। फिर से मिलेंगे बच्चों की दुनिया के अगले एपिसोड में और करेंगे ढेर सारी बातें। तब तक के लिए बाय बाय।
3: बाय बाय।
6: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
7: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा है। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
6: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: महफिल में उनको बोला
1: चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या, यहां नहीं कर सकते, यहां नहीं कर सकते। क्यों स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई, क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहां वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं अब। और करियर ऑप्शन कार्यक्रम में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग अलग अलग विषय को लेकर आपके सामने आते हैं। और आज हम लोग एक यूनिक करियर के बारे में बात करने वाले हैं, और ये कौशल है जैसे कि लिखने का। एक लेखक कैसे बना जाए, एक राइटर कैसे बना जाए, और इस रास्ते को कैसे अपनाया जाए, इस विषय को लेकर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। और एक लेखक बनने के रास्ते, जरूरी योग्यताएं और सफलता की रणनीतियों के बारे में आज हम लोग मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे। वैसे ये पेशा जो है अपने आप बनता है, लेकिन फिर भी आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी खूबसूरत बन गई है और बहुत सारे AI टूल्स आपको मदद करती है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि आप टूल्स के बगैर आप अपने आप को, अपनी बुद्धि की क्षमता पर इसको यूज करें, तो टूल आपके सहयोगी बनेंगे। अगर पहले से आप टूल यूज करेंगे तो आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास रुक सकता है। इसीलिए हम चाहेंगे कि आप अपनी बौद्धिक स्तर से इन चीजों को समझे और अपने आप को विकसित करें। तो आज के डिजिटल युग में लेखन का क्षेत्र एक समृद्ध और गतिशील करियर का विकल्प तो बन गया है, लेकिन ये एक ऐसा पेशा है जो रचनात्मक क्रिएटिविटी से भरा हुआ है। ज्ञान और अभिव्यक्ति की आजादी को एक साथ जोड़ा गया है। यदि आपके मन में भी शब्दों के प्रति एक गहरा लगाव और आप इस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, यानी आज का ये एपिसोड आपके लिए है। आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे रूबरू होंगे और बातचीत करेंगे इसी विषय को लेकर। और आप बने रहिए हमारे साथ। और मैं चाहूंगा हमारे विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं तो जरूर एक कॉपी पेन आपके पास रखिए और फिर हमसे जुड़िए या कार्यक्रम सुनिए, ताकि आप जो आपके काम की बातें हैं उसे नोट कर ले और आप उस पर काम करें, है ना। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है आप सभी का करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। जीवन कौशल के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम लोग बात कर रहे हैं, एक लेखक कैसे बनेंगे आप। लेखक बनने के लिए आवश्यक जो चीजें हैं, जैसे क्वालिफिकेशन और स्किल्स, जिसको योग्यताएं और कौशल कहते हैं। लेखन के क्षेत्र में औपचारिक रूप से शिक्षा से अधिक महत्व आपकी कौशल, क्षमता और जुनून है। फिर भी एक आधारभूत संरचना का होना बहुत जरूरी है। जैसे आप अगर खेल में अच्छे हैं तो पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है, लेकिन एक बेस आपका जो है, कम से कम पढ़ाई आपकी हो, ताकि आप कहीं जाएंगे तो जरूर लोगों से मिलना जुलना जब करेंगे तो वो चीजें भी आपको काम आती है। और जितना पढ़ाई आपके साथ रहती है, एजुकेशन जितना ज्यादा आप करते हैं, उतना वो आपको बेनिफिट भी देता है।

इसीलिए लेखक बनने के लिए भी पढ़ाई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किल्स इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एजुकेशन की, कि आपकी कम से कम कितनी पढ़ाई होनी चाहिए। आज के समय में किसी भी विषय में आप ग्रेजुएशन की डिग्री एक बुनियादी योग्यता माना जाता है, ये आपको कर लेना है। अगर आपकी रुचि किसी इसमें और अधिक है तो विशेषज्ञ के तौर पर आप जो है हिंदी साहित्य, जनसंचार, पत्रकारिता या मास कम्युनिकेशन में डिग्री ले सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। लघु पाठ्यक्रम की बात मैं करूं तो रचनात्मक लेखन, तकनीकी लेखन या डिजिटल कंटेंट राइटिंग जैसे लघु पाठ्यक्रम शॉर्ट टर्म कोर्सेस आपके कौशल को निखारने और करियर के नए दरवाजे खोलने में मदद होते, तो ये आपके रेगुलर पढ़ाई से अलग है। तो इन चीजों को आप देखिए, न्यूज़पेपर में इसके बहुत सारे एड्स आते हैं या कहीं अपने जो लेखक हैं अच्छे उनसे आप संपर्क करके ऐसी चीजों का आप अभ्यास कर सकते हैं या ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। इसके साथ आता है आवश्यक कौशल की बात, अगर मैं कहूँ स्किल्स की बात करें तो भाषा पर पकड़ आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे हिंदी व्याकरण हो गया, वाक्य विनायस हो गया या शब्दावली पर मजबूत पकड़ होनी चाहिए। साथ ही आपके लिखने की जो शैली है वो भी क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। अगर किसी को आप कुछ लिख के देते हैं तो बंदा पढ़ सके और समझ सके कि आपने क्या लिखा है। प्रभावमय होना चाहिए, एक जो है लिंक होना चाहिए और पाठकों को बांधे रखने वाली होनी चाहिए, तब आप जो है एक अच्छे लेखक बन सकते हैं। क्रिएटिविटी, रचनात्मक सृजनात्मकता, एक लेखक के पास सामान्य विषय को भी बहुत अच्छी ढंग से, असाधारण ढंग से प्रस्तुत करने की कला होती है, तो ये आपके अंदर होनी चाहिए। नए विचारों और दृष्टिकोण को जन्म देने की क्षमता ही आपको दूसरों से अलग करती है। अब बात करें, इसमें रिसर्च भी आते हैं, अनुसंधान क्षमता भी आती है। किसी भी विषय पर प्रमाणिक और तथ्यात्मक लेख लिखने के लिए गहन शोध करने की आवश्यकता होगी। अगर आप इसमें माहिर है तो आपके लिए बहुत काम की चीज है। धैर्य और अनुशासन की बात करें, लेखन एक एकांत का काम है जिसमें धैर्य और स्व अनुशासन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। नियमित लेखन अभ्यास सफलता की कुंजी बनाती है। तो चलिए, आशा करूंगा कि आप बिल्कुल अच्छे फील कर रहे हैं इन सारी चीजों को देखकर। सोच रहे होंगे कि अरे यार इतना सारा चीज करना पड़ेगा, बिल्कुल इन सारी चीजों को करना ही है, लेकिन करते वक्त आपको ये नहीं लगना है कि ये करना है, ये आपके जीवन शैली में ऑटो मोड पे आ जाए तो आपको टेंशन नहीं होगा। जब आप इन चीजों को, इन वैल्यूज को, इन बातों को अगर ध्यान रखेंगे, सीखने की जिज्ञासा होगा तो ये बहुत बड़ी चीजें नहीं लगेगी, है ना। तो जैसे जैसे आप पढ़ाई करते हैं, नॉर्मल आप जो रेगुलर आपका रूटीन में है वो करते हुए, शाम का समय है आपके पास, फ्री टाइम है, तो उसमें इन कौशल के बारे में सोचना है, कुछ लिखना है, कुछ दिखाना है, तो ये चीजें ऑटोमेटिकली आपको जो है एक लेखक की ओर ले जाएगा। और जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, आप लिखेंगे, आपकी कहीं भी कुछ चीजें जो है लिखने में रुचि आ जाती है तो आप उसको निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए आगे और भी बातें हम लोग करेंगे कि कैसे एक लेखक बनने के लिए क्या करें। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, जी हाँ, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है प्यारे भाई और बहनों और हमारे विद्यार्थी मित्रों, आपके लिए आज एक नया विषय लेकर हम आए हैं, जैसे एक लेखक कैसे बने। तो आइए, बात चल रही थी आपके लिए एक राइटर बनने की। सबसे पहली बात आती है निरंतर पढ़े और लिखे, रीड एंड राइट कॉन्सिस्टेंसली, कॉन्सिस्टेंटली। तो ये जो है निरंतरता बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप लिखना पसंद है आपको तो रोज लिखिए, दो लाइनें लिखिए, पन लिखिए। हमारे एक मित्र हैं कंसल, जो उनका शॉर्ट नेम लिखते हैं, उनका सरनेम है शायद कंसल, और वो हमें हमेशा जो है अपने व्हाट्सएप पे सिर्फ चार ही लाइनें दे भेजते हैं, लेकिन रेगुलर भेजते हैं। तो आप देखिए मुझे कितने सालों से वो भेज रहे हैं, अगर मैं उन सारी चीजों को कंपाइल करूँ एक अच्छी किताब बन जाएगी, है ना। तो रेगुलर लिखने से बहुत बड़ा काम होता है। आप दो लाइनें अगर लिखते हैं पूरे साल भर, लिखिए 750 पेज आपके वो वाक्य हो जाएंगे, है ना। दो लाइन अगर एक साल लिखते हैं तो 750 लाइन आपके हो जाएंगे, और 750 लाइन एक छोटी किताब बन सकती है आपके लिए, है ना। तो निरंतरता का बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है एक राइटर बनने के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं विभिन्न विधाओं में, कहानी, कविता, निबंध, लेख, ब्लॉग आदि के पाठक आप बने, नियमित पढ़े, इससे आपको शब्दावली और ज्ञान दोनों का विस्तार होगा। साथ ही रोजाना लिखने का अभ्यास करें, चाहे वो एक डायरी हो, एक ब्लॉग पोस्ट हो, या किसी छोटी सी कहानी को आप लिखते हैं, जरूर लिखिएगा, है ना। दूसरा है अपनी विधा चुने, तय करें कि आप किस तरह का लेखन करना चाहते हैं। क्या आप एक उपन्यासकार, कवि, पत्रकार, तकनीकी लेखक, प्रचार सामग्री लेखक, कॉपी राइटर या ब्लॉग राइटर बनना चाहते हैं। हर विधि को अपना एक अलग जो है, हर टेक्निक को अलग तरीके से लिखा जाता है। हर विधि की अपनी एक अलग आवश्यकताएं और अवसर होते हैं कि आप कॉपीराइट के बारे में कभी भी नहीं लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे तो किसी विषय को लेकर लिखेंगे और उसके अनुरूप लिखेंगे। तो आप अगर इस तरह के चीजों से जुड़े हुए हैं, और आप जैसे कि मीडिया के माध्यम से आप हैं, तो ये चीजें आपके लिए जरूरी हैं। और अगर आप एक साधारण व्यक्ति हैं और आप अपने रोजमर्रा की जीवन कहानी से जुड़ते हैं, तो आप एक अच्छे उपन्यासकार, कवि बन सकते हैं। आप रोजमर्रा की चीजों को देखते हुए उन्हें एक टेक्निकल तौर पे उन्हें प्रॉपर तरीके से आप लिखना शुरू करें, है ना। जैसे हम लोग देखेंगे आजकल, हम अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने अपने जीवन को एक कला के माध्यम से जीवन को देखा उन्होंने, और अपने आसपास की चीजों को ही उन्होंने लिखा, और वो बहुत बड़े राइटर बने। जैसे आप प्रेमचंद की बात लीजिए, उन्होंने अपने आसपास की चीजों को देखा और उसे लिखा और एक बहुत बड़े राइटर बने। तो ऐसे ही आपके जीवन में अगर आसपास की चीजों को आप एक कलात्मक ढंग से देखते हैं और उसे लिखना आ जाए आपको, तो बात ही खत्म हो जाती। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर करियर ऑप्शन, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, आजकल ऑनलाइन का जमाना भी है, तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर सकते हैं, ऑनलाइन मंचों का उपयोग करके आप इंटरनेट एक शक्तिशाली माध्यम है, आज अपना खुद का ब्लॉग शुरू कर सकते हैं, जिस माध्यम से आप प्लेटफॉर्म पर लिखे या सोशल मीडिया पर अपनी रचनाओं को साझा कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छे पाठक भी मिलेंगे और तुरंत रिस्पांस करने वाले पाठक मिलेंगे, जो आपके विकास के लिए बहुत ही अमूल्य काम करता है, है ना। तो ये आज के जमाने की आपको जो है क्या कैसे वरदानी कहेंगे, आप अगर लिखना शुरू कर देंगे और लोगों को अगर पसंद आए तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं, लिखते जाइए। आप जिस तरह का लोग पसंद करते हैं आपको, आपकी एक कम्युनिटी बन जाएगी, है ना। तो आगे अगर हम बात करें तो प्रकाशन है, पब्लिशिंग इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, ये उद्योग से भी आप जुड़ सकते हैं। अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट जिसको पनडुब्बियां हिंदी में कहते हैं, प्रकाशकों को जरूर भेजिए। आप हाथ से लिखित चीजों को ठीक से कंपाइल करके उसको जो है प्रकाशकों तक पहुंचाइए। साहित्य पत्रिकाओं में लेख भेजे, लेखक सम्मेलनों में और पुस्तक मेलों में हिस्सा ले। नेटवर्किंग आपको उद्योग के लोगों से जोड़ने में मदद करेगा, और
ऐसे लोगों से या सम्मेलनों में जुड़ने से आप लोगों से मिल पाएंगे जो आपके तरह लिखना चाहते हैं या लिख चुके हैं, तो इससे आपको जो है काफी मोटिवेशन मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो आप जरूर इस तरह के जो है काम जहां पर आपको मौका मिलता है सम्मेलन या पुस्तक मेले में जरूर जाइएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। चलिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत, उसके बाद फिर आपसे रूबरू होते हैं। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। जीवन कौशल की बातें कर रहे हैं, एक लेखक बनने की जो प्रक्रिया है उस पर बातें हो रही हैं। आशा करूंगा आप सभी को अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं आगे, जैसे कि विशेषज्ञता विकसित करें, क्योंकि एक राइटिंग स्किल तो आप अलग अलग विधि में बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, जैसे मैंने कविता, गीत, उपन्यास, कॉपीराइट कंटेंट या फिर रिसर्च पर आप लिख सकते हैं, लेकिन आप अपनी खुद की अलग जो है पहचान बनाने के लिए कोई एक विशेष आर्टिकल्स या फिर किसी विषय को चुनकर आप उसी पर लिखते जाइए, तो ये भी आपको एक्सपर्ट बना सकता है। शुरुआत में सामान्य लेखन से हटकर किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञ हासिल करें, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए कंटेंट राइटिंग शुरू कीजिए, या तकनीकी उत्पादों के लिए लिखना शुरू कर दीजिए, या फिल्मों के लिए कहानी पटकथा लेखन शुरू कीजिए। विशेषज्ञता आपकी मांग और मूल्य दोनों बढ़ाती है, तो इसीलिए एक्सपर्ट किसी न किसी में होना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं डॉक्टर्स भी बनते हैं तो किसी न किसी चीज को स्पेशलाइजेशन भी करते हैं। ऐसा नहीं कि वो जनरल फिजिशियन नहीं है, जनरल फिजिशियन करने के बाद ही वो किसी विशेषताओं में एक विशेष डिग्री भी प्राप्त करते हैं, जैसे कि आप देखेंगे डेंटिस्ट है, या फिर आप देखेंगे गैस्ट्रोलॉजिस्ट है, या सर्जरी स्पेशलिस्ट है, या एमएस है। तो ये सारी चीजें जो है उनको पूरी पढ़ाई करने के बाद किसी एक चीज में एक्सपर्ट बनते हैं। तो ऐसे ही आप लिखना शुरू करेंगे, कुछ सालों के बाद आपको अपनी एक्सपर्टाइजिस में आगे बढ़ना है। अपने पाठकों को या जो अपने पढ़ने वाले हैं उनके साथ हमेशा संबंध रखिए, और उनके संपादकों के साथ जरूर आप अपना कनेक्शन रखिए। सीनियर राइटर से मिलते जुलते रहिए, उन्हें कुछ सुनाइए, फिर उनका सकारात्मक रूप देखिए कि क्या बोलते हैं वो। आलोचन भी अगर आप करते हैं वो आपको नकारते हैं, तब भी उससे आपको सीखने को मिलता है कि भाई इस तरह से लिखने से इनको पसंद नहीं आया, तो इनको पसंद किस तरह के चीजें आती हैं उस तरह से आप लिखना शुरू कर सकते हैं। तो ये आपके लेखन में सुधार लाने के लिए बहुत अच्छा विकल्प है। इसीलिए लिखिए, सुनाइए, भेजिए और फीडबैक मांगिए, है ना। और एक प्रोफेशनल राइटर के रूप में अपनी एक ऑनलाइन उपस्थिति, प्रेजेंस हमेशा बना के रखिए। एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाए जहां आपके सभी प्रकाशित कार्य हो। लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर अपने कौशल को हमेशा प्रदर्शित करें, फेसबुक पर प्रदर्शित करें, या फिर आप अपने यूट्यूब में कुछ आर्टिकल को आप जैसे कि बोल सकते हैं, या कहानियां सुना सकते हैं, अपनी लिखी हुई खुद की कहानियां आप सुना सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म आज उपलब्ध है। पहले तो प्लेटफॉर्मों की कमी थी, आज प्लेटफॉर्म इतने हैं कि आप काम करते हुए बहुत आसानी महसूस करेंगे और तुरंत आपको जो है उसका रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। विविधता अपनाएं। कभी कभी आप किसी एक ही विषय को लेकर लिखते हैं तो उसमें भी अलग अलग हिस्से को लिखिए, जैसे कि सामान्य समय के साथ साथ लेखन के नए नए रूप जो है सामने लाइए। ऑडियो बुक, स्क्रिप्ट, ऑडियो गेम और फिर सोशल मीडिया कंटेंट आदि भी अवसर है। अपने आप को नया अवसरों के लिए तैयार भी रखें। शुरुआत में आय निश्चित नहीं हो सकती, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दिक्कतें हो सकती हैं। फ्रीलांसिंग के साथ साथ कोशिश करें कि कुछ नियमित ग्राहक, रिटेनर्स मिल जाए, रॉयल्टी से आपको आय मिल सकती है। इसके अवसर को समझें। जब आप किसी एक फ्रीलांसिंग शुरू करेंगे या फिर किसी फ्रीलांसिंग करते करते आपको कोई कंटेंट की सिफारिश आ जाती है तो आप लिखिए, उसका पैसा जरूर ले। और आप अगर अच्छा लिखते हैं तो आप किताब प्रिंट आउट करके पब्लिशिंग करते हैं तो उसकी रॉयल्टी आपको जिंदगी भर आती है। आप एक किताब से अगर साल भर में रॉयल्टी के रूप में आपको 10,000 मिलता है, तो अगर आप 50 किताब लिखते हैं, बहुत सारे लोग हैं 20-25-50 किताब उन्होंने पब्लिश की है, किताब सेल होती है तो उसकी भी पैसे मिलते हैं, और जब तक वो सेल होता रहता है तब तक आपको जो है वो रॉयल्टी मिलती रहती है लाइफ टाइम के लिए, है ना। आपने कुछ गीत लिखे और वो गीत पॉपुलर हो गया तो उसकी भी रॉयल्टी आपको मिलती रहती है, लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती रहती है। तो इनकम सोर्स आप किसी कंपनी से अगर, या आप मीडिया से जुड़े हैं, या किसी ऐसी जगह पे आप अगर पब्लिकेशन से जुड़े हैं तो उनके लिए लिखते हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छी खासी जो है आपको इनकम मिल जाती है। तो
यहाँ पर फाइनेंस की कोई बात है ही नहीं, लेकिन जब आप फेमस हो जाते हो तो पैसे आपके पीछे आता रहता है। तो चलिए दोस्तों, साथियों, प्यारे मित्रों और विद्यार्थी, प्यारे भाई बहन, आप सभी को आज का ये जो हमारा विषय है, कंटेंट लेखक के रूप में कैसे अपने करियर को बना सकते हैं, कंटेंट लिख के अपने करियर को कैसे बना सकते हैं, इसके लिए आपके लिए कुछ जरूरी बातें हमने सामने रखी है। विचार कीजिए, अगर आप अच्छा लिखते हैं तो जरूर लिखिएगा। और कभी कभी हम लोग सिर्फ पैसे के लिए नहीं, शौक के लिए लिखिए, खुशी के लिए लिखिए, तो भी अच्छा कंटेंट आपको खुशी देगा, तो पैसों से ज्यादा खुशी की कीमत है ना। तो निष्कर्ष यही, आखिरी में यही कहूंगा, लेखन का पेशा केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। इसमें सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि निरंतर मेहनत, सीखने की ललक और धैर्य से मिलती है। यदि आप में शब्दों के प्रति प्रेम और कुछ कहने की ललक है तो ये क्षेत्र आपके लिए अत्यंत सुखदायक है, संतोषजनक है और सम्मानजनक करियर प्रदान कर सकता है। बस जरूरत है एक शुरुआत करने की, एक पहल कदम उठाने की। आपका लेखन ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी और पहचान बनेगा। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप अपने करियर में बहुत अच्छा करें, ढेर सारी खुशियां, बहुत बहुत दुआएं, फिर मिलते हैं। सलाम, नमस्ते, हमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

चल चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: दीवाना,
3: एक दीवाना शहर में,
2: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
3: दो दीवाने शहर में।

कई साल पहले की ये बात है, भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ से, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पास पास, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है. आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस. माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल. एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद. हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना. इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज. दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस. एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आपको नहीं कहता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप उन्हें कहता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, मैं मोनाली सावागत, तुम्ही ऐकत आहात रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग, द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं, द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: मित्रांशिवाय आयुष्य पूर्णच हसणं भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर करायचं।
3: तेरे जैसा यार कहां ऐसा यार आला।
2: जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं।
4: लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा,
2: मनात पीठ वाजल्या की शरीर आपोआप थिरकत। त्याच सोबत
5: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध,
2: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा,
6: पहला नशा पहला खुमार।
2: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा आनंद लुटा।
7: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं, एकता की डोर में सबको बांधता पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट हो

0: करने लग गए। लेट से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की, कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है, कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट की जब हमने बात की थी तो हमें लगा था कि अच्छा सेल्फ को मैनेज करने की बात होगी, लेकिन इस पूरी श्रृंखला में जिस तरह से हम देख रहे हैं, सेल्फ कहीं बाहर की बात नहीं बल्कि अपने ही अंदर जो मैं हूं उसको पहचानने की बात थी। और अगर पिछली कड़ी को देखें तो हम सारे लेबल, सारे पर्दों को हटाकर, सारे बाहरी आवरणों को हटाकर खुद तक पहुंचे थे कि मेरी अपनी सही पहचान क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि फिर जहां मेरी अपनी पर पहचान हुई, कौन हूं मैं ये जाना, तो उसके बाद वैल्यूज कौन सी होंगी मेरे पास और फिर जीवन का पर्पस क्या होगा। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। जहां पिछली कड़ी अगर हम देखते हैं तो बहुत सी बातें करते करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते देखते, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आई थी, बहुत सी और चीजें देखी थी, तो फिर हमने पिछली कड़ी में ये जाना था कि मेरी अपनी सही पहचान क्या होती है, कौन हूं मैं। आई थिंक फाइनली वी हैव टॉक्ड अबाउट इट कि मैं वो चैतन्य शक्ति, वो एनर्जी, वो बीइंग हूं। अब आगे हम वैल्यूज इसी पर बेस करें,
1: क्योंकि जब हम देखते कि जब तक आइडेंटिटी का आंसर राइट नहीं आता, हु एम आई, तब तक हम एक अलग ही दिशा में चल रहे होते हैं। जैसे हमने वो सारे लेबल्स देखे तो लेबल्स के आधार से हमने वैल्यूज देखे कि इफ आई एम अ प्रोफेशनल तो मेरी वैल्यूज क्या है, इफ आई एम अ मदर तो मेरी वैल्यूज क्या है, इफ आई सी माई सेल्फ ओनली एज एन इंडियन तो मेरी वैल्यूज क्या है। सिमिलरली अपने पर्पस को भी देखे उसी के साथ, राइट। अब आपके इतने सारे लेबल्स हैं, लेट्स से आप एक लेबल ले, आई एम अ मदर, तो पर्पस ऑफ लाइफ क्या बन जाता?
0: टू टेक केयर ऑफ माई चिल्ड्रन इन द राइट वे, इन द राइट डायरेक्शन।
1: तो किसी भी आप हाउसवाइफ को पूछे कि आपके जीवन का पर्पस क्या है, मेरे बच्चों को बड़ा करना, उनके अंदर अच्छे संस्कार डालना, तुरंत विच इज फाइन, वेरी फाइन। आप एक डॉक्टर से मिलते हैं, पूछिए आपके जीवन का पर्पस क्या है, तो तुरंत क्या आंसर निकल कर आएगा?
0: मेरा अपना काम अच्छा करना, पेशेंट्स को ठीक करना, और
1: विच इज वेरी नोबल, नोबडी इज डिनाइंग दैट, लेकिन इज दिस माई पर्पज ऑफ लाइफ और इज दिस द रोल दैट आई एम प्लेइंग इन लाइफ? हीलिंग, इज दिस द पर्पज ऑफ माई लाइफ या इज दिस माई जॉब, माई प्रोफेशन, माई रोल? अब कई बार हम समझते कि ये है मेरा जॉब, लेकिन उसमें मैं इतना पैशनेट हूं, मैं उसको इतना दिल से कर रहा हूँ, एंड विच इज ट्रू के मैं ना पूरी सिंसियरिटी से कर रहा हूँ, तो यही मेरा पर्पज ऑफ लाइफ है।
0: मैं मिशन भी बना लेता हूँ कई बार,
1: मेरे जीवन का जो मिशन है,
0: मेरे जीवन का मिशन।
1: यस, तो हु एम आई आंसर के ऊपर ही हमारा पर्पज और वैल्यूज डिपेंड करता। तो आज जो एक छोटी सी हम गलती कर बैठे वो ये कि अपने रोल्स को, अपने रिश्तों को, अपने जिम्मेवारियों को ही अपना पर्पज ऑफ लाइफ बना लिया। जो जॉब में हम थे वही मेरा पर्पज ऑफ लाइफ बन गया। एक प्रोफेशनल को देख लो, व्हाट्स योर पर्पज ऑफ लाइफ, टू बिकम सो एंड सो इन द कॉर्पोरेट लैडर, रीच हियर एंड देयर, दैट कैन बी माय गोल। लेट्स मी नॉट मिक्स कि मेरा गोल क्या है और मेरा पर्पज ऑफ लाइफ क्या है, क्योंकि आपका प्रोफेशन भी टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, लेकिन पर्पज ऑफ लाइफ किसका है? मेरा पर्पज ऑफ लाइफ क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर हमने क्या किया, जो हम आई होप एवरीवन डिड इट विद अस यस्टरडे, कि अपने लेबल्स को जैसे जैसे हम साइड पर रखते गए तो वी केम टू द फाइनल आंसर कि मैं कौन हूं, ये सब कुछ मेरा है, यहां तक कि ये शरीर भी ये मेरा है, मैं हूं वो शक्ति, एनर्जी, कॉन्शियसनेस जो इसको चलाती है, जो ये सारे रोल्स
0: प्ले करती है,
1: जो ये सारे रिश्ते निभाती है, लेकिन मैं आई कौन है, वो आई का आंसर आ गया। तो जो हमने तीन क्वेश्चंस देखे थे कि जो अपने जीवन में बहुत फोकस्ड होकर चलेंगे, उनके तीन क्वेश्चंस के आंसर होते हैं, हु एम आई, वेयर एम आई एंड व्हाई एम आई हियर, दीज थ्री आंसर्स वी वांट। तो हु एम आई आया कि आई एम दिस प्योर बीइंग एनर्जी। जैसे हम ये कॉन्शियसनेस में बैठते कि मैं ये वो चैतन्य शक्ति हूं, अगर रोज इसको थोड़ा बार बार करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, तो यू विल रियलाइज कि जो व्हाई एम आई हियर, यू नो, एंड वेयर एम आई, तो जो जब हु एम आई आता तो उसका नेचुरल इम्पल्स ये आता कि थॉट क्रिएट करना, कर्म में आना और लोगों के साथ एनर्जी एक्सचेंज करना, दिस इज वेयर आई एम इन द फील्ड ऑफ रिलेशनशिप्स। मेरा इस सृष्टि पर शरीर लेकर आखिर ये पर्पस क्या है, मैं क्यों हूँ, टू कम इनटू रिलेशनशिप और टू कम इनटू एक्शन विद अदर सोल्स. आत्मा का नेचुरल इंपल्स है एनर्जी लेना,
2: टू इंटरैक्ट. यस,
1: टू इंटरैक्ट, ये नेचुरल इंपल्स है. लेकिन वो मुझे तभी समझ में आता जब मुझे याद आता कि हु एम आई एंड वेयर एम आई. आई एम इन दिस फील्ड ऑफ रिलेशनशिप्स एंड व्हाई एम आई हियर. कि ये जो मेरा नेचुरल सेल्फ पता चला तो मेरी जो क्वालिटीज है, मेरी जो वैल्यूज है, उनको औरों के साथ शेयर करना, ये मेरा नेचुरल संस्कार बन जाता है. इफ आई रिमेम्बर दैट आई एम अ कॉन्शियंट बीइंग, देन टू गिव लव टू पीपल विल बिकम माय नेचुरल. दैट्स व्हाई आई एम हियर. लेकिन जब वो आंसर नहीं हो रहा होता,
2: पर्पस ऑफ माय लाइफ बिकम्स लाइक टू गिव लव टू पीपल,
1: व्हाट डू यू थिंक?
2: यस, दैट मेक्स सेंस.
1: What do you think? Now think about it. Because a purpose of life किसका ढूंढना है?
2: The being.
1: Who am I? I am a human being. I am not a human doing. अभी तक purpose of life किसका ढूंढ रहे थे? जो doing था. मुझे क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है. क्योंकि who am I? Mother. तो purpose of life उससे connected. Who am I? Doctor. Purpose of life उससे connected. Who am I? A pure being. Purpose of life?
2: उससे कनेक्टेड.
1: इसीलिए जब तक वो हु एम आई आंसर नहीं हो रहा था तो पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढना वॉज इम्पॉसिबल. सो नाउ व्हेन आई सिट बैक, सो इट डजंट मीन दैट आई एम नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस मेडिसिन, या इट डजंट मीन कि मैं अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखने वाली.
2: कितना इजी हो जाता है पता है पर्पस ऑफ लाइफ को समझ पाना फिर. और हम सारा टाइम ढूंढते रहते हैं, उसी में इन्वॉल्व रहते हैं और हर चीज में उसी को ढूंढ रहे होते हैं कि ये मेरा पर्पस है, ये मेरा पर्पस है. इन द वे यू सेड, वेरी ट्रू. कितनी बार हम अपने प्रोफेशन बदल रहे होते हैं, कितनी बार
1: हमारे पर्पस ऑफ
2: लाइफ बार बार बदलता जाएगा हमारा.
1: यस, नहीं, और कई बार लगता है ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है, मैं अपना जॉब बदल कर देखता हूँ, आई विल फाइंड इट देयर. इट वॉन्ट कम टिल आई रिमेम्बर पर्पस ऑफ लाइफ किसका. आपको याद हो जब हम बचपन में खेलते हैं आपस में तो हम अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, यू नो, मैं ये बनूंगा, आप ये बनोगे, एंड ऑल दैट. वी ड्रेस अप इन डिफरेंट वेज और हमें वो खेल खेलना अच्छा लगता है. लेकिन खेल खेलते खेलते हमें ये तो याद रहता है ना
2: कि
1: हम कौन हैं और ये हमारा खेल है. और हमें ये भी पता होता है कि थोड़ी देर के बाद ये सारे जो हमने ओढ़े हैं अपने ऊपर, ये सारे उतर जाएंगे. यही खेल हम अपने जीवन की यात्रा में खेलते हैं. जैसे जैसे जैसे वी आर ग्रोइंग, हम एक एक लेबल अपने ऊपर ओढ़ते जा रहे हैं, विच इज पार्ट ऑफ द जर्नी. लेकिन सिर्फ ये था कि बचपन में ये याद था कि मैं कौन हूं और ये मैंने सारा कुछ ओढ़ा है. लेकिन अब क्या हो गया, जो मैं ओढ़ा है वो ही मैं हो गया और उसको ही हमने मैं ये हूं. तो सारा कुछ जो मेरे जीवन में कनेक्टेड था अब वो उससे हो गया. एंड देन जो हमने पहले डिस्कस किया, जो हम कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि फॉर माय फैमिली आई हैव टू डू दिस जॉब. व्हाई? बिकॉज माय वैल्यूज एंड माय पर्पस ऑफ लाइफ वाज फर्स्ट टेकिंग केयर ऑफ फैमिली. लेकिन जहां मुझे समझ में आया कि मैं कौन हूं, तो फिर मुझे अपना पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढना बहुत इजी हो जाएगा. तो जब हमें परमात्मा ने आकर ये स्मृति दिलाई, ये सब कुछ आपका है, आप एक चैतन्य शक्ति, और वो भी कैसे, प्योर लवफुल. क्योंकि परमात्मा ने आकर हमें अपनी ही पर्सनालिटी, जो कि हमें पता थी लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल गए थे, उसकी स्मृति में नहीं थे, तो परमात्मा ने, शिव बाबा ने आकर हमें याद दिलाया, प्योर बींग, लवफुल बींग, हैप्पी बींग, ब्लिसफुल बींग, पावरफुल, शक्ति स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप. जब आप एक मदर हैं तो पर्पस ऑफ लाइफ था बच्चों को बड़ा करना. जब आप एक पीसफुल बीइंग हैं तो पर्पस ऑफ लाइफ
2: टू क्रिएट पीस. ओह यस,
1: सिंपल. जब आप एक हैप्पी ब्लिसफुल बीइंग हैं, पर्पस ऑफ लाइफ
2: टू क्रिएट दैट हैप्पीनेस.
1: आंसर चेंजेस. नाउ आई एम अ पीसफुल बीइंग playing the role of a mother. The sentence change ho gaya.
2: It becomes so easy to create happiness then, you know, playing mother also.
1: Yeah.
2: Pehle kyunki wo responsibility
1: change ho jayega aapka.
2: Kyunki pehle responsibility bachcho ko

0: बिलीव नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं जो हूँ उसको मैं भूला हुआ हूँ ना, मैं खुद अपने को ही भूला हुआ हूँ, और मैंने वो जो ओढ़ लिया अपने अराउंड बॉडी, फिर रिलेशनशिप, प्रोफेशन और लेबल्स, तो वो सबको ओढ़कर उसी को बचाने में और उसी को प्रोटेक्ट करने में मैंने जो अपने आप को कहा कि इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस और इतने सारे एडजस्टमेंट्स हम करते गए, और अंदर ही अंदर मैं जो था वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट होता गया. एंड दैट्स व्हाई द बिगेस्ट प्रॉब्लम एवरीबडी हैज टुडे इज डिससैटिस्फैक्शन. दे लुकिंग फॉर सैटिस्फैक्शन. व्हाई आर वी लुकिंग फॉर सैटिस्फैक्शन?
1: इफ आई एम डूइंग द रोल, सी इफ आई एम डूइंग द कैरेक्टर,
0: Why am I not satisfied? अपना तो हर एक चीज कर रहे हैं ना, अच्छी तरह से निभा रहे हैं, संतुष्टता क्यों नहीं है? क्योंकि एक्चुअली मैं जो हूं आई एम नॉट बींग एबल टू एक्सपीरियंस दैट, आई एम नॉट बींग एबल टू एक्सप्रेस दैट. तो अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा? यू नो, जैसे लेट्स लुक एट इट लाइक अ लिटिल गेम, कि अंदर कोई है जो बंद है, ठीक है, ऊपर से किसी ने सारा उसको ढक लिया, तो जो अंदर वाला है वो तो अंदर बिल्कुल अपने आप को कैसा फील कर रहा है? Suffocated. कि मैं जो हूं मैं अपने आप को
1: एक्सप्रेस
0: नहीं कर पा रहा, मैं सारा दिन इन्हीं का ध्यान रख रहा हूँ. तो फिर मेरे अंदर वो घुटन होती है कि मैं असंतुष्ट हूँ, मैं डिससैटिस्फाइड हूँ. सब कुछ कर लिया जीवन में, प्राप्त भी कर लिया वो सारे गोल्स ऑब्जेक्टिव्स, बड़ी बड़ी कंपनी की सीईओ बन गए, बच्चे भी वेल सेटल्ड हो गए, प्रॉपर्टी भी सारी है, क्या चीज नहीं है आपके पास? सैटिस्फैक्शन. कॉमन आंसर है आज, सैटिस्फैक्शन
1: नहीं
0: है. वैक्यूम है. क्यों? ये सब डूइंग पार्ट सारा कर लिया. क्यों वैक्यूम है? क्योंकि पूरी जीवन कैसे बिता रहे हैं, हु एम आई, ये लेबल, तो पर्पज ऑफ लाइफ क्या समझा, ये करना, वैल्यूज क्या समझी, इसका ध्यान रखना, इसको सेफ रखना. मैं निग्लेक्ट हो गया पूरी तरह से. तो मेरे अपने ही जीवन के यात्रा में अपनी वैल्यूज और अपना पर्पस नहीं एक्सपीरियंस किया, तो संतुष्टता संतुष्टता कहां से आएगी?
1: नहीं आ सकती.
0: आई विल फील वेरी सफोकेटेड.
1: एंड वी आर ऑल फीलिंग दैट. यस,
0: अब हम गुस्सा कर रहे हैं, जस्टिफिकेशंस भी दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो बात हमें तकलीफ तो देती है, बिकॉज हु एम आई इज अ पीसफुल बीइंग. तो जैसे ही
1: और हमने अपने साथ ही कितना अन्याय किया है,
0: क्योंकि हम अपने आप को जानते नहीं थे ना, इसलिए. तो न जानने के कारण हम बाहर ही ढूंढते रह गए सारा कुछ, और हमने सोचा कि पता नहीं क्या होगा मेरा.
1: हम अदरवाइज वैसे कितने अच्छे हैं, मतलब अब देखें
0: सारे तो, बहुत अच्छे हैं.
1: इसलिए कि हमारे पास जो जो जिम्मेदारी थी, जो जो हमने अपना पर्पस माना, जो जो हमने देखा कि हम ये चीजें हैं, लेबल्स को समझा, तो वो तो हमने अच्छी तरह से निभाया है,
0: लेकिन निभाते हुए अपना ध्यान नहीं रखा. कल से भी हमने वही निभाना है. ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि मेरा रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो सारी चेंज हो जाएंगे, बट सिर्फ पर्पस ऑफ लाइफ होगा टू क्रिएट हैप्पीनेस, टू क्रिएट लव. क्रिएट नॉट टेक. अगेन
1: क्रिएट.
0: अभी क्या था, क्योंकि मैंने अपने को नहीं पहचाना, तो मैं अपनी वो वैल्यूज और पर्पस कहाँ ढूंढ रहा था? चाहिए तो था मुझे, क्योंकि दैट्स हु एम आई, लेकिन मैं उसको फिर कहाँ ढूंढ रहा था?
1: मेरा बच्चा अच्छा होमवर्क कर ले तो मेरे को खुशी होगी, उसके अच्छे मार्क्स आ जाए तो होगी.
0: तो क्योंकि मैंने अपने पर्पस ऑफ लाइफ डूइंग में डाल दिया कि कुछ करने से मैं अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करूंगा, तो मैंने सोचा वो लक्ष्य प्राप्त करने से मुझे खुशी मिलेगी. क्योंकि फाइनली एट द एंड ऑफ द डे क्या चाहिए?
1: खुशी,
0: संतुष्टता, शांति. कहाँ ढूंढ रहे हैं कि ये पूरा होगा लक्ष्य तो मुझे मिलेगा, ये लक्ष्य को मैं प्राप्त कर लूंगा तो मिलेगा. क्योंकि वन थिंग इज वेरी क्लियर कि जब हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तभी संतुष्टता होती है, नहीं तो देयर विल ऑलवेज बी अ कॉन्फ्लिक्ट. लेकिन हमने लक्ष्य क्योंकि बाहर बना दिए, तो फिर हम खुशी को भी कहाँ ढूंढने लगे?
1: बाहर. इनफैक्ट वही, क्योंकि पहचान ही नहीं थी. पहचान ही जिसको माना, उसी से जुड़ा हुआ तो लक्ष्य बनाया. और हम अमेजिंग, यस वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट, हम ये बार बार कहते हैं कि मैंने अचीव तो कर लिया, लेकिन फिर एक अचीवमेंट के बाद इसीलिए हम दूसरे अचीवमेंट की तरफ भागते,
0: बिकॉज खुशी तो मिली नहीं थी.
1: तब हम ये कहते हैं कि हम तो भागते ही रहेंगे फिर इस चक्कर में.
0: तो अब क्या हुआ, एक कॉन्शियसनेस शिफ्ट से कि मैं ये सब नहीं, मैं आत्मा हूं, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ सिंपल हो गया, एंड माय पर्पस इन लाइफ इज टू एक्सपीरियंस माय क्वालिटीज एंड टू एक्सप्रेस देम. शांति, प्यार, पवित्रता, इसका अनुभव करना. और अनुभव कब होगा? जब हम उनको अपने इंटरेक्शंस में एक्सपीरियंस कर रहे थे.

0: अब हम ना अनुभव करते हैं ना उनको हम एक्सप्रेस करते हैं, हम एक्चुअली उनकी डिमांड करते हैं, मुझे शांति दो, मुझे प्यार दो, मुझे रिस्पेक्ट दो. मिल नहीं रहा, अगेन क्वेश्चन, मैं यहाँ क्या कर रहा हूं. सो नाउ द ट्रांजैक्शन साइड हैज टू चेंज, ऐसा नहीं ऐसा. एंड नाउ लेट्स पुट ट्राई एंड पुट दिस एज द पर्पज ऑफ माई लाइफ. पर्पज ऑफ माई लाइफ टू बी हैप्पी एंड देन प्ले माई रोल्स. Purpose of my life, be peaceful, then play my roles.
1: Because it's my core value. It's my core value, you know.
0: अब अपनी values की list निकालिए. जब हमने पहले label के आधार से values की list निकाली तो निकली power, position, family, ये सब values की list. I care for them. लेकिन जब मुझे ये समझ में आता कि मैं तो चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, तो आत्मा की values की list क्या निकलेगी?
1: Peace,
0: happiness, love. अब आने दो सिचुएशन आपके सामने, अब प्रायोरिटाइज करना.
1: आई कैन एक्चुअली जस्ट विजुलाइज यू नो कि अब अगर बच्चे को पढ़ाना है या बच्चे ने खाना खाया है नहीं खाया, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ अब अगर हैप्पीनेस क्रिएट करना है, लव क्रिएट करना है, वो क्रिएट करके अगर मैं खिलाती हूँ,
0: वो क्रिएट करते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्ले करना है, तो सारा जीवन जीने का तरीका चेंज हो जाएगा.
1: And in fact, it will become much easier to do all these things, you know.
0: And most important is ke sab kuch karte hue bhi andar se kaisa feel karenge.
1: Bahut acha. In fact, hamari energy utni waste nahi hogi. Because hame bahut zyada efforts nahi karna pad raha hoga.
0: And for jo cheeze hum anubhav karna chahte hain, hum unko bahar nahi dhoondenge. And we will be very clear ki mere jeevan ka purpose hai, apne ko pehchan liya, ab usko har sambandh mein, har role mein, हर प्रोफेशन में. आई एम अ डॉक्टर, हीलिंग इज माई प्रोफेशन, लेकिन पर्पज ऑफ लाइफ
1: लव, हैप्पीनेस.
0: लव और हैप्पीनेस के साथ वो करना. हॉस्पिटल गए, बहुत सारे मरीजों को ठीक तो कर दिया, लेकिन इन द प्रोसेस कई बार गुस्सा क्रिएट किया, कई बार दर्द क्रिएट किया, किसी और को डांट दिया, ये किया, तो आई विल नॉट फील कंटेंटेड even after healing so many people.
1: उस वक्त जब वो सर्जरी करके that momentarily जो happiness है वो definitely
0: देखे. तो achievement है. Achievement है, which is very good. मैंने एक task लिया, एक जिम्मेवारी उठाई, वो achieve कर लिया, very nice. लेकिन करते हुए experience क्या किया, express क्या किया, इस पर अब ध्यान रखना शुरू करना है कि energy कौन सी है, क्योंकि my purpose of life is the being. उसका पर्पज ऑफ लाइफ नॉट द डूइंग. बस वो छोटी सी एक जो कहे ना कंफ्यूजन जो हो गई, उससे हर स्टेप पर गलती होती गई. हर स्टेप पर. इसीलिए परमात्मा ने आकर कहा सिर्फ एक छोटी सी भूल कि मैं आत्मा हूं, ये भूल गया, और मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, और शरीर से जुड़े हुए जो सारे लेबल्स थे, इस एक विस्मृति से, इस एक भूल से एवरीथिंग वेंट all over wrong. Today, all our anger, stress, pain, everything is only because of this one illusion. And that's why one correction, बहुत मेहनत नहीं है गुस्से को खत्म करना, इसको no, one correction.
1: Actually, वो वही बात है ना कि जैसे हमें ये कहें कि हमें ये चीजें हटानी है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है. लेकिन अगर ये ही thought create होना है कि ये मेरे जीवन का purpose है, you know, to create happiness.
0: Simple है, मेरे जीवन का purpose क्या? खुश रहना. खुशी चाहिए नहीं. अभी तक क्या था जीवन में, क्या चाहिए? खुशी चाहिए, खुश रहना. और फिर खुश रहकर क्या करना? Automatically औरों को वो तो मुझसे transmit होती जाएगी. Tomorrow let's go back to our office.
1: खुश खुश.
0: Yeah. Oh, with this purpose, very clearly written here. Purpose of life, to be happy, to be peaceful and do the work. Answer yourself in the evening. आज का दिन कैसा बीता? और कंटेंटमेंट कहाँ ढूंढ रहे हैं बाहर?
1: और पर्पस लेकर अगर जाएंगे तो हम कर भी लेंगे.
0: कर भी लेंगे, क्योंकि जो भी पर्पस हम उठाते हैं उसको हम कर लेते हैं. सिर्फ वो फिल इन द ब्लैंक पर ही अगर गलत आंसर लिख दिया था तो फिर उसी के ऊपर सारा फोकस था. तो पर्पस ऑफ लाइफ टुमारो मॉर्निंग, राइट फ्रॉम सुबह जब अपने बच्चों को उठाना है,
1: हैप्पीनेस से उठाना है. Yes, that's challenging.
0: No, that's not challenging. That's the purpose of your life. Purpose of life situation dependent तो नहीं होता. लोग अपना purpose achieve करने के लिए बड़े से बड़े challenges को cross करते हैं. इसलिए purpose of life बहुत important. ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ. तो मेरा लक्ष्य क्या हो सकता है? मेरे से ही तो जुड़ा हुआ हो सकता है.
1: मेरी values को express

0: तो कल से बस ये वो ही काम करना है सारा जो पहले कर रहे थे. नथिंग एल्स इज चेंजिंग आउटसाइड, फोकस इज चेंजिंग इनसाइड.
1: मुझे लगता है सिस्टर शिवानी इसमें काम सिर्फ ये करना होगा, ध्यान याद रखना है.
0: ध्यान रखना
1: सिर्फ याद रखना है, बाकी सारी चीजें तो अपने आप ही होनी है.
0: इसीलिए तो परमात्मा बार बार कहते हैं एक छोटी सी बात, सोल कॉन्शियसनेस.
1: अच्छा हमने क्या किया, ऑटोमेटेड हमने ये चीज कर ली और उन पे काम करते गए, वो जो सारे काम है वो ऑटोमेटेड हो जाएंगे.
0: वो ऑटोमेटेड हो जाएगा, यहाँ ऑटोमेटिक नहीं होगा. अपना क्रिएट हमें करना है, काम तो अपने आप हो जाएगा. क्योंकि जब राइट अभी भी काम तो वैसे भी हो रहा है, संतकारा काम तो हमें करना ही आता है, सिर्फ क्या करना नहीं आ रहा था, क्रिएट कैसे करना है. और क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था कि शांति कैसे क्रिएट करनी, खुशी कैसे क्रिएट करनी, मैं औरों से मांगने लगी आई विल अचीव दिस, तब मुझे ये होगा. और वो अचीव, लाइक मेनी पीपल आई हैव मेट, दे विल से मेरे जीवन का पर्पस है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे इस रोल तक, यू नो, इस टाइटल तक पहुंचना है. और टेंशन हुई हुई है उस बात की कि मैं पहुंचूंगा नहीं, करूंगा नहीं, पहुंच पाया या नहीं, रास्ते में कौन से ऑब्स्टिकल आएंगे. तो पर्पस ऑफ लाइफ चैलेंजिंग हो, तो मैं कौन ध्यान में रखकर अब जीवन की यात्रा पर कल चले, तो देखते हैं कल का दिन कैसा बीतता है.
1: बिल्कुल. लेकिन सिस्टर शिवानी एक बात यहाँ ये जानना चाहेंगे कि मुझे अपने आप को पहचानते हुए मैंने अपने वैल्यूज और पर्पस ऑफ लाइफ को तो समझा, लेकिन मैं जो अभी तक जिंदगी जी रहा था या जी रही थी उसमें बहुत सारे चीजों को मैंने पर्पस बनाया हुआ था और वो एक ऐसा ट्रेंड पे जी रहा था. तो ये पर्पस ऑफ लाइफ मेरे साथ हमेशा हर पल याद रहे मुझे, इसके लिए यू नो हाउ शुड आई प्रिपेयर?
0: इसके लिए मुझे सुबह अपने आप के साथ बैठकर, जो हम कहते हैं मेडिटेशन, तो हम मेडिटेशन में अपने आप के साथ बैठकर अपने आप को फिर याद दिलाते. शुड वी डू इट नाउ फॉर अ फ्यू मिनट्स?
1: दैट विल बी नीडेड. की
0: लेट द बॉडी सिट वेरी रिलैक्स्ड कंफर्टेबल, और शरीर को हल्का रखते हुए अपने आप को महसूस करने की, देखने की कोशिश करें. ये शरीर तो जड़ है, मैटर है. ये हाथ तो वही करता जो मैं इससे कराता हूं. ये आंखें वही देखती जो मैं इसके द्वारा देखना चाहता हूं. मैं कौन हूं जो चूज करता है इस शरीर के द्वारा क्या करना है? शरीर को चलाने वाली शक्ति, एनर्जी, कॉन्शियसनेस, मैं आत्मा हूं. आई एम एन इटर्नल एनर्जी, पॉइंट ऑफ लाइट, द सोल. अपने आप को धीरे धीरे देखने का प्रयास करें. शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, अति सूक्ष्म छोटा सा टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, जस्ट लाइक अ लिटिल स्टार in the center of the forehead. This is me. ये मैं हूं जो ये शरीर धारण कर अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाता. मैं शक्तिशाली आत्मा हूं. I am a powerful being. हर परिस्थिति का मैं मास्टर हूं. शांति, खुशी मेरी अपनी प्रॉपर्टी, मेरी अपनी नेचर है. दिस इज हु आई एम. आई एम अ पीसफुल सोल. आई एम अ ब्लिसफुल सोल. मेरे जीवन का लक्ष्य अपनी वैल्यूज को, अपने गुणों को अनुभव करना और अपने संबंधों में लेकर आना. टू एक्सपीरियंस पीस and to express it in every interaction, to feel love and to express it in every interaction, because this is who I am. Tomorrow, as I go on in the journey of my life, mujhe sirf yahi yaad rakhna hai ki main anand swarup atma hu. I am a blissful being and I will express it with everyone I meet. Because this is the purpose of my life. Om Shanti.
1: Om Shanti. Life becomes actually so beautiful, you know. थैंक यू सो मच कि आज हम जो अभी तक इतने पर्पस ढूंढ रहे थे सचमुच में एक क्लैरिटी के साथ ना सिर्फ अपनी वैल्यूज अपनी पहचान बल्कि पर्पस ऑफ लाइफ समझ में आता है। शांति। आज तक जो भी हमने बीड़ा उठाया जो भी हमें कर्तव्य निभाने को कहा गया हमने बहुत अच्छी तरह से निभाया। हमें पर्पस मिला लाइफ का जो भी रोल था उसमें जो भी पर्पस था उसे बहुत अच्छी तरह से निभाया। हम कर्मठ लोग हैं अच्छा काम करते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। लेकिन जब अपनी पहचान हुई तब समझ में आया कि सबसे बड़ा अन्याय तो अपने ही साथ हो रहा था क्योंकि जो मेरी अपनी पहचान है जो मैं हूँ उसकी कोर वैल्यूज को ना समझते हुए मैं अपना ही पर्पस नहीं जान पा रहा था। सो आज जब ये पता चला है एक ऐसा पर्पस जो मेरा रियल पर्पस है लाइफ का वो जब समझ में आ रहा है तो उसे भी मैं उसी खूबी से निभाऊंगा ये मैं समझ सकता हूँ। सो कौन हूँ मैं मेरी वैल्यूज क्या है मेरा पर्पस क्या है ये अब समझ में आया। निभाऊंगा कैसे वो भी उसी शिद्दत से और उसी कर्मठता से। कोई ऐसी बात कोई ऐसा सवाल आपके मन में उठता है आपका हम स्वागत करते हैं। आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0999-344-555 0999-344-666 0987-366-555 0999-744-555 हमारा ईमेल आईडी है ओम शांति स्टूडियो @pkmail.org।

पुनेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: लेके अंगड़ाई सरे बज़्म बहुत पछताई, मुफ्त में हो गई बदनाम बढ़ी रुसवाई, आया गुस्सा कभी अपने पे कभी शर्म आई, उठी घबरा के मगर ऐसी कमर बल खाई।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। लाइफ स्किल्स यानी जिंदगी जीने की कला कैसी हो, कैसे हम वो टेक्निक सीखें, ये इस पूरी श्रृंखला में हम सीख रहे हैं। अगर पिछली कड़ी को देखें, अभी तक बहुत से रिश्तों पर काम कर रहे थे। इनफैक्ट रिश्तों पर काम करते करते अपने साथ, मन के साथ एक रिश्ता हमने कायम किया था। अब हमने जाना है कि शरीर के साथ रिश्ता कैसे कायम करना है। बॉडी के वो डिफरेंट ऑर्गन्स, वो डिफरेंट पार्ट्स जो डिजीज्ड हैं या नहीं भी डिजीज्ड हैं, लेकिन उनको लेकर अगर प्रॉब्लम है या वैसे भी, उनके साथ भी क्या रिश्ता कायम किया जा सकता है, ये एक नई बात है। लेकिन हमने हर बार एक्सपेरिमेंट किए हैं, अनुभव हमें बताता है कि हमारा प्रयास जो है वो सही दिशा में है। आज फिर आगे बात करते हैं विजुलाइज कैसे करना है। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। आपने कहा था कि कई तरह से, तीन तरह से जो बीमारी आ गई है, या अगर बीमारी नहीं भी है तो बॉडी के साथ, ये बॉडी ऑर्गन्स के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, वो एक बार हमें फिर बता दें।
1: सबसे पहली बात तो है विचारों पर, कि विचारों को हम सही बना करके बॉडी पर पॉजिटिव इफेक्ट कर सकते हैं, बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है अपने इमोशंस के साथ डील करके, कि भी इमोशंस को हम सही करें, और विशेष जो गुण की आवश्यकता है हर एक ऑर्गन को, वो गुण का हम गहराई से अनुभव करें तो वो ऑर्गन्स हेल्दी हो जाएंगे। ये जैसे कि विटामिन्स की तरह है, कि भी हम टॉनिक लेते हैं तो ऑर्गन्स का भी अपना टॉनिक है जिससे वो ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं। और तीसरा है विजुअलाइजेशन, क्योंकि बुद्धि व चित्रों की भाषा समझती है, तो सही रूप से जो बीमारी हुई है उसकी पैथोलॉजी को समझ ले कि उसमें क्या नेगेटिविटी आई है, और फिर उस पैथोलॉजी को रिमूव करने के लिए पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करे। कैंसर के बारे में भी हमने सोचा, विजुअलाइजेशन प्रतिदिन करे तो भी बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।
0: वो परिणाम हमें कितनी देर में, क्योंकि हम हर बार परिणाम को अनुभव करना चाहते हैं, तो वो कब हमें अनुभव होना शुरू हो सकता है?
1: करीब 10 दिन में तो अनुभव होने ही लगेंगे। लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं कि जो रेगुलर नहीं कर रहे हैं, है ना, इतने फेथ से नहीं कर रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी कमजोर है, तो अप्रोक्सीमेटली 8 वीक्स तो जरूर करना चाहिए। है 8 वीक्स का गिव अप नहीं करो। अगर 8 वीक्स तक आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे, फिर भले आपको ये निर्णय पर आओ कि इसकी इफेक्ट हो नहीं रही है, लेकिन नियमितता से, पूरे विश्वास से अगर इसका अभ्यास करें तो 8 वीक्स में डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे।
0: आप अगर इस तरह से गुणों पर कंसंट्रेट करने की बात है, तो उसमें कुछ हमें मेडिटेशन के पैटर्न में परिवर्तन करना होगा?
2: नहीं, परिवर्तन नहीं करना। मेडिटेशन मीन्स व्हाट, कि आत्मा के ये 7 क्वालिटीज हैं, ये ऑलरेडी हैं, इट्स नॉट नीडेड फ्रॉम एनीवेयर एल्स, ये है, हम भूल गए हैं, हमें उसको री इमर्ज करना है। और जो मुझ आत्मा की 7 क्वालिटीज है, वो 7 क्वालिटीज का परमात्मा सागर है। आई एम अ पीसफुल सोल, शिव बाबा इज द ओशन ऑफ पीस। तो इफ आई एस्टैब्लिश माई कॉन्टैक्ट विद द ओशन ऑफ पीस, तो मुझे अपनी पीस को एक्सपीरियंस करना वो ईजियर हो जाता है। अब उसको जो इसके साथ हमें जोड़ना है बॉडी के विजुअलाइजेशन के साथ, तो हम जो मेडिटेशन हमेशा करते आए हैं सेम करें, उसमें एक थर्ड एस्पेक्ट ऐड कर दें कि परमात्मा से शांति की किरणें मुझ आत्मा पर, और फिर मुझ आत्मा से लंग्स पर, या परमात्मा से वो प्यार की किरणें मुझ आत्मा पर, वहां से मेरे हार्ट पर। सो आई जस्ट ऐड वन मोर स्टेप। लेकिन इसमें हम ये करते हैं कि पहले जो अपनी मेडिटेशन कर रहे हैं उसको करें, क्योंकि मेडिटेशन मींस अपने आप को बॉडी से डिटैच करके सोल कॉन्शियस करना। अब कई बार नहीं तो हम उस बॉडी के पेन, फिर पेन के कारण उसकी प्रॉब्लम्स, फिर थॉट्स कई बार उस तरफ चले जाते हैं। तो हम थोड़ा सा ध्यान ये रखते हैं, सपोज माई टाइम इज 15 मिनट्स, मैं कर पाती हूँ तो 15 मिनट्स आई डू माई मेडिटेशन, देन एज अ फॉलो अप टू दैट आई कंटिन्यू विद दिस, नॉट
0: कि शुरू में व्हेन आई कम बैक, यस व्हेन आई कम बैक फिल्ड, यस
2: देन आई डू दिस। तो सपोज अगर मैं रोज 15 मिनट बैठ रही हूँ, लेट्स से, तो वो ही 15 मिनट करो और वो गुण पर चिंतन करो, परमात्मा से वो शक्ति अपने अंदर भरो, उसके फॉलो अप आई विल डू दिस फॉर अनदर 5 मिनट्स, 10, जैसे भी कंफर्टेबल है। और फिर वो सिर्फ मॉर्निंग में या इवनिंग में नहीं, इवन वो जो हम 1 मिनट आफ्टर एवरी 1 आवर करते हैं, उस हर 1 मिनट पे भी हम ये कर सकते हैं। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, वो लेजर बीम की तरह परमात्मा से मुझ पर और मुझसे इस हाथ पर पड़ रहा है. इमेजिन इफ यू कीप डूइंग इट सो मेनी टाइम्स इन द डे, यस इट विल वर्क डेफिनेटली. 8 weeks तो अच्छा लंबा टाइम है. इट विल डेफिनेटली
0: आई थिंक आई कैन एक्चुअली फील कि वो जल्दी ही रिजल्ट्स आने शुरू.
1: बहुत ही अच्छी बात शिवानी बेन ने क्लियर की है. कई लोग ये समझते हैं कि बस शुरू में हम बैठ जाए, बस शांति मिल रही है, मेडिटेशन नहीं करना है, वो नहीं काम करेगा. क्योंकि ये जो सारी टेक्निक है, जब आप डीपर लेवल पर जाते हैं, है ना, आत्मा की भी गहराई में जाते हैं, तब उसकी इफेक्ट होती है. और पहले मेडिटेशन करो 10 मिनट 15 मिनट, तब आप गहराई में जाएंगे. फिर विजुअलाइजेशन तो 2 मिनट भी काफी हो, लंबा न भी हो, सिर्फ उसमें क्लैरिटी, जितनी क्लैरिटी होगी, जितनी अच्छी इंटेंसिटी होगी, 2 मिनट में पावरफुल रिजल्ट्स मिल जाएंगे.
0: अच्छा, अगर हर रोज हम 2 मिनट ही कर पाए,
1: पहले 15 मिनट तो मेडिटेशन, हाँ, फिर 2 मिनट विजुअलाइजेशन.
2: बेसिकली 15 मिनट में अपने वो एनर्जी तो क्रिएट कर ली ना. जैसे गिरीश भाई ने कहा, वो विटामिन है जो आपने अपने ऑर्गन को देना है, लेकिन पहले वो विटामिन अपने अंदर प्राप्त तो कर ले. आप मार्केट से जाकर पहले वो विटामिन लेकर आते हैं, दैट कुड टेक 15 मिनट्स. गोली खाने में कितना टाइम लग रहा, आधा मिनट भी नहीं. तो पहले वो विटामिन लेकर आए, अपने अंदर भरे.
0: डॉक्टर पटेल, ये तो बात रही, हमने हार्ट की बात की थी कि किस तरह से अब लोगों के हमारे पास ढेरों मेल्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अलग अलग बीमारियों को विजुअलाइज कैसे करें, क्या करें. क्योंकि जैसे ही बीमारी की बात आती है, ऑर्गन्स की बात आती है, मेरे सामने वो यू नो नर्व्स का एक या ब्लड सामने आ जाता है, या ऑर्गन जो हमने देखे हुए हैं फोटोग्राफ्स में, बुक्स में, सिर्फ उतना ही आता है. I just can't imagine, visualize नहीं कर पाते हैं.
1: And I will give you one example कि जिस पर मैंने खुद काम किया है, इसलिए मैं आपको गहराई से बता पाऊंगा. वह है डायबिटीज. कि डायबिटीज आज बहुत बढ़ रहा है, हमने इस पर रिसर्च भी की. छोटा सा बताता हूँ, फिर विजुअलाइजेशन को हम डिस्कस करें. कि हमने करीब 52 पेशेंट्स पर यह प्रयोग किया और उनको 15 दिन तक वहां पर माउंट आबू में रखा, ताकि 15 दिन अच्छे से हम उनकी लाइफस्टाइल में परिवर्तन ला दे. शुरू में उनकी ब्लड शुगर चेक की, 15वें दिन भी ब्लड शुगर चेक की, साथ साथ ब्लड इंसुलिन को भी चेक किया, जो आमतौर पर चेक नहीं करते हैं. शुरू में ब्लड इंसुलिन को चेक किया, 15वें दिन भी चेक किया, और फिर पाया कि उनमें से 72% 15 दिन में उनका डायबिटीज कंट्रोल में आ गया.
0: बिना दवाई,
1: नॉर्मल दवाइयां वो ले रहे, लेकिन पहले तो कंट्रोल में नहीं था. दवाइयों में कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ परिवर्तन था कि उन्होंने रेगुलर थोड़ी एक्सरसाइज की, खाने में परिवर्तन किया, और मेन फोकस था ये विजुअलाइजेशन पर, मेडिटेशन पर. अर्थात कहेंगे कि मोर देन 70% मेडिटेशन की इफेक्ट हुई. और जो अमेजिंग चीज इसमें थी कि उनका जो ब्लड इंसुलिन था, वो पहले दिन और 15वें दिन में 48% कमी आई.
0: अच्छा, इंसुलिन लेवल की,
1: हाँ, ब्लड इंसुलिन. आम व्यक्ति यह सोचेगा कि भी इंसुलिन के तो हम इंजेक्शन लेते हैं, वो कम क्यों हुआ. परंतु इसका अर्थ है कि अभी शुगर को कंट्रोल करने के लिए उन 15 दिनों में उनको 48% कम इंसुलिन की जरूरत पड़ी, क्योंकि वो जीवन शैली तो परिवर्तन हुई, और यह मन के द्वारा भी उन्होंने अपनी बीमारी पर नियंत्रण प्राप्त किया. उनको जो विजुअलाइजेशन कराते हो, मैं आपको बताता हूँ कि डायबिटीज के पेशेंट्स में हमें मुख्य रूप से 4 लेवल पर काम करना होता है, जो विजुअलाइजेशन करना है. सबसे पहला तो यह जो पेंक्रियास की ग्रंथि है, या गाजर जैसी ग्रंथि है पेट में, उस ग्रंथि को आराम देने की जरूरत है.
0: अच्छा, वो ओवरवर्क्ड है,
1: उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, इसके कारण डायबिटीज हुआ. तो सबसे पहला तो यह स्टेप है. सेकेंड स्टेप है कि अब इंसुलिन को रिलीज करना है. उनमें पेनक्रियाज सही मात्रा में इंसुलिन रिलीज नहीं कर रहा है. दवाइयां भी क्या काम करती है, वो पेनक्रियाज को स्टिम्युलेट करके इंसुलिन को रिलीज करती, या आप इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं. तो मन के द्वारा भी यही किया जा सकता है. फिर थर्ड स्टेप है कि जो शुगर खून में घूम रही है, डायबिटीज मतलब क्या कि खून में बहुत ज्यादा शुगर है, जरूरत से ज्यादा, और उसको रक्त में आवश्यकता नहीं है. शुगर की आवश्यकता तो शरीर की मांसपेशियों में है, ब्रेन को शुगर की आवश्यकता है. तो ब्लड वेसल्स से उसको मसल्स में भेजना, वह कार्य भी हम मन के द्वारा कर सकते हैं.
0: तो अदरवाइज जो ब्लड में जो शुगर है, वो मसल्स तक क्यों नहीं जा पाते.
1: क्योंकि एक है ना द्वार होता है, कहे सिंपल सी भाषा में समझाता हूं कि भी एक द्वार है, वो आमतौर पर जैसे आप कुछ खाना खाते हैं खून में शुगर बढ़ती है तो द्वार खुल जाता है और जो शुगर है वो मसल्स में चली जाती है, परंतु डायबिटीज के पेशेंट्स में वो द्वार बंद ही रहता है, वो खुलता नहीं है
0: क्योंकि इंसुलिन नहीं है।
1: हाँ, इंसुलिन सही मात्रा में नहीं है।
0: अच्छा, इंसुलिन
1: तो वो काम नहीं कर रहा है,
0: इंसुलिन है तो वो द्वार खोलता
1: है। हाँ, और वो सही मात्रा में हो तब वो रिसेप्टर पर अटैच होता है और द्वार खुल जाता है।
0: ओहो, अच्छा।
1: तो जितनी मात्रा में होना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं है। और चौथी बात जो मन से करनी है कि जो इफेक्ट हो गई ऑलरेडी डायबिटीज की, कि भी डायबिटीज के कारण जो हमारे नर्व्स है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं,
0: किडनी पर सुन
1: होने लगे हैं, किडनी पर इफेक्ट हो रही है, आंखों पर इफेक्ट हो रही है, हार्ट पर, तो उसको भी हमें रिवर्स करना है। और ये मन के द्वारा भी कर सकते हैं, ये
0: चारों कैसे करेंगे?
1: हाँ, चारों पर हमने अच्छे से काम किया। एक सबसे पहला तो है कि पेनक्रियास को आराम देना है, तो पेशेंट्स को ये बताया कि आप ठीक से ध्यान करो, जिसे शिवानी बेन ने बताया कि हम तो 15 मिनट करवाते थे, 15 मिनट अच्छे से ध्यान करो, जब ध्यान की गहराई में जाओ फिर आप ये अलग अलग तरीके से विजुअलाइजेशन करो। एक तो कि आत्मा से वो सफेद किरणें निकल रही है, बाबा से शक्ति ली, आत्मा में शक्ति भरी और फिर वो पेनक्रियास पर पड़ रही है और बादल की तरह चारों ओर छा गई, और ने पूरा बादल छा गया पेनक्रियास पर, उसको आराम मिल रहा है।
0: I could visualize actually.
2: Cuddle it.
1: ना, उसको पूरा आराम मिला और पेनक्रियास अभी फिर से उसमें शक्ति आ गई, उसका कायाकल्प हो गया,
0: रिलैक्स हो गई वो।
1: हाँ, वो रिलैक्स हुई अच्छे से। फिर अभी जो सेकंड लेवल है कि हमें इंसुलिन को रिलीज करना है, तो उसके लिए फिर से ये सोच सकते हैं कि अभी भी आत्मा से एक नाउ पावरफुल रे इज कमिंग, वो आती है पेनक्रियास को स्टिम्युलेट करती है और पेनक्रियास को स्टिम्युलेट करते तो उसमें से इंसुलिन रिलीज हो रहा है। एक व्यक्ति ने ड्रॉ किया कि भी पेनक्रियास है वो संतरे जैसा है, मौसम्बी जैसा है, कि भी उसमें जूस है, पेनक्रियास का जूस है। उसने कहा कि उसको मैं रिलैक्स करता हूँ अच्छे से, थोड़ा सा प्रेशर देता हूँ तो इंसुलिन रिलीज हो रहा है। नो, दिस इज साइकोलॉजिकल बट दिस कैन रियली हैपन, क्योंकि अल्टीमेटली बुद्धि है वो पिक्चर्स को अच्छे से कैच करती है और इंसुलिन रिलीज हो सकता है। दूसरी एक बात हम लोगों को समझाते हैं कि कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास गरम गरम जलेबी बन रही है, तो क्या होगा?
0: मन करेगा खाने का।
1: हाँ, फिर क्या होगा? करेगा तो
0: हम खा लेंगे, पैसे
1: उससे
0: देंगे।
1: पहले क्या होगा? मुंह में पानी आएगा।
0: अच्छा, मुंह में पानी आएगा।
1: देखो, वो सोच के ही वहां से गुजर रहे, मुंह में पानी आया, तो ये भी एक ग्रंथि है।
0: अच्छा,
1: सलाइवा जो है वह सलाइवा एक ग्रंथि से निर्माण होता है, सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है, जैसे इंसुलिन है ऐसे ही है लेकिन अलग प्रकार का है। तो सिर्फ सोचने से सलाइवा निर्माण हो सकता है, तो इंसुलिन क्यों नहीं निर्माण हो सकता है? सब पेशेंट कहते हैं हाँ हाँ जरूर हो सकता है ना, तब उनको कन्विंस करके
0: तब ये, हाँ, तब ये एक्चुअली अब ट्रस्ट हो गया ना।
1: हाँ,
0: इट्स पॉसिबल दैट इट इज वर्किंग।
1: और फिर प्रैक्टिकली बताते कि खाने से पहले, जैसे ही खाने की डिश आ गई, आप डाइनिंग टेबल पर बैठे या तो उससे पहले भी, चाहे तो वहां टाइम नहीं है, आपने डिसाइड किया कि अभी मुझे लंच लेना है डिनर लेना है, पहले 15 मिनट अच्छे से योग करो, फिर ये विजुअलाइज करो कि ऐसे पेनक्रियास को स्टिम्युलेशन मिल रहा है, उसमें से जितना मुझे 15 यूनिट्स चाहिए तो 15 यूनिट इंसुलिन रिलीज हुआ, देन यू ईट योर फूड एंड इट रियली हैपेंस।
0: अच्छा, उतना ही रिलीज होगा वो? तो हम थायराइड को भी तो कर सकते,
1: हर और
0: उतना ही जितना चाहिए।
1: नहीं, जितना चाहिए उतना भी, और अगर भाई आपने किया आपको जरूरत नहीं है तो भी वो रिलीज करेगा। पहले भी मुझे इन बातों पर विश्वास था, परंतु ये घटना हुई तो ये फेथ और बढ़ गया। कुछ साल पहले माउंट आबू में ऐसी शिविर हुई थी, वहां एक महिला को डायबिटीज था, उनके पति को डायबिटीज नहीं था, वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, वो भी उसमें आए थे। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ करके उनको जब ये पूरी विधि करा रहे थे तो उनके पति ने भी सारा किया और उनको अच्छा सा फेथ था, तो उन्होंने ये सचमुच किया अच्छे से कि भी इंसुलिन रिलीज हो रहा है, मेरी शुगर कम हो रही है। तो जैसे वो प्रयोग पूरा हुआ उनको चक्कर आने लगे, है ना, वीकनेस लगने लगी, तो लगा इनकी शुगर कम हुई है, तुरंत उनको शुगर दी, थोड़ी तो ठीक हुए।
0: अच्छा।
1: भले एक मिस्टेक थी एक प्रकार से, परंतु इससे एक बहुत बड़ा फेथ डेवलप हो गया
0: कि इट इज एक्चुअली वर्किंग.
1: मैंने सोचा कि अगर नॉर्मल व्यक्ति में शुगर कम हो सकती है तो डायबिटीज के पेशेंट में तो और इजी है.
0: और मुझे लगता है आज तक सबके अगर चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं शुगर थोड़ा सा तो लेवल
1: है ही. हाँ, वो थोड़ा सा कम हो तो अच्छा ही है. तो ये सेकेंड लेवल हुआ. फिर अभी थर्ड है कि ब्लड से शुगर को मसल्स में भेजनी.
0: अब क्योंकि खाना खा लिया उसके बाद का विजुअलाइजेशन
1: कि आपने खाना खा लिया, अभी धीरे से शुगर बढ़ी और उस शुगर को मुझे कम करनी है. तो फिर से कि भी मैं गहराई से रिलैक्सेशन में गया और जो मेरे रिसेप्टर्स है वो भी एक्टिव हो गए. जो ब्लड वेसल्स में रिसेप्टर्स है वो सारे एक्टिव हुए तो द्वार खुल गया और वो जो शुगर थी वो मसल्स में गई. उनको मैं और एक विजुअलाइजेशन कराता हूं. ये सोचो कि भी शुगर की जो कणिकाएं है ना, स्क्वायर स्क्वायर कणिकाएं, ये सोचो कि खून में ढेर सारी है, वो ढेर सारी कणिकाएं घूम रही है और वो दिक्कत दे रही है. अब वह शुगर के स्क्वायर से वो सारे मसल्स में जा रहे हैं और ब्लड में अब कम हो गए.
0: ब्लड सिर्फ रेड रेड रह गया. हाँ, वो व्हाइट व्हाइट
1: स्क्वायर से
0: वो अंदर चले गए. मैं कर पा रही हूँ. और इसको एक्चुअली बनाया भी जा सकता
1: है. बना के बताते हैं प्रैक्टिकल. जब पिक्चराइज करो ना तब इजी है. वन दूसरा एक कहते हैं कि भी आपकी शुगर अगर 250 है तो ये चित्र करो. 250 लिखा है सारे बॉडी में. 250 लिखा हुआ है ब्लड में. उतने सारे स्क्वायर्स है. अभी वो कम होने लगे, सारे मसल्स में चले गए, ब्रेन में चले गए और कम हुआ. हाँ, अभी 150 हो गई. तो भी आप अपना फिगर डिसाइड करो कि भी आपको चाहे कि भी मेरी फास्टिंग शुगर 110 होनी चाहिए, पोस्ट लंच 150 होनी चाहिए. तो रियल ये क्रिएट करो. बस 150 लिखा है और सचमुच हो गया
0: वो ब्लड
1: में. आत्मा में वह शक्ति है कि वो प्रैक्टिकली ब्लड से शुगर को मसल्स में भेज सकता है.
0: Does it require quite lot of concentration?
1: Rather than concentration, no, you need more of meditation. है ना? Relaxation की जरूरत है. जितना आप डीप रिलैक्स होंगे, पीसफुल होंगे, उतना ही इफेक्ट अच्छी होगी.
2: आप शरीर से डिटैच्ड होंगे ना, जैसे हम दूसरों को राय ज्यादा अच्छी दे पाते हैं क्योंकि हम डिटैच्ड होकर उस प्रॉब्लम को देख रहे हैं. अभी तक हम डायबिटीज सोचते थे तो हम वी वर ऑलवेज इन पेन. मुझे क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, मेरा ही प्रॉब्लम है, मेरा ही ऑर्गन वीक है. अब डिटैच होकर हम उसको हील कर रहे हैं. इट्स लाइक अ डॉक्टर हीलिंग अ पेशेंट. नाउ आई एम हीलिंग माई ओन बॉडी. सो इफ आई गेट डिटैच्ड, लेकिन वो डिटैच्ड उस इलनेस से और उस पेन से हम तभी हो सकते हैं जब सोल कॉन्शियस है. इसलिए सोल कॉन्शियस होने के बिना ये करना थोड़ा सा मुश्किल होगा. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट क्योंकि एक वही थॉट्स आ रहे हैं लेकिन बीच में कुछ और थॉट्स आ जाते हैं.
0: वो आते हैं, वही तो मैं कह रही हूँ, एकदम से सडनली यू नो कुछ को. अच्छा, दूसरे फिर डाउट्स, मतलब क्या मैं अगर कर सकती होती तो क्या इतनी बीमारी होती.
2: एग्जैक्टली, क्योंकि वो इसलिए भी है, वी डोंट नो द पावर ऑफ द माइंड. हम अपने मन की शक्ति को नहीं जानते. हमारे ही मन ने ये बहुत सारे डैमेजेस क्रिएट किए. अब हमारा ही मन ये सारे जो हीलिंग है, माय माइंड विल डू इट. सी, इफ माय माइंड कैन ब्रेक द थिंग, माय माइंड कैन हील द थिंग. अगर जो इन्होंने कहा कि वो द्वार है, वो जो रिसेप्टर है वो बंद हो गया, ये मेरे थॉट पैटर्न ने किया, तो फिर वो द्वार मेरे थॉट पैटर्न ही उसको खोलेगा ना. इट्स जस्ट दैट वो गेट बंद करते टाइम आई वॉज नॉट अवेयर. अब गेट खोलने का टाइम आई विल बी फुल्ली अवेयर दैट आई एम डूइंग इट. इट विल डेफिनेटली वर्क. लेकिन हमें रिजल्ट वो तभी मिलेगा जब हम पहले मेडिटेशन को अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये थॉट्स नहीं हम तब तक क्रिएट कर पाते. नहीं तो क्या होगा, एक थॉट क्रिएट करेंगे, कुछ और थॉट्स आ जाएंगी, और कुछ नहीं तो घर की कोई बात, ऑफिस की कोई बात आ जाएगी. देन द पावर ऑफ द थॉट विल नॉट वर्क. पावर ऑफ द माइंड टू वर्क, फिर वो थॉट पावरफुल, पॉजिटिव एंड कॉन्सेंट्रेटेड होगा. उसमें कोई
0: कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा,
2: डाइल्यूशन भी नहीं होनी चाहिए. ये नहीं कि एक थॉट है कि द्वार खुल रहा है, दूसरा थॉट है ऑफिस में तो आज ये काम किया नहीं. देन तो क्या एक थॉट से मैं पॉजिटिव इमोशन क्रिएट कर रही हूँ, दूसरे थॉट से मैं स्ट्रेस क्रिएट कर रही हूँ, तो आई विल बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डोर एक्चुअली. सो इट वॉन्ट वर्क प्रॉपरली. इट हैज टू बी वेरी फोकस्ड, चैनलाइज थॉट्स. इसलिए मेडिटेशन का जो अभ्यास रेगुलर रीति से करेंगे, पर उनके लिए ये करना It's just an extension of what you are already doing. So become very simple then.
0: Actually,
1: और एक aspect आपको बताता हूँ जो डायबिटीज में है कि भी अधिकतर जो टाइप 2 डायबिटीज है लोगों को, कि जो करीब 30-40 साल के बाद होता है. टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन तो होता है, अधिक भी होता है. जिनको डायबिटीज नहीं है उनसे भी उनमें इंसुलिन ज्यादा होता है. परंतु इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, जिसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और सरल भाषा में समझाते हैं कि जंग लग गया है। जैसे इंसुलिन चाबी का काम करता है और जो रिसेप्टर्स है वो ताले जैसे।
0: अच्छा, तो वो इंसुलिन जो है वो जंग लगी चाबी तो,
1: हाँ, काम नहीं कर रहा। तो अगर नहीं, अगर ताले को जंग लगाए तो क्या करते, उसमें ऑयल डालेंगे, वो जंग खत्म होगा तो वही चाबी काम करने लगेगी। तो ऐसे ही डायबिटीज के पेशेंट्स को हमारे सारे शरीर में जंग लगा है। वो एक्सरसाइज की कमी के कारण भी लगा है, गलत आहार से भी लगा है, और नेगेटिव इमोशन से लगा है। टेंशन, ग्रीड, ये सभी नेगेटिव इमोशन से भी, उसे भी खत्म करना है। तो एक तो इमोशंस पर विजय प्राप्त करे और दूसरा विजुअलाइजेशन भी कार्य करेगा। इसमें जब हम पेशेंट्स को करवाते थे तो एक दो पेशेंट ने बहुत अच्छे यूनिक से विजुअलाइजेशन बताए। एक पेशेंट ने ये कहा कि मैं ये चित्र निर्माण करता हूं कि मेरे पास एक वैक्यूम क्लीनर है, यहां पर वैक्यूम क्लीनर लगाया है, वो वैक्यूम क्लीनर, स्पिरिचुअल वैक्यूम क्लीनर काम कर रहा है और मेरा जो सारा जंक है उसको खींच लेते हैं। सारी बॉडी है एकदम उसका ऑरा अच्छा हो गया, ऑरा एकदम क्लियर हो गया। अब वो थोड़ा सा इंसुलिन ही काम करने लगा है और मेरी ब्लड शुगर कम हो गई।
0: तो फिर इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ रही
1: कम? हाँ, फिर काफी इंसुलिन उतने दिनों में हमने देखा है, 5-7 दिनों में भी इंसुलिन की आवश्यकता, मेडिसिन की आवश्यकता 50-60% कम हो जाती है।
0: इनफैक्ट अगर हम ये विजुअलाइजेशन देखें सचिवानी, ये सिर्फ डायबिटीज या उसके लिए नहीं, हर ऑर्गन पे काम,
2: पेन मैनेजमेंट के लिए भी यूज हो पाएगा।
0: पेन के लिए कैसे कर सकते हैं?
1: पेन मैनेजमेंट के लिए, पेन में दो बातें हैं, एक तो जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं जिसके कारण फिर दर्द होता है, और दूसरे जो नर्व्स है उसमें भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस आ रहे हैं, उसके कारण भी फिर अल्टीमेटली दर्द हो रहा है। तो दोनों प्रकार के विजुअलाइजेशन हो सकते हैं। एक तो मैं एकदम रिलैक्स टू मेडिटेशन की स्टेज में चला गया और बाबा की किरणें मिल रही है, एकदम जैसे ठंडी ठंडी किरणें मिल रही है और मेरे मसल्स को रिलैक्स कर रही है, मेरे सारे मसल्स रिलैक्स हो गए। ये भी विजुअलाइज करो कि मसल स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग कैसे दब जाती है, उसको मैंने रिलीज कर दिया।
0: हाँ,
1: या दूसरा मैं ये विजुअलाइजेशन बताता हूँ, जैसे कॉटन, मेडिकेटेड कॉटन होता है कि जिसको प्रेस किया गया है, तो ऐसे मसल्स भी प्रेस हो गए, उसको मैं लूज कर रहा हूँ और फिर से वो रिलैक्स हो गए, फिर से रिलैक्स हुए तो दर्द भी गायब हो गया।
2: आप डेंटिस्ट के पास बैठे हैं, आप ये एक्सपेरिमेंट करें। I've personally seen the dentist says, आपको दर्द क्यों नहीं हो रहा, मैं रूट कनाल कर रहा हूँ, आपको पेन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि एक तो हम सोल कॉन्शियस स्थिति में बैठे हैं और उसको वो वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, वो विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। डॉक्टर अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। पहले जब हम बैठते थे डॉक्टर के पास,
0: वी वर
2: क्रिएटिंग थॉट्स ऑफ पेन, यू नो, अब मुझे दर्द होगा, ये क्या कर रहा है, ये तो बहुत पेनफुल प्रोसेस है। तो जितना होना चाहिए था उससे भी शायद ज्यादा हुआ करता था। अब वी आर क्रिएटिंग द राइट काइंड ऑफ थॉट्स एंड द विजुअलाइजेशन टेक्निक। आत्मा की ये दोनों जो फैकल्टीज है, माइंड एंड इंटेलेक्ट, ये दोनों जब इतने ब्यूटिफुली हार्मनी में काम करती है कि मन थॉट क्रिएट करता, बुद्धि विजुअलाइज करती, एक्सपीरियंस होना ही होना है। दैट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड रिजल्ट कि माइंड एंड इंटेलेक्ट वर्किंग इन हार्मनी, इट वर्क्स। एंड एनी काइंड ऑफ पेन, नी पेन है, बैक पेन है, हेडेक है, स्टमक पेन हो रहा है, चोट लगी है, वूंड है, अभी अभी आपको चोट लगी है, आपको बहुत दर्द हो रहा है, सिट बैक, डोंट गेट entangled इन द पेन, हाय मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इट becomes अ vicious साइकिल ऑफ पेन। जस्ट चेंज द pattern ऑफ thought, क्रिएट दिस visualization, इट works.
1: और एक बात ये भी है कि जो nerves में इलेक्ट्रिकल impulses जा रहे हैं, ये भी विजुअलाइज करो कि जो फास्ट impulses जा रहे हो, क्योंकि मैं आत्मा शांत हो गई, मैं शांत हुई तो ऑटोमेटिक नर्व्स पर जाने वाले इम्पल्सिस भी शांत हुए, और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस कम हुए तो मेरा दर्द भी गायब हो गया। दिस ऑल्सो कैन वर्क। आप आर्थराइटिस का पूछ रहे थे। आर्थराइटिस क्या है कि दो हड्डियों के बीच में एक गैप होता है, उसके बीच में गद्दी है, कार्टिलेज जिसको कहते, कि भी ये गद्दी घिसने लगी है, और करीब 25 ईयर्स के बाद देखेंगे सबकी वो गद्दी घिस रही है, किसकी 1% है, किसकी 50% है। अगर 60-70% घिस जाए तो फिर नी रिप्लेसमेंट करानी पड़ती है। तो अभी इसमें क्या विजुअलाइजेशन का भी जरूरत क्या, एक तो बताता हूँ पहले, भी उस पर जो प्रेशर आ रहा है ना, वो प्रेशर को हमें कम करना है। अगर ये विजुअलाइजेशन करे कि मेरे सारे मसल स्ट्रांग हो रहे हैं, एक्सरसाइज भी करिए उससे भी स्ट्रांग होंगे, विजुअलाइजेशन से भी वो मसल्स स्ट्रांग होंगे, और मसल जब स्ट्रांग हो गए तो वो हड्डी को पकड़ के रखेंगे, अभी कमजोर है तो उस पर प्रेशर आ रहा है।
0: अच्छा, तो वो गद्दी मेंटेन रहेगी,
1: मेंटेन रहेगी, वो जो गैप है वो मेंटेन रहेगा, तो पेन नहीं होगा। एक तो ये विजुअलाइजेशन काम करेगा। दूसरा, ये अच्छा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि ये जो कार्टिलेज है ना, उसमें कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट से बनता है, ये केमिकल है जिससे बनता है, ग्लूकोसामाइन से वो बनता है। तो ये विजुअलाइजेशन करे कि जब वहां पर ब्लड फ्लो हो रहा है तब ब्लड के अंदर ये जो ग्लूकोसामाइन है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है, वो कार्टिलेज में डिपॉजिट होने लगा है, पहले नहीं हो रहा था, अब वो वहां पर जाकर के चिपक जाता है, वो चिपक रहा है और मेरा कार्टिलेज धीरे धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना। सचमुच फेथ से करो कि वह से हाफ मिलीमीटर है, उसे धीरे धीरे बड़ा हो ही रहा है और कार्टिलेज अच्छा हो गया तो सपोर्ट मिल गया, तो दर्द गायब हो गया।
0: राइट, ट्रू।
2: इतना क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि मैं आत्मा अपने शरीर को रचती हूँ, आई एम क्रिएटिंग माई बॉडी। एक्चुअली वी अंडरस्टूड आई एम क्रिएटिंग डेस्टिनी, आई एम क्रिएटिंग, बट आई एम क्रिएटिंग माई बॉडी। इसी अगर जैसे ये कहा कि कार्टिलेज डेवलप हो रहा है, आई एम क्रिएटिंग इट विद द पावर ऑफ माई माइंड। अगर ये मेरी रचना है तो मुझे इसको कितने प्यार से रचना चाहिए, लेकिन हम इसको कोसते रहते हैं सारा दिन, घुटना देखो मेरा कैसा है, दर्द ही होता रहता है। एक्चुअली आई एम सेंडिंग इट द रॉन्ग एनर्जी, तो मैं अपनी ही रचना का नुकसान कर रही हूँ सारा दिन। एक लैक ऑफ अवेयरनेस थे, हर जगह जहाँ फायदा कर सकते थे नुकसान करते आ गए।
0: जो भी बोल रहे, जो भी सोच रहे, बहुत सोच समझ के बोले और कहें और सोचे,
2: सोचकर सोचे, पहले ध्यान से सोचे।
0: वेरी ट्रू शिवानी, डॉक्टर पटेल, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ हर बार कुछ अपने ही बारे में नया जानने को मिलता है और एक्सपेरिमेंट करने का हमारे पास स्कोप होता है। ओम शांति। मेरी बॉडी जो अभी तक मुझे लगता था कि ऑटोमेटेड मोड में है, मुझे इसके सिस्टम्स के बारे में कुछ नहीं पता, पता भी है तो सारी चीजें डॉक्टर के हाथ में है, आज मैं खुद अपना हीलर हूँ, हीलर बन सकता हूँ, हीलर विद इन। व्हाई डोंट वी सर्च फॉर दैट कि कौन है, कौन से वो थॉट्स हैं, कौन से वो फीलिंग्स हैं और कौन सा वो विजुअलाइजेशन है जो मेरे सारे डिजीजेस को हील कर सकता है। ये हम लर्न कर रहे हैं, ज्ञान आ गया, अब हमारा एक्सपेरिमेंट होगा, हम प्रयास करें, कोशिश करके देखें। इस प्लेटफॉर्म पे पता चला है कि रिजल्ट्स जरूर आते हैं, आपके अनुभव

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणे की आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: अजीमुल्ला खान को 1857 के महासमर की रणनीति तैयार करने वाली एक शख्सियत के रूप में जाना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ये रणनीति रंगोजी बापू के साथ मिलकर अंग्रेजों के गढ़ इंग्लैंड में बैठकर बनाई थी। अजीमुल्ला खान नाना साहब पेशवा के मंत्री थे और अंग्रेजों द्वारा पेंशन बंद किए जाने के विरोध में नाना की पैरवी करने लंदन गए थे। लंदन में तो उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, मगर रूस और इंग्लैंड का युद्ध छिड़ जाने पर उन्होंने काशी में रंगोजी बापू के साथ मिलकर ये योजना बनाई कि भारत को भी अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ देनी चाहिए। अजीमुल्ला खान ने एक बहुत ही लोकप्रिय राष्ट्रभक्तिपूर्ण गीत की रचना की थी, जिसे गाते हुए महासमर के योद्धा फिरंगियों से जूझने निकलते थे। उनकी देशभक्ति अंग्रेजों को खटकने लगी और बगावत भड़काने के आरोप में अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। एक जांबाज क्रांतिकारी अपने प्राणों की आहुति देकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया।

0: अरे कृष्णा, अरे समोसे के लिए आलू उबाल दिए कि नहीं?
1: हाँ काका।
0: और राजू, तेरा मैदा छना कि नहीं?
1: बस हो गया काका।
0: अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ भाई।
2: क्या बात है गजबी काका, बड़ी जल्दी मचा रहे हो आज।
0: अरे भाई, आज छुट्टी है ना, तो कॉलेज वाले लड़के आने वाले हैं कहानी सुनने, इसलिए जरा अपने सामने सारे काम निपटा लूं, फिर तो फुर्सत से बैठूंगा।
2: आप भी काका, कहां लगे रहते हो नए नवेले लोंडों में। अच्छी सीख का असर हुआ है कभी इन पर?
0: भाई ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, पर इतना जरूर जानता हूं कि अगर चार अच्छी बातें मैं जानता हूं तो इन्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, और इसी बहाने मैं भी अमर शहीदों को याद कर लेता हूं, उन्हें प्रणाम कर लेता हूं।
2: ठीक कहते हो काका, लेकिन आज कुछ ऐसा सुनाना कि जिसमें आजादी की लड़ाई हथियारों से नहीं दिमाग से लड़ी गई हो और इनके गर्म खून पर भी उसका असर हो।
0: ठीक है बेटा, तो आज ऐसा ही सही। अरे राम राम राम राम, बैठो बैठो बैठो बेटा बैठो।
1: काका फुर्सत में तो है ना?
0: अरे ढाबे में कभी फुर्सत होती है क्या? लेकिन ऐसा काम भी नहीं है मेरा कि तुम लोगों के आने से रुक जाए। हम अपनी पंचायत लगाते हैं, लड़के ढाबे का काम देखते रहेंगे।
3: ये हुई ना बात। तो काका, आज किस वीर सपूत के बारे में बता रहे हैं?
0: बताता हूँ, लेकिन पहले इनसे तो मिलो। यह है मेरा भतीजा ब्रजेश, आज ही आया है गांव से ढाबे में मेरा हाथ बटाने, और आज इसी की फरमाइश पे मैं बता रहा हूँ अजीमुल्ला खान के बारे में।
3: अजीमुल्ला खान, इनका तो हमने कभी नाम तक नहीं सुना।
0: बहुत दुर्भाग्यशाली हो बेटा। अरे अजीमुल्ला खान तो फिर भी बहुत बड़ा नाम है, एक नहीं ऐसे न जाने कितने वीर हुए हैं कि हमारे यहां जिनके नाम बहुत लोगों तक पहुंचे ही नहीं। अजीमुल्ला वो क्रांतिकारी था जिसने अपने दिमाग से कई बार अंग्रेजों को मात दी, बेहद शातिर, स्वाभिमानी और चट्टानी हौसलों वाला कट्टर हिंदुस्तानी था, और ये सब गुणों से मिले थे उसकी मां से। वाह वाह, अजीमुल्ला जब छोटा था तब अकाल पड़ा, और अकाल की मारी उसकी मां ने बेटे के साथ एक ईसाई आश्रम में पनाह ले ली। मजहब बदलने की बातें उड़ते उड़ते उनके कानों तक पहुंची, तो उसने अपने धर्म पिता से दो टूक बात करना ही अच्छा समझा। वो एक धर्मनिष्ठ महिला थी, उसने ठान लिया था कि वो आश्रम में अपनी शर्तों पर रहेगी और किसी पर भी बोझ नहीं बनेगी।
4: तो क्या तुमने फैसला कर लिया है कि अब तुम इस आश्रम में नहीं रहोगी?
5: नहीं साहब, मैंने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं, अलबत्ता ये फैसला आपका हो तो।
4: नहीं नहीं, हम तुम्हें जाने के लिए थोड़े ही कह रहे हैं, तुम जितने दिन चाहो खुशी से यहाँ रुक सकती हो।
1: तो क्या अजीमुल्ला खान और उसकी माँ फिर वहीं रुक गए?
0: हाँ रुके जरूर, वहां रहे भी, पर मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि खुददारी से अपनी शर्तें रखी थी अजीमुल्ला खान की माँ ने।
5: साहब मैं यहाँ रुकूंगी तो, पर अब मैं यहाँ बगैर कुछ काम किए आपकी रहमत पर नहीं रहना चाहती। मैं मेहनत मजदूरी करूंगी, आप लोगों के काम करूंगी और अपनी रोजी रोटी खुद कमाकर यहाँ गुजर बसर करूंगी।
4: लेकिन तुम इतनी बातें क्यों सोच रही हो? अभी तक जैसे रही हो वैसे ही क्यों नहीं रहती?
5: नहीं जनाब, पहले ही आप लोगों के बड़े एहसान हैं मुझ पर, आपने मुझ अकाल की मारी को यहाँ पनाह दी, मेरी और मेरे बच्चे की परवरिश की। बस अब मुझे मौका दीजिए, मैं आपके कुछ एहसानों का बदला चुका सकूं।
4: ठीक है, जैसे चाहो वैसे रहो, पर अपने बच्चे अजीमुल्ला को मिशन स्कूल जरूर भेजा करो, हम उसका नाम नहीं बदलेंगे।
0: और इस तरह अजीमुल्ला कानपुर के मिशन स्कूल जाता रहा। ईसाई धर्म पिता के कर्म से उसे पढ़ाई का खर्चा भी नहीं देना पड़ता था। और वजीफा मिलता था। सो अलग, अजीमुल्ला तेज दिमाग का तो था ही, सो अच्छे से इम्तहानों में कामयाब होता चला गया और एक दिन उसे उसी स्कूल में मास्टर बना दिया गया। लेकिन मास्टर बनना उसे पसंद नहीं था, इसलिए वो काम छोड़कर ब्रिगेडियर स्कॉट के ऑफिस में अफसर हो गया।
3: अंग्रेज सेना का अफसर?
0: हाँ, लेकिन गर्म खून था उसका और कट्टरता तो विरासत में मिली थी उसे, इसलिए एक रोज उसका ब्रिगेडियर बर्नहम से झगड़ा हो गया। अंग्रेजों के यहां कट्टरता की जगह नहीं थी, लिहाजा उसे नौकरी से निकाल दिया गया।
1: नौकरी छीनने से तो वो मुसीबत में आ गया होगा।
0: अजीमुल्ला को नौकरी से निकालकर अंग्रेजों ने खुद ही मुसीबत मोल ले ली।
1: वो कैसे?
0: नौकरी से निकाले जाने के बाद वो बागी हो गया और वकालत का काम करने नाना साहब पेशवा के पास बिठूर पहुंच गया और यहां से शुरू हुआ एक नया सफर। और उस सफर पर मैं तुम्हें ले चलूंगा, बस थोड़ा सा रुक कर।
3: वो क्यों चाचा?
0: अरे भाई, बोलते बोलते मेरा गला भी सूख गया है और जरा भट्टी भी तो देख लूं। तब तक तुम लोग भी चाय वाय पी के जरा ताजा हो जाओ। अरे ओ छोटू, यहां जरा 8-10 चाय लगा।
6: हिंदुस्तान हमारा का शेष भाग थोड़ी देर में।

0: स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित 15 ऑडियो एल्बम्स का संग्रह।
1: लीजिए प्रस्तुत है हिंदुस्तान हमारा का शेष भाग।
2: हाँ, तो जब अजीमुल्ला नाना साहब के पास पहुंचे तो अंग्रेजों ने उनके सारे विशेष अधिकार छीन लिए थे। ऐसे में नाना साहब ने अजीमुल्ला की बेहतरीन वकालत का फायदा उठाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और महारानी विक्टोरिया के दरबार में अपील करने के लिए उन्हें लंदन भेज दिया। लंदन में अजीमुल्ला का नाम जल्द ही सबकी जबान पर था। गोरा रंग, लंबा छरहरा बदन, सलीके से पहना हिंदुस्तानी लिबास और अंग्रेजी के साथ फ्रेंच भाषा का असाधारण ज्ञान, चेहरे पे मुस्कुराहट खिलती तो लोग बरबस ही उनसे बात करने के लिए बेताब हो जाते। लंदन में अजीमुल्ला इतना प्रसिद्ध हो गया कि उसे अंग्रेज अपने घर खाने पर बुलाते, सभाओं और थिएटर में बुलाते। महफिलें उसके बगैर सूनी रहती थी, सजती नहीं, और लड़कियां भी उसके इर्द गिर्द घूमती रहती थी।
3: मिस्टर अजीमुल्ला, यू आर ए ब्रिलियंट लॉयर, तुम हमारे साथ लंदन में हमारे कंपनी में काम क्यों नहीं करता?
4: सॉरी सर, मैं यहां पर एक खास मकसद के लिए आया हूं, लेकिन आपका शुक्रिया।
5: एक्सक्यूज मी, मे आई हैव प्लेजर टू डांस विद यू?
2: और इस तरह लंदन में उसे मान सम्मान, स्नेह, सौहार्द, यश और वैभव सब कुछ मिला, पर वो न मिला जिसके लिए वो वहां गया था। बोर्ड पेशवा साहब के अधिकारों को लौटाने के लिए राजी नहीं हुआ। फिर अजीमुल्ला समझ गया कि इंग्लैंड भारत के ऊपर अपना पंजा ढीला करने की बजाय कसता जा रहा है। अब वो सिर्फ पेशवा के अधिकारों के बारे में नहीं, बल्कि पूरे देश के बारे में सोच रहा था। और ऐसे में उसने फैसला किया कि मिलजुल कर संघर्ष ही मुक्ति का मार्ग है, विनय और याचनाएं नहीं।
6: पर वो लड़ता तो कैसे? वो तो लंदन में था।
2: इसीलिए उसने लंदन से वापस भारत आने का फैसला लिया, और न जाने कितने दिल टूट गए। उनमें एक खास नाम था, रोजी। और उस रोजी मेम ने बहुत कोशिश की कि अजीमुल्ला के गले में मोहब्बत की बेड़ियां डाल दे।
5: क्या मैं ये जान सकती हूं कि तुमने ये फैसला क्यों किया है?
4: रोजी, मैं यहां जिंदगी भर रहने के इरादे से तो आया नहीं था। मैं जिस मकसद के लिए आया था वो पूरा नहीं हो रहा है, लिहाजा वापस जा रहा हूं।
5: नहीं अजीम, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे जाने से मेरा दिल टूट जाएगा।
4: और यहाँ रहकर मेरा दिल टूट जाएगा।
5: तुम्हारे दिल का इलाज है मेरे पास। मैं शादी करूंगी तुमसे। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। मेरी पहुंच राजघराने तक है। मैं तुम्हें अच्छी सी नौकरी दिला दूंगी। हम दोनों बहुत सुख से रहेंगे।
4: अब मैं अपने और नाना साहब के सुख की बात नहीं सोचता रोजी। मैं तो अब अपने पूरे वतन और वहां के लोगों के सुख की बात सोचता हूँ। मेरा वतन गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहे और मैं यहां आजाद रहकर रंगलियां मनाऊं, मेरे वतन के लोग एक एक दाने को मोहताज रहे और मैं यहां आराम की जिंदगी गुजारू, नहीं, कैसे होगा मुझसे ये सब?
5: ये सब तो बहुत बड़े मसले हैं अजीम, वो धीरे धीरे हल होंगे। तुम ये बताओ कि इस वक्त मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए?
4: तुमने अभी बताया था कि तुम्हारी राजघराने तक पहुँच है। तुम अपने रसूख का इस्तेमाल करके मेरे नाना साहब का छीना हुआ हक उन्हें वापस दिला दो।
5: देखो अजीम, ये नेशनल पॉलिसी का मामला है, मैं पर्सनल रिलेशन से नेशनल पॉलिसीज को क्यों प्रभावित करूं?
4: देख ली तुम्हारी मोहब्बत की गहराई, मैं भी जाती ताल्लुकात के चलते नेशनल पॉलिसीज को प्रभावित नहीं कर सकता। मैं भारत वापस जा रहा हूं।
7: तो क्या खाली हाथ वापस आ गया था अजीम?
2: नहीं नहीं नहीं, खाली हाथ वापसी उसे मंजूर ही नहीं थी। वो हिंदुस्तान आने के पहले यूरोप के देशों में घूम घूम कर राजनीति के पाठ पढ़ना चाहता था, लिहाजा पहले वो माल्टा पहुंचा, जहां उसे मालूम पड़ा कि क्रीमिया की लड़ाई में रूस के मुकाबले इंग्लैंड और फ्रांस दोनों की संयुक्त सेनाएं हार गईं। उसे हैरत भी हुई और खुशी भी। वो सोचने लगा कि यदि भारत की सभी रियासतें मिलकर अंग्रेजी फौजों का मुकाबला करे तो अंग्रेजों को भारत से भगाया जा सकता है। इसलिए रूस की गतिविधियां देखने वो पहले रूस गया, फिर वहां से मिस्र होता हुआ हिंदुस्तान वापस आ गया।
6: नाना साहब तो नाराज हुए होंगे क्योंकि अजीमुल्ला उनका काम नहीं कर सका था।
2: नहीं, उसने पेशवा साहब को उनके मामले की जानकारी तो दी ही, यूरोप में अंग्रेजों की कम होती ताकत के बारे में बताया और समझाया कि कैसे अंग्रेजों का सामना करना है।
8: नाना साहब, मुझे लगता है आपको भारत देश में चल रही समस्त क्रांतिकारी गतिविधियों पर स्वयं नजर रखनी होगी, जगह जगह जाकर स्थिति का जायजा लेना चाहिए।
9: लेकिन अजीम भाई, ये कैसे संभव? हम ऐसे में कूटनीतिक यात्रा पर निकल पड़े तो सतर्क हो जाएंगे वो सब।
8: कूटनीतिक यात्रा नहीं, तीर्थ यात्रा नाना साहब। आप तीर्थ यात्रा के बहाने संपूर्ण भारतवर्ष की हालिया स्थिति का जायजा ले सकते हैं।
9: लेकिन ये तो धोखे के समान है।
8: माफ कीजिए नाना साहब, प्यार और जंग में सब जायज है। और नाना साहब, फिर वो गोरे कौन से अपने हैं, हम अपनों के साथ तो धोखा कर नहीं रहे।
9: ठीक कहते हो अजीम, हम जल्दी ही तीर्थ यात्रा के लिए निकलेंगे।
6: वाह काका, सच में क्या दिमाग पाया था अजीमुल्ला ने।
2: फिर क्या, अजीमुल्ला का ज्यादा वक्त पेशवा साहब के साथ बीतने लगा। तात्य टोपे अगर पेशवा साहब के दाया हाथ थे तो अजीमुल्ला उनका दिमाग।
8: नाना साहब, क्या मैं जान सकता हूं कि आपने क्यों अपने महल में अंग्रेज परिवार को पनाह दी है?
9: लेकिन अजीमुल्ला, बाहर क्रांति का माहौल था, फिरंगियों पर हमले हो रहे थे, ऐसे में उस परिवार की सुरक्षा हमारा धर्म है।
8: नाना साहब, बड़े एहतराम के साथ कहना चाहूंगा कि अभी देश प्रेमी हमारा सबसे बड़ा धर्म है। जब संपूर्ण क्रांति ही उनके खिलाफ हो रही है तो उनकी रक्षा कैसी, और फिर वो यहां रहकर हमारे भेद भी जान सकते हैं। नाना साहब, मुझे उनके कत्ल की आज्ञा चाहिए।

0: फिर क्या हुआ काका?
1: नाना साहब की रणनीतियों के पीछे अजीमुल्ला की अकल का ही कमाल होता। चाहे वो पेशवा साहब की तीर्थ यात्रा के बहाने समस्त उत्तर भारत की यात्रा हो या 1857 की क्रांति की सैनिक क्रांति संरचना। अजीमुल्ला ने इंग्लैंड में अंग्रेजों की नीति का ही ऐलान किया कि प्यार और जंग में सब जायज है। उसने पेशवा साहब के महल में ही छिपे अंग्रेजों को मार गिराया। कानपुर में नाव पर सवार अंग्रेजों पर गोलियां चलाई और उन्हें मार गिराया।

0: साहब, कुछ अंग्रेज नावों पर छुपकर बैठे हुए हैं।
1: ठीक है, तैयारी करो, अंधेरा घिरते ही हम उन पर हमला कर देंगे।

हमला।

0: पर ये तो भूल गए, इंग्लैंड में ही तो सीखा था उसने कि व्यक्तिगत संबंध और आदर्श राष्ट्रीय नीति के आड़े नहीं आना चाहिए। सचमुच रोम रोम से सच्चा क्रांतिकारी था अजीमुल्लाह खान, तन मन से हिंदुस्तान पर कुर्बान।
1: सचमुच गजभिये काका, आप ये सब हमें ना बताते तो शायद हमें अजीमुल्लाह खान का नाम तक ना पता होता।
2: हाँ काका, वो तो पिछली सदी में भी आज की सदी से आगे की सोच रखता था, और एक ये भोंदू है जो क्लास में बाउंड्री पे पास होकर भी अपने आप को दुनिया का सबसे समझदार समझते हैं।
1: अबे मैं तो पास हो जाता हूँ, तू अपनी देख।
2: अरे चल रहने दे यार।
3: चलो भाई अब तो मुझे छुट्टी दो, इस वादे के साथ कि ये बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालोगे नहीं और आजादी की कीमत समझोगे।
4: वादा रहा काका, पक्का वादा कि आजाद भारत को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे और पूरी दुनिया में सबसे आगे होगा
5: हिंदुस्तान हमारा।
6: निर्देशन मॉरिस लाजरस, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
7: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी, तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खिले।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
2: There is a time to bid goodbye to the old and the ordinary and to awaken the beauty within. That time is now. It is time to wake up and take charge of life. Awaken to a new way of thinking. Awakening with Brahma Kumaris.
3: Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Sister Shivani is with us.
4: Om Shanti.
3: Welcome, sister. Welcome to Being Bliss.
4: Thank you.
3: सिस्टर, बचपन से हम एक बात सुनते आते हैं कि लाइफ इज अ कंपटीशन, कंपटीशन, कंपटीशन। मैंने कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आज पढ़ी, मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे और व्यूअर्स से। आई एम इन कंपटीशन विद नो वन, आई रन माय ओन रेस, आई हैव नो डिजायर टू प्ले द गेम ऑफ बीइंग बेटर देन एनी वन, आई जस्ट एम टू इम्प्रूव to be better than I was before. That's me and I'm free.
4: Last line dekhna kya hai? I am free because I'm not in competition with anybody. Ab ye jab hum sunenge, padhenge, ho sakta hai padhte hue achhi bhi lagegi, kahenge haan nice, but believe nahi karenge. Isko hum believe nahi kar payenge. क्योंकि बहुत डीप इनग्रेन्ड सिस्टम है ये बिलीव सिस्टम, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीव सिस्टम्स है अभी का, जो हमारी खुशी को काफी हद तक कम करने का कारण बन रहा है आज। एंगर इज गुड, फिर भी कोई मानेगा, कोई बोलेगा नहीं कहाँ गुड है, मालूम है इतने नुकसान होते हैं, तबीयत भी खराब होती है, यू नो स्टिल वील से हाँ नहीं। टेंशन इज

0: करें. यू नो, पुराना बिलीफ सिस्टम कभी कभी एक नई चीज को सुनने के लिए ओपन भी नहीं होता है, तो सुनते हुए भी उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे. स्वीकार मतलब ये नहीं कि उसको एक्सेप्ट कर लो, लेकिन स्वीकार सिर्फ ट्राई करने के लिए, मानने के लिए नहीं. नए बिलीफ सिस्टम को मानना है अभी वो जरूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ उतना स्वीकार करना है कि उसके बारे में सोचे, और फिर सोचकर अगर 1% भी लगे कि लेट्स ट्राई, तो ट्राई करने तक. एक्सेप्ट करना तो बहुत बाद में है, दैट इज ओनली आफ्टर सीइंग द रिजल्ट, जब हमने एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट देखा. लेकिन ये वाला जो बिलीफ सिस्टम है कि लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन, ये इतना इनग्रेन्ड है कि इसका ऑपोजिट कि देर इज नो कॉम्पिटिशन, हम किसी के साथ कॉम्पिटिशन में नहीं है, इसको तो स्वीकार करने में ही काफी रेजिस्टेंस आने वाला है. तो इसलिए पहले जस्ट स्टॉप एंड ओपन योर माइंड कि कोई कुछ कह रहा है, इसके पीछे कोई डीप मीनिंग होगा. सारा दिन में पहली बात तो अपनी एक वो तैयार करें कि किस किस के साथ फील करते हैं कि हम कंपटीशन में हैं, क्योंकि आज कंपटीशन सिर्फ प्रोफेशन में नहीं रहा, घर में भी आ गया है. घर में भी कंपटीशन होगा, एंड इतना सटल होगा कि हम रियलाइज भी नहीं करेंगे कि हम कम्पीट कर रहे हैं.
1: घर में मतलब पति पत्नी में या भाई बहन में,
0: हर एक के साथ हो सकता, आपका किसी के साथ भी हो सकता है ना. किसका किसके, आप सोच के थोड़ी करते हैं ये. घर में स्पेसिफिकली आप सोच के नहीं करेंगे जितना आप ऑफिस में, क्योंकि ऑफिस में बिजनेस में इट्स वेरी क्लियर, इट्स मोर लाइक ब्लैक एंड व्हाइट. द अदर डे आई वॉज इन अ बैंक, बैंक के सीनियर लोगों की एक ट्रेनिंग थी, तो उन्होंने कहा, आई सेड व्हाट इज कॉज ऑफ स्ट्रेस, कहते वी आर नंबर वन एंड वी हैव टू रिमेन नंबर वन, राइट. तो उनसे एक ही बात पूछी कि आप नंबर वन है और आपका इतना जो भी है प्रॉफिट है रेवेन्यू है जो भी, ये इतना है. अब आपको अपनी कैपेसिटी पता है, आपको अपने एम्प्लॉयज की कैपेसिटी पता है, और आपने एक टारगेट सेट कर लिया, इस साल में हम यहां हैं, दो साल में हमें यहां पहुंचना है. अब अगर आप दो साल में इतनी मेहनत करते हैं, सारे एम्प्लॉयज डेडिकेशन मोटिवेशन से करते हैं, आपने सोचा था यहां पहुंचना है लेकिन आप यहां पहुंच गए, जितना सोचा था उससे ज्यादा अचीव कर लिया है ना, तो यहां पहुंच गए, लेकिन आप नंबर वन नहीं है.
1: ओह गॉड, कोई और आ गया है आपसे.
0: ठीक है, आप नंबर वन नहीं है, समबडी एल्स इज नंबर वन, आप नंबर टू या नंबर थ्री है पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में, लेकिन जो टारगेट आपने सेट किया था ना, उससे आपने कई गुना ज्यादा अचीव किया है. विल यू बी हैप्पी और नॉट?
1: नो
0: नो
1: नो.
0: व्हाई?
1: क्योंकि दूसरा आगे बढ़ गया ना.
0: सी दिस इज इट,
1: वन नंबर तो नहीं रहे ना, थर्ड आ गया ना.
0: अब इस पर चिंतन करना चाहिए ना, हमें ये सोचना होगा ना, मैं यहाँ हूँ जीवन में किसी भी चीज में.
1: पहले मैं 60 मार्क्स चाहता था,
0: हाँ,
1: मुझे 80 आ गए.
0: मैंने 60 नहीं, मेरे 80 आए, मतलब मेरी कैपेसिटी से कई गुणा ज्यादा आए ना. आई शुड नॉट बी हैप्पी फॉर दैट.
1: दूसरा अनहैप्पीनेस तो क्रिएट कर रहा ना, दूसरा 90 लेके.
0: अच्छा, मतलब जीवन का लक्ष्य,
1: हाँ,
0: चाहे स्कूल में चाहे करियर में चाहे बिजनेस में, जीवन का लक्ष्य अपनी बेस्ट कैपेसिटी और अपने टारगेट और टारगेट से भी ज्यादा पहुंचना, वो लक्ष्य ना होकर सिर्फ दूसरे से आगे जाने का लक्ष्य. अब लेट्स से इट इज अनदर वे कि यहां तक अभी है, दो साल में यहां पहुंचने का सोचा था, यहां नहीं पहुंचे, यहां पहुंचे, जितना सोचा था उसका नहीं, अभी यहां है, यहां पहुंचना था. सर 60 आपने कहा, 60 है, 80 पहुंचना था दो साल में, 70 पहुंचे, लेकिन नंबर वन है. अभी खुश है?
1: बिल्कुल.
0: सी दिस, नाउ वी विल हैव टू आस्क आवरसेल्फ, व्हाट इज द बिलीव सिस्टम, क्या बिलीव सिस्टम है. 60 है, 80 पहुंचना था, 80 नहीं पहुंचे, 70 पहुंचे, लेकिन नंबर वन है इसलिए खुश है. 80 पहुंचना था, 95 पहुंचे, लेकिन नंबर वन नहीं है,
1: 96 दूसरा पहुंच गया ना,
0: तो खुश नहीं है. अब ये हमें रुक कर अपनी चेकिंग करनी पड़ेगी कि दूसरे से आगे पहुंचना इसमें खुशी है या अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बेस्ट परफॉर्म

0: परफॉर्म करना और जो हमें अर्न करना था, अचीव करना था, जहां पहुंचना था वो प्राप्त करना, उसमें खुशी है।
1: समझिए, मेरी फिल्म बन करती है 100 करोड़ का बिजनेस, और मैं चाह रहा था 70, लेकिन दूसरे की 110 कर जाए तो
0: तो
1: मैं 30 से खुश नहीं हूँ।
0: राइट,
1: मुझे दुख इस बात का है कि मुझे 120 करना है अभी।
0: नाउ दिस विल बिकम द बिगेस्ट कॉज ऑफ आवर स्ट्रेस इन लाइफ। ये हमारी जीवन में खुशी को खत्म कर दुख और टेंशन क्रिएट करने का सबसे इजी साधन है।
1: तो चलिए, मैंने 20 करोड़ की पिक्चर बनाई, मेरी 40 बन गया या 30 बन गया, आई शुड बी कंटेंट?
0: नो, नॉट आई शुड बी कंटेंट, नो, वी आर नॉट सेइंग कि आपने जितना भी अचीव किया उसमें कंटेंट हो जाए, नॉट एट ऑल। इम्पोर्टेंट है आपको आपकी कैपेसिटी पता है, आपने अपनी कैपेसिटी और परिस्थितियों को देखते हुए एक टारगेट रखा, जैसे आपने कहा मूवी बनाई, टारगेट रखा, टारगेट अच्छा रखे, जितना रखना है उसको रखे, टारगेट को अचीव कर लिया, इनफैक्ट टारगेट से भी थोड़ा सा ज्यादा अचीव कर लिया, तो खुश नहीं होना चाहिए?
1: लेकिन मार्केट में दूसरे लोग तो, लोगों ने हमसे बड़ा टारगेट लगाया है ना।
0: अच्छा, अभी अगर दूसरों ने हमारे से बड़ा टारगेट लगाया, कल कोई और उनसे और ज्यादा टारगेट लगाएंगे, परसों कोई और उससे और ज्यादा टारगेट लगाएगा, हम टारगेट किसकी कैपेसिटी के हिसाब से रखेंगे?
1: हम तो देखेंगे कि दुनिया में जो सबसे हाइएस्ट टारगेट लगाया उससे 1% ज्यादा रखेंगे।
0: विल यू बी एबल टू डू दैट?
1: दुनिया तो
0: विच मीन्स, विच मीन्स
1: द रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ, वो तो करते ही है।
0: इसका मतलब हम खुश कब होंगे? जब वील बिकम नंबर वन इन द वर्ल्ड, क्योंकि जैसे ही हम किसी भी फील्ड में यहाँ नंबर वन बनेंगे, हमारे से आगे कोई और है, फिर कोई और है, खुशी कभी नहीं आने वाली है। वील नेवर बी हैप्पी लाइक दिस। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब हम यहाँ से यहाँ अपने टारगेट की तरफ अचीव कर रहे हैं, हम जा रहे हैं अपने टारगेट पे, अगर हमारा फोकस औरों से आगे जाना ना हो, ये मेरा फोकस नहीं है कि मुझे औरों से आगे जाना है, अगर मेरा कंप्लीट फोकस सिर्फ ये है कि मुझे अपना टारगेट अचीव करना है, क्योंकि दो बातों में कितना अंतर है, मुझे अपना टारगेट अचीव करना है, ये एक फोकस है, और दूसरा है मुझे उससे आगे जाना है,
1: सबसे
0: सबसे आगे जाना है, ओके, वो तो फिर और बहुत बड़ा फोकस है। अब अगर मेरा सिर्फ इतना सिंपल फोकस होता कि ये है, यहां मुझे पहुंचना है, तो ये इजी था ना, ये बहुत इजी था। अपनी पूरी मेहनत लगा दीजिए, अपने सारे रिसोर्सेज लगा दीजिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स आप चूज कर लीजिए कि आपको अपना बिजनेस, क्योंकि आज हर चीज कई तरीके से हो सकती है, आपको यहां से यहां जाना है, सपोज मुझे यहां से यहां तक जाना है, बीच में बाधाएं भी तो आएंगी ना, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन मुझे यहां से यहां जाने का तरीका मैं चूज करूंगी। एक है मुझे सीधा भागना है, कोई ऑब्स्टिकल अगर रास्ते में आएगा, मुझे ऑब्स्टिकल के अराउंड अपने को मोल्ड करके क्रॉस करके जाना है, कोई और होगा जो ऑब्स्टिकल आएगा कहेगा मैं तो ऑब्स्टिकल को उखेड़ के फेंक दूंगा, वो उसका जीवन जीने का तरीका है, ये मेरा जीवन जीने का तरीका है। एवरीवन विल चूज देयर वे। कोई और होगा वो कहेगा ऑब्स्टिकल को उखेड़ूंगा भी नहीं, उसको खत्म कर दूंगा, ताकि वो ऑब्स्टिकल, वो व्यक्ति मेरे जीवन में फिर कभी खड़ा ही नहीं हो सकेगा, वो भी एक तरीका है। हर एक के जीवन जीने के तरीके अलग अलग हैं। कम्पीट करेंगे सबके साथ कि इनसे आगे जाना है,
1: कर तो रहे ना लोग
0: खुशी,
1: वो तो खुश है बिकॉज दे नंबर वन अपने बिजनेस में।
0: एक सिंपल रेस में भी क्या सिखाते हैं, जहां एक्चुअल कंपटीशन होता है, चाहे वो रनिंग रेस है, स्विमिंग है, कहीं भी जहां रेस है, तो जब बच्चे स्टार्टिंग लाइन पर होते हैं तो उनको क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा?
1: क्या दिया जाएगा?
0: सीधा देखना, फोकस ऑन योर गोल, अपनी सारी एनर्जी कहां लगानी है, आपको अपने टारगेट पर पहुंचना है, आपको इधर उधर नहीं देखना है। क्यों नहीं इधर उधर देखना है? इधर उधर देखो ना कि मैं किसके आगे हूं, किसके पीछे हूं, मुझे किससे आगे जाना है, किसके पीछे हूं मैं अभी, ये नहीं देखना चाहिए? क्यों सिखाते हैं लुक स्ट्रेट?
1: हमारे स्कूल में जब स्विमिंग का कॉम्पिटिशन था तो मैंने बैक स्ट्रोक, डाइविंग वगैरह सब में मैं फर्स्ट आया था। सिर्फ फ्री स्टाइल में एक दूसरा लड़का मुझसे आगे था, तो उसने एक ही मिस्टेक की कि उसे डर था कि सुरेश पहले ना करे, तो उसने सिर्फ स्विम करते करते ऐसे देखा कि मैं कहां हूं, आधा सेकंड देखा होगा स्विमिंग में करते करते, ऐसे दिखा एक सेकंड और मैं हाथ उधर लगा और ऑलमोस्ट पैरेलल चल रहे थे, मेरा पहले गया उसका टच हुआ, ठप ठप लाइक दिस।
0: नाउ यू गिव अस द आंसर।
1: आई गॉट द चैंपियनशिप।
0: अब आप ये बताइए कि यहाँ क्या हुआ, अगर वो आपकी तरफ नहीं देखते तो कौन पहले पहुंचता?
1: वो पहुंच जाते,
0: वो पहले पहुंचते ना। जैसे ही आप, अब इट्स नॉट अबाउट कौन पहले पहुंचता, बट उनकी जर्नी को देखिए कि आपकी तरफ देखने से उनका फोकस हटा। सिर्फ फोकस नहीं हटा, फियर, इनसिक्योरिटी, ये दो बहुत बड़े इमोशंस हैं जो हमारी एफिशिएंसी को डाउन करते हैं। फियर, ये वो स्प्लिट सेकंड में ये सारे इमोशंस क्रिएट हो जाते हैं। क्यों? हमारी स्पीड, हमारी एक्यूरेसी, हमारी एफिशिएंसी हर चीज में कम होगी, क्योंकि जैसे यहाँ देखा मतलब फियर है, इनसिक्योरिटी है।
1: बड़े बड़े लोगों को फियर होते, उसमें क्या है? मैं भी पहले ऐसे ही समझता था, यार इतना बड़ा एक्टर है उसको मुझसे फियर थोड़ी होगा। जब लोग मुझे आके बोलते थे यार ये आदमी तुझसे इनसिक्योर हो गया, मैंने कहा जा छोड़ो यार, इतना बड़ा सुपरस्टार, इतने बड़े एक्टर, इतने मेरे सीनियर लोग, मुझसे इनसिक्योर हो गए? हाँ है। तो मैंने बोला यार इसको मुझसे कुछ चाहिए होगा। है जो आप कह रहे हो, इनसिक्योरिटी भी है, फियर भी है, फिर भी वो नंबर अच्छी पोजीशन में है।
0: फियर है,
1: तो आप ये कह रहे कि
0: फियर है, इनसिक्योरिटी है, हाँ, अच्छी पोजीशन में है, हाँ, लेकिन खुश नहीं है।
1: अच्छा, अभी फ्रीडम वाली बात आप,
0: फ्रीडम, फियर है, इनसिक्योरिटी है, तो खुश कैसे है?
1: हाँ,
0: जब जितनी देर मेरे अंदर डर है, इवन इफ आई एम नंबर वन,
1: जो बैंक वाला जो नंबर वन,
0: हाँ, वो तो कांस्टेंट फियर में है कि कहीं हमारे से कोई आगे ना चला जाए। तो फियर है, इनसिक्योरिटी है, तो पहली बात तो खुशी नहीं है।
1: एक तो मैं नंबर वन कभी नहीं था,
0: हाँ,
1: ना नंबर टेन था, मैं तो एक कैरेक्टर एक्टर था, फिर भी इनसिक्योरिटी किस बात की?
0: किस बात की इनसिक्योरिटी?
1: कॉम्पिटिशन में भी नहीं था,
0: किस बात की इनसिक्योरिटी? नहीं, ये एक संस्कार होता है, ये एक संस्कार है, क्योंकि जब हम फर्स्ट आते हैं ना, इवन स्कूल में हमने देखा है, जिस स्टूडेंट को फर्स्ट आने की आदत पड़ जाती है वो फर्स्ट में रहकर भी खुश नहीं होता कभी, क्योंकि अब उसके ऊपर एक कांस्टेंट ये इनसिक्योरिटी है कि अब मैं कभी सेकंड ना आ जाऊं। तो फर्स्ट पहुंच कर भी, फर्स्ट रहकर भी इतना टाइम फियर और इनसिक्योरिटी है, क्योंकि अब जो खुशी का जो वो बन चुका है पैरामीटर, वो मार्क्स, टारगेट, प्रॉफिट नहीं, बट नंबर वन पर टिके रहना, तो वो है, वो एक कांस्टेंट फियर और इनसिक्योरिटी है। अब तो कांस्टेंट, वो मेरे जीवन का साथी बन जाएगा फियर एंड इनसिक्योरिटी। एंड सिर्फ फियर एंड इनसिक्योरिटी नहीं, फिर जेलसी भी आएगी उसके अंदर। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से देखते हैं। लेट्स से हम एक ड्राइव पर जा रहे हैं, दो गाड़ियां हैं, दोनों गाड़ियां अलग अलग हैं, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, डेस्टिनेशन भी सेम है, ए से बी तक पहुंचना है, दो कार्स में दो परिवार है, ठीक है। अब जब तक वो अपनी ड्राइव पर है, अब परिवार खाते पीते, हंसते खेलते, गाने सुनते, बातें करते हुए अपनी जर्नी पर है, ब्यूटीफुल जर्नी, पहुंच जाएंगे ना, चार साढ़े चार घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन चलते चलते एक थॉट क्रिएट कर लेते हैं कि मुझे इससे आगे जाना है, रेस करते हैं। अब एक बार ये एक थॉट क्रिएट कर ले, रेस थी नहीं, वो अपनी यात्रा पर थे, ये अपनी यात्रा पर थे, अपने अपने परिवार से एंजॉय कर रहे थे, लेकिन एक थॉट क्रिएट कर ली इनसे आगे जाना है, अब बाकी की ड्राइव कैसी हो जाएगी? पूरा फोकस ही चेंज हो जाएगा, हंसना खेलना बंद हो जाएगा, खाने पीने की तरफ ध्यान नहीं देंगे, यहाँ परिवार से बात करने की बजाय सारा फोकस क्या होगा, मुझे उसके आगे जाना है। अब जो जर्नी एंजॉय हो रही थी, हंस खेल कर पहुंच जाते वहां पर जहां जाना था, अब उस जर्नी में स्ट्रेस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, अब उस जर्नी में गुस्सा भी आना शुरू हो जाएगा अगर थोड़ा भी अपने आप को उनसे पीछे देखा। अब अगर फैमिली जो गाड़ी चला रहे हैं मेन, उनसे अगर फैमिली बात करने की कोशिश करे, कहेंगे चुप करो, मेरा पूरा ध्यान किस तरफ है, मुझे उससे आगे जाना है। पूरा पर्सपेक्टिव उस जर्नी का चेंज हो जाएगा एक थॉट, एक बिलीफ सिस्टम के चेंज होने से कि मुझे उसके आगे जाना है। अब दोनों कार्स अलग अलग हैं, कैपेसिटी दोनों गाड़ियों की अलग अलग है, दोनों का चलाने का तरीका भी अलग अलग है, दोनों की सेफ्टी

0: पैरामीटर्स की डेफिनेशन अपनी अपनी है. अब अगर एक पाए कि मैं दूसरे से आगे जा ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उसकी गाड़ी ज्यादा पावरफुल है, वो ड्राइव फास्ट करता है, वो सब, ये वाला सिर्फ उससे आगे जाने के लिए कोई ना कोई रूल ट्रैफिक का, सड़क का तोड़ देगा, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है अब आगे जाने के लिए. देयर इज नो वे दैट आई कैन गो अहेड इफ आई ड्राइव सेफ एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द रोड. तो फिर या तो रेड सिग्नल तोड़ देंगे, या ओवर स्पीड कर देंगे, या रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर देंगे, या उनको पीछे करने के लिए भी कुछ कर देंगे. कुछ भी करेंगे सिर्फ उनसे आगे जाने के लिए, मतलब अपने वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे. आज जो हम इतना एथिक्स और प्रिंसिपल्स में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उसका रीजन एक ही है, हमें दूसरे से आगे जाना है. ये कॉम्प्रोमाइज, अगर हमें दूसरे से आगे ना जाना होता, हम कभी वैल्यूज प्रिंसिपल्स पर कॉम्प्रोमाइज ना करते, क्योंकि हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते.
1: वैल्यूज एंड प्रिंसिपल सिस्टर तो बिना कॉम्पिटिशन के भी कई लोग नहीं करते ना.
0: अच्छा, अब अगर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे, एक जो भी आत्मा अपने वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स पर कॉम्प्रोमाइज करेगी, मतलब डिसऑनेस्टी यूज करेगी, कोई अनएथिकल प्रैक्टिस यूज करेगी, कहीं थोड़ा चीटिंग एलिमेंट भी हो सकता है, जो ये सब एलिमेंट्स चूज करेंगे, एक खुशी नहीं हो सकती, दूसरा आत्मिक शक्ति, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज किया है अपने वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स पे, सोल पावर कम होती जाएगी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमने लास्ट टाइम देखा, कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो रहा है.
1: सबसे बड़ी अच्छी बात आपकी एक मुझे लगी जो इस एपिसोड में, कि आपने कहा था कि अंत में देखो कि वो बंदा सुखी है.
0: Yes. नहीं हो सकते,
1: गाड़ी तेज चलाकर बच्चे पीछे से हाथ भी लगाए तो हाथ मत लगाओ, मतलब ज्यादा स्पीड में ज्यादातर राइट लेफ्ट हो जाए मतलब गाड़ी उलट जाएगी.
0: चलो नहीं उल्टी,
1: पिकनिक पे जा रहे हैं सारा मजा खराब.
0: एब्सोल्युटली, जीवन जी रहे थे सारा मजा खराब.
1: निकले घर से किस लिए थे,
0: जीवन किस लिए जी रहे थे,
1: ना ड्राइव पे,
0: ड्राइव पे, ये भी तो जीवन ड्राइव थी. खुश रहना था, रिश्ते प्यार से चलाने थे, खाते पीते गाने बजाते मौज करते करना था. जीवन कैसे
1: तो ऐसी होता ना सिस्टर, हाँ. जब मैं हैदराबाद में यहाँ से गया बॉम्बे, किस लिए गया,
0: हाँ.
1: अच्छा कोई मेरी हॉबी थी फिल्म एक्टिंग,
0: हाँ.
1: थोड़ी बहुत फिल्म में काम कर लेंगे, थोड़ा खाना वाना अच्छा मिल जाएगा, गाड़ी वाड़ी रखेंगे, तो आई वाज अर्निंग के लिए और पैशन के लिए काम करते थे. शुरू कहाँ होता है, बाद में थॉट्स कहाँ चले जाते हैं, कॉम्पिटिशन में आदमी इतना थक जाता है.
0: ये हुआ एग्जैक्टली, शुरू कहाँ हुआ,
1: पिकनिक,
0: सुबह सुबह अपनी गाड़ी में बैठे, क्लियर थे मुझे यहाँ पहुँचना है, प्यार से पहुँच जाते, सिर्फ बीच में कहीं चलते चलते ये बिलीफ सिस्टम, क्योंकि मेजोरिटी का ये बिलीफ, मेजोरिटी क्या, इसको तो कहेंगे ऑलमोस्ट हम सबका ये बिलीफ सिस्टम है, तो वो बिलीफ सिस्टम पूरे जर्नी के तरीके को ही बदल देगा. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कॉम्प्रोमाइज जो आ जाएगा, एंड इसका जो लॉन्ग टर्म डीपर इम्पैक्ट है, कि सिर्फ औरों से आगे जाने के लिए जो हम कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट कर लेंगे, वो कार्मिक अकाउंट हमारे सामने आज भी आएंगे और हमारे सामने आने वाले समय में भी आएंगे, और हो सकता है कि ये कॉस्ट्यूम चेंज करने के बाद भी आएंगे.
1: अगले जन्म में
0: अगर धोखा दिया, झूठ बोला, किसी को एक्सप्लोइट किया, ये सब कुछ करके आगे पहुंच भी गए, आज भी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि अनएथिकल, हाँ आज मटेरियलिस्टिकली सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, पोजीशन में भी नंबर वन हो सकते हैं, दैट्स ऑल पॉसिबल, लेकिन ये सब करते हुए जीवन के सारे पहलू में, रिश्तों में, सेहत में अपनी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अपनी इमोशनल हेल्थ में, इन कंट्रोल, पावरफुल एंड हैप्पी, नॉट पॉसिबल.
1: ये बात सब हम सब ने देखी होगी ना,
0: नॉट पॉसिबल,
1: आस पास अड़ोस पड़ोस फ्रेंड्स में,
0: एब्सोल्युटली
1: सब ने किसी ना किसी का एग्जांपल तो सभी को मालूम होगा ना,
0: yes.
1: कि ये आदमी ने ये एथिकल प्रैक्टिस नहीं करके ये किया, आज जेल में है,
0: right.
1: फलाने की फैमिली
0: वो
1: कुछ
0: तो
1: नहीं
0: बड़े है.
1: है
0: कोई जेल में है, ये तो चलो फिर कुछ कुछ केसेस होंगे, सिर्फ मेजोरिटी का देखना है, कुछ एक्सट्रीम फिर हम उसको अपने साथ नहीं रिलेट कर सकते.
1: तो रोज पढ़ते ना सिस्टर, फलाने ये स्कैम किए, कितने महीनों से
0: फिर कुछ है, अगेन वो कुछ कुछ लोग हैं, वो कुछ कुछ लोग हैं, उसका तो प्रैक्टिकल में दिख रहा है कि ये कॉन्सिक्वेंस है. वी आर टॉकिंग अबाउट कोई भी कॉन्सिक्वेंस आपको बाहर नहीं दिख रहा, बाहर सब कुछ अच्छा है. आपके पास बाहर सब कुछ अच्छा है, इतने बंगले, इतनी गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, परिवार है, सब कुछ है. लेकिन अगर यात्रा पर कोई दूसरे तरीके अपनाए थे ये सारा कुछ अचीव करने के लिए, क्योंकि सोचा हमें सिर्फ नंबर वन पर होना है, तो आंतरिक खुशी नहीं हो सकती. आज
1: नींद भी अच्छी नहीं आती.
0: हाँ, नींद नहीं अच्छी आएगी, स्वास्थ्य पर भी उसका असर पड़ेगा. अब इसी को थोड़ा सा एक शिफ्ट करना है, एक थॉट है सिर्फ, क्योंकि कार्मिक अकाउंट्स जो क्रिएट हो रहे हैं, आज धोखा दे दिया, ये कर दिया, करते टाइम क्या कहा, टारगेट है, पहुंचना ही है, करना ही है, लेकिन फिर उसका जब कॉन्सिक्वेंस आएगा तब कहेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने तो किसी के साथ कुछ किया ही नहीं. क्योंकि जब कर रहे थे हमने कहा ये तो नेचुरल है, आगे जाने के लिए ये सबको किया ही जाता है, जो भी करेंगे वो मेरे सामने वापस भी आएगा. इस एक बिलीफ सिस्टम को थोड़े दिन के लिए, अभी चेंज भी नहीं करना है, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी के साथ खेलना है, सारा दिन एक्सप्लोर करना है. और सारा दिन देखो, सुबह से जीवन में, करियर में, रिश्तों में, हर जगह देखो, हम यात्रा पर हैं. इट्स माय जर्नी ऑफ लाइफ, माय प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, आई एम ऑन अ जर्नी. इस जर्नी में मुझे ये अचीव करना है, हमें अपने गोल्स, अपने टारगेट सेट करने हैं. टाइम पीरियड कितनी देर में मुझे उस गोल तक पहुंचना है वो भी मुझे सेट करना है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, चलने का तरीका, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स. अगर 80 की स्पीड पे गाड़ी चलानी है, दैट्स सेफ फॉर मी, मैं इंजॉय करती हूँ अगर 80 पे चले, लेकिन दूसरा 100 पे जा रहा है और उससे आगे जाने के लिए,
1: और तीसरा 120 पे जा रहा है,
0: yes.
1: कहाँ तक करेंगे,
0: कहाँ तक करेंगे, नहीं करते जाते हैं लेकिन फिर अपनी ड्राइव को इंजॉय नहीं करते हैं.
1: जैसे आपने कहा ना मुझे कि भाई वो तो कोई जेल में है या स्कैम में है, पकड़ा गया है, वो तो दिख रहा है, लेकिन छोटी छोटी बातें, उन छोटी छोटी बातों से याद आया, व्हाट अबाउट द जो टीवी सीरियल्स पे दिखाते हैं,
0: हाँ.
1: और जो हमारी घरों में होता है,
0: राइट,
1: बहुओं में, सास बहु में,
0: एब्सोल्युटली,
1: फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मतलब रिश्तों में जो पेन है कॉम्पिटिशन का,
0: हाँ.
1: वो तो मैं भूल ही गया.
0: रिश्तों में बहुत कॉम्पिटिशन है आज, सक्सेस की डेफिनेशन में, इवन हस्बैंड एंड वाइफ के बीच कंपटीशन.
1: बच्चा अगर बोल दे कि आई लव माय मदर मोर देन डैडी, तुम बहुत डांटते हो, गंदे हो, मेरी मम्मी अच्छी है, तो वह कंपटीशन शुरू हो जाता.
0: क्यों, संस्कार बन गया ना.
1: प्यार कहाँ गया मेरा और मेरी पत्नी का, फिर
0: हम क्या करेंगे. अब एक बार मेरा संस्कार बन गया, सपोज मैंने ऑफिस में रखा था वो संस्कार, क्रिएट किया कि मुझे आगे जाना है, आगे जाना है,
1: मतलब
0: आगे.
1: ऑफिस से घर पे आ जाता है संस्कार.
0: संस्कार तो यहाँ रहता है ना.
1: हाउ कैन इट बी
0: संस्कार, जैसे आपने गुस्सा ऑफिस
1: तो
0: में किया.
1: कंपेटिटर है ऑफिस में.
0: नहीं, गुस्सा ऑफिस में किया. कंपटीशन जो संस्कार है वो बाहर नहीं है, संस्कार यहाँ है. गुस्सा ऑफिस में किया, घर पर आता है ना, फिर आकर घर पर
1: तो
0: आता है ना. स्टाफ के साथ क्रिएट किया, बच्चों पर आता है ना.
1: हाँ जी, वो भी.
0: क्यों? क्योंकि संस्कार बन गया, जो किया वो संस्कार बन गया. अब संस्कार तो मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गया ना.
1: तो मतलब मैं जिनसे प्यार करता हूँ,
0: हाँ?
1: मेरे बच्चे से, बीवी से, फैमिली से, आपस में भी कंपटीशन करने लग जाऊंगा अगर मेरा संस्कार बन
0: अब
1: गया. तो
0: मेरा संस्कार बन गया कि आई हैव टू बी
1: कम्पीट. तो मैं दुश्मन से कर रहा था.
0: कम्पीट मतलब आई हैव टू बी नंबर वन
1: इवन एट होम.
0: I have to be number one is my संस्कार now. So, आप फैमिली की बात कर रहे हैं, हम ये देखते हैं कि सोशल वर्क में भी आएंगे, सेवा में भी आएंगे, यहाँ तक कि एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में भी आने के बाद वो संस्कार साथ में आता है. I have to be number one. क्योंकि वो मेरा संस्कार है. संस्कार ये नहीं चूज करता कि ये मुझे यहाँ एक्टिव होना है, यहाँ एक्टिव नहीं होना है. संस्कार मीन्स माय पर्सनालिटी. जहां हम निस्वार्थ कर रहे होंगे ना, एक समाज सेवा कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं है. एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में है, जीरो मनी इन्वॉल्व्ड है, कोई इनकम नहीं है, कुछ नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं, टारगेट नहीं, बोनस नहीं, अचीवमेंट कुछ नहीं है, लेकिन संस्कार का क्या करेंगे. कि आई हैव टू बी नंबर वन, वो तो वहां भी आता है. तो इसलिए फैमिली में इट्स अ संस्कार, आई हैव टू बी द बेस्ट, मुझे आगे होना है सबसे. कहीं भी मुझे लगे कि दूसरे को मेरे से ज्यादा अप्रिसिएशन, दूसरे को मेरे से ज्यादा पूछा जा रहा है, सफलता मिल रही है, आई एम इन कॉम्पिटिशन, वेरी सटल कॉम्पिटिशन विद द अदर पर्सन.
1: सिस्टर, ये संस्कार का तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि जो मतलब मैंने अभी तक समझा था कॉम्पिटिशन सिर्फ दुश्मन से होता है, कम्पिटिटर से. ये संस्कार बन के घर पर भी आ जाएगा और मुझे ये परमानेंटली तकलीफ देगा, इसका मुझे अंदाजा नहीं था.
0: संस्कार मींस मुझे आपसे आगे होना है.
1: हाँ, तो ये तकलीफ तो दे रहा है ना, तो तकलीफ भी हो रही है ना,
0: तो खुशी.
1: यही बात मैं अगले एपिसोड में आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही आई ओपनर है. ये कॉम्पिटिशन भी पेन दे रहा है एंड में.
0: यस,
1: तो थैंक यू सो मच सिस्टर, अगले एपिसोड में मिलते हैं और इसे कंटिन्यू करते हैं.
0: थैंक यू
1: सो मच, नमस्कार. थैंक यू.
2: एवरीथिंग दैट वी डू, whether at work or in family, let us set our goals and use our skills and qualities to achieve them. The focus should be on our own journey, not in reference to others around us. If we keep striving to go ahead of others and appear to be in a race, then stress, anxiety, fear, and jealousy will be our normal emotions. If we focus only on our goal, then there will be no insecurity. We will be confident and motivated. This stability will give us the energy which will empower us to achieve our goal. When we create insecurity and jealousy, we will achieve less than our capacity. It is because we want to go ahead of others, we compromise on our values, principles, and ethics. Compromising on values depletes the power of the

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा 3 दिन बिल्कुल नहीं, तो वो 3 दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: झुमका, नाक में बत्ती, कान में झुमका, नाक में बत्ती, हाथ में जलती अगरबत्ती।
1: अरे नहीं यार, मगरबत्ती। अरे बोला ना अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती।
0: अगरबत्ती कछुआ था, पास से बैठा पानी था।

0: चलता है, मांग में सिंदूर भरता है। माथे में लगाए बिंदी, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी। इस पगड़े से बट पर वोट मतलब क्या? माथे रोज लगाए बिंदी, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी। हिंदी में अलजेब्रा साइंस।
1: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू। आप सच बोलेंगे, देयर इज नो रीजन। कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्कार, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना एमपी छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूं और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ज्ञान की कुछ बातें। आशा करती हूं आप हेल्दी वेल्दी होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं चिंता और भय रूपी दो दुश्मन की। कहा गया है कि चिंता रावण की बेटी है। प्रथम दृष्टि में यह बात पूरी तरह से सही प्रतीत होती है, क्योंकि चिंता बहुत कुरूप होती है, परंतु फिर भी मनुष्य इसे छोड़ नहीं पाते, इसी से तंग होते हैं और इसी में उलझे भी रहते हैं। चिंता मनुष्य को रावण मनोविकारों और दुर्बलताओं का बंदी बनाकर रखती है। उसी तरह देखते हैं कि भय पर विजय अनिवार्य है। अगर रावण का एक सर्वशक्तिवान इसका बेटा भी है जिसका नाम है भय, अगर कोई चिंता के चंगुल से निकलने की ठान भी लेता है तो फिर उसका यह भाई उसके आगे आ खड़ा होता है। चिंता और भय ये दोनों मिलकर मनुष्य को रावण का गुलाम बनाकर रखते हैं और निरंतर उसका शोषण करते हैं। भय कुरूप है जिसका मुख कभी मनुष्य देखना भी नहीं चाहता है। यह छुपकर वार करता है और इसके बारे में इसके वार को बड़े बड़े योद्धा बुद्धिमान भी पहचानने में चूक जाते हैं। इसका सांकेतिक चित्रण रामायण में रावण के सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद के रूप में दिखाया गया है, जो अपनी गर्जन से सभी को भयभीत कर देता था। जीवन में सफलता पाने और रावण की जेल से छूटने के लिए भय पर विजय अनिवार्य है। भय का वार बाहर भी और अंदर भी होता है। भय दोनों ही तरफ से वार करता है, बाहर से भी और अंदर से भी। बाहरी रूप है असफलता का, पराजित होने का, प्रतिष्ठा और पोजीशन को खो देने का, आर्थिक नुकसान का, दुश्मनों और ईर्ष्या करने वालों का, दुर्घटना, अनहोनी, बीमारी या मृत्यु आदि का। आंतरिक भय का रूप होता है अपने पर विश्वास ना होने का, जैसे अपनी कार्य क्षमता पर संदेह का भय, जिसे नर्वसनेस भी कहते हैं। अपने किए गए गलत कर्मों या पापों की आत्मग्लानी से उत्पन्न भय, अज्ञात भय, अनुमान एवं आशंका जनित भय, इच्छाओं के अपूर्ण रह जाने का भय, अपनों की उपेक्षा का भय, भविष्य की अज्ञात गति का भय, काल्पनिक भय और अंधविश्वास जनित भय इत्यादि। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपसे फिर आकर मिलती हूँ और अपनी चर्चा इसी तरह जारी रखते हुए आइए सुनते हैं इसके

तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और आगे की चर्चा हम जारी रखते हैं। चिंता भय रूपी दो दुश्मन। भयभीत व्यक्ति जो होता है आशंकित रहता है। डर की बीमारी लोभ मोह आलस्य या अहंकार की तरह हमेशा प्रकट नहीं होती। यह परिस्थिति आने या कुछ भी अनचाहा होने की प्रकट हो जाती है। यह डर मनुष्य के मन में कई सीमाएं बना देता है जिनमें मनुष्य सीमित होकर ही रह जाता है और बाहर निकलने की कोशिश करते ही भय का नागफन फैला लेता है। जैसे कि यह विचार कि मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरी ताकत ही नहीं, मेरा भाग्य बस यहाँ तक ही मेरा साथ देगा, इससे आगे नहीं, इससे ज्यादा का सोचते ही असफलता या अनिष्ट का अज्ञात भय प्रकट हो जाता है। समस्या हो या अवसर, दोनों ही हालात में या जो भयभीत जो व्यक्ति आशंकित ही रहता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मन में जो बाहरी डर है उनके सच होने की कई संभावनाएं उसे नजर आने लगती है। उदाहरण के तौर पर घर से बाहर निकलने पर कोई भी व्यक्ति किसी दुर्घटना से घायल हो सकता है, लेकिन ऐसा सोचकर लोग घर से बाहर निकलना नहीं छोड़ देते, लेकिन सावधानी के संस्कारों को विकसित करते हैं। एक होता है, परंतु क्या होता है, भयभीत व्यक्ति का ध्यान जो है सावधानी और समाधानों की जगह केवल अशुभ संभावनाओं की ओर टिका रहता है। भय नकारात्मकता की ऊंची दशा की ओर बढ़ने का नाम है और इस स्थिति में चाहे व्यापार या व्यवहार हो अथवा पद प्रतिष्ठा या जीवन के समाप्त होने की कोई भी संभावना भयभीत व्यक्ति को वही कई प्रकार से दिखाई देती है। यदि यह कमजोरी ज्यादा बढ़ जाए तो मानसिक रोगी में बदल जाती है। आंतरिक भय इच्छाओं की व्याकुलता, मनोविकारों से उत्पन्न दुर्बलता और आशाओं की पूरा होने न होने के अंदेशों द्वारा सताता है, जिनका स्वरूप होता है अनुमान, दुखद स्मृतियों और नकारात्मक ख्यालों की बेचैनी व घबराहट। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपसे फिर आकर मिलते हैं और तब तक के लिए सुनते हैं इस गीत को।

तो स्वागत है आपका फिर से इस कार्यक्रम में। और चर्चा हम अपनी जारी रखते हैं इसी तरह, चिंता व भय रूपी दो दुश्मन, हिम्मत का टूट जाना ही मूर्छा है। ये सारे एहसास मन बुद्धि के आगे धूम की तरह छा जाते हैं, जिससे बुद्धि को सोचने समझने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। और ऐसे में बुद्धि मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों का निदान नहीं कर पाती और व्यक्ति उन्हीं विचारों से घायल और निराश हो जाता है। इन्हें ही हम रावण के शक्तिशाली मायावी बेटे मेघनाद द्वारा बादलों में छिपकर किए गए गुप्त प्रहार कह सकते हैं। जो लक्ष्य में मन लगाए हुए लक्ष्मण को मूर्छित कर देते हैं। हिम्मत का टूट जाना ही मूर्छा है और ईश्वरीय ज्ञान की संजीवनी इस मूर्छा का उपचार। लेकिन उस संजीवनी को लाने वाले हनुमान समाप्त कर एक परमात्मा राम के निश्चय और बल के उमंग उत्साह में उड़ने वाले हनुमान ही हो सकते हैं। देखो तय भय के मूल में मुख्य दो बातों का अभाव। भय का समाधान भय से भागना या उससे जूझते रहना। मतलब भय से भागना और मतलब उससे जूझते रहना होता है। नकारात्मकता से व्यक्ति जितना ही जूझता है उतना ही फंसता है, क्योंकि इस जूझने की प्रक्रिया में भी वह ध्यान तो नकारात्मकता की ओर ही देता है। इसीलिए 100 झूठ को गलत सिद्ध करने की मेहनत करने की बजाय एक सत्य को दृढ़ता से अपना लिया जाए तो 100 झूठों से युद्ध करने की हाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। भय के मूल में जो होता है मुख्य दो बातें हैं, इसमें मुख्य दो बातों का अभाव भी होता है। तो या तो ज्ञान का अभाव या फिर अपनी शक्तियों का वो भूल जाना होता है। यदि ज्ञान की जागृति है तो यह वह जो भय है वो भय को उत्पन्न ही नहीं होने देती, और शक्ति है तो भय विचलित नहीं कर सकता। आत्मा उस परिस्थिति या समस्या को जीत लेती है। परमात्मा की शिक्षाएं ज्ञान और शक्तियों का महासागर है। जब मनन चिंतन द्वारा इस सागर का मंथन किया जाता है तब ज्ञान गुणों के अनेक रत्न एवं संजीवनी प्राप्त होती है एवं ज्ञान के गुह्य अनुभव आत्मा को भूली हुई शक्तियों को जगा देती है। यही अनुभव आत्म स्थिति को अचल बना देते हैं। यही अचलता वास्तविक अमरता है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत।

तो स्वागत है आपका फिर से इस कार्यक्रम में और हम अपनी आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। तो हमारा आज का विषय है चिंता को भय रूपी दो दुश्मन। परमात्मा के संग का रंग एक होता है, परमात्मा के संग का रंग आत्मा को निर्भय और साक्षी बना देता है। अर्जुन की भांति सर्वशक्तिमान परमात्मा को सदा अपने सारथी यानी कि मार्गदर्शक के रूप में याद रखने वाले निर्भय हो जाते हैं। अंगद की तरह परमात्मा के एक बल एक भरोसे पर अपने संकल्प का कदम जमा लेने वाले भी सर्व संदेहों से मुक्त हो जाते हैं। हनुमान की तरह एक बार राम नाम लेकर अर्थात परमात्मा को याद से परमात्मा की याद से चाहे विशाल और जब चाहें

अघूम हो जाते हैं और अपने उमंग उत्साह की उड़ान से समस्याओं के कैसे भी सागर को पार कर जाते हैं और निर्भय रहते हैं। विशाल होना अर्थात ऊंचा मनोबल और लघु होना अर्थात विनम्र और सरल होना, यहाँ शारीरिक रूप से छोटे या बड़े होने की बात नहीं बल्कि परमात्मा की याद की शक्ति से समय अनुसार शक्ति को धारण करने की बात है। जब भाव और भावना से परमात्मा से दिल का संबंध जोड़ लिया जाता है तो उसके संग का रंग आत्मा को निर्भय और साक्षी बना देता है। आत्मा की अनुभूति जो होती है, आत्म अनुभूति और परमात्मा के साथ जो होता है, परमात्मा की अनुभूति चित्त को उन विकारों से मुक्त कर देती है जो अशुद्ध कामनाओं के अपूर्ण रह जाने का भय पैदा करते हैं। परमात्मा प्रेम की लगन अंतरात्मा को पवित्र कर देती है और पवित्रता आत्मा को सुखी और संतुष्ट कर देती है। फिर आत्मा स्वयं में ही इतना संपन्न अनुभव करती है कि ना तो उसे कुछ बाहर से पाने की लालसा ही बांध सकती है और ना ही कुछ खो जाने का भय भयभीत कर सकता है। इस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान आत्म अनुभूति योग के निराले अनुभव परमात्मा प्यार और संबंध की अनुभूति एवं दिव्य संस्कारों की पवित्रता आत्मा को ऐसा समर्थ बना देती है जो रावण का कोई भी रूप या विघ्न आत्मा को भयभीत नहीं कर सकता। और यही वो अमोघ शास्त्र है जो हमें सदा काल के लिए विजयी बना देते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए। ओम शांति।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। पर स्थिति किसी और की स्थिति, वो पर स्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सबने कहा, हमने भी मान लिया, सबने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

सब बकवास है, सब बकवास, सब बकवास है, सब बकवास। बालू मेहता जिसकी चलती है हुकूमत उसकी है दुनिया का दस्तूर यही, सब गलत यहाँ ताकत ही सही, सब बकवास। किसने की प्रेम की बात उसे हमारे सामने लाया जाए, हम उसे सख्त सख्त सजा देंगे।

0: हमने कहा था ना कि बाजू में है ताकत जिसकी, चलती है हुकूमत उसकी।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। Lifestyle is not only about what we are eating, drinking, wearing. Lifestyle is about what we are thinking, speaking, behaving. That's my lifestyle.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो।

परमिट परमिट परमिट परमिट के लिए मरमिट परमिट परमिट परमिट परमिट के लिए मरमिट परमिट बिना

देखो ये तमाशा पहुँचे वहाँ से थाने, हुआ ये हम पे सितम, वहाँ जकड़े गए हम, मांगा परमिट जो उद्यम, हाय हाय हमने कहा ना ना, परमिट परमिट परमिट परमिट के लिए मरमिट, परमिट बिना इस जहाँ में दो दिन बिना दिया जाए, परमिट।

एक दुखा पर कहा तो जहर मित्र को बोला वो सितमगर क्या क्या परमित को दिखाना परमित परमित परमित परमित के लिए मरमित परमित बिना इस जहां में दो दिन बिना दिया जाए परमित परमित।

रोजा दूध का हुक्का भरा, बोला क्या करो है तेरा, आज से पहले जरा परमिट तो दिखाना, परमिट परमिट परमिट के लिए मरमिट, परमिट बिना इस जहां में दो दिन बिना दिया जाए, परमिट परमिट परमिट परमिट के लिए मरमिट, परमिट बिना इस जहां में दो दिन बिना दिया जाए, परमिट परमिट परमिट।

तू कहे महाराष्ट्र तेरा, वो कहे गुजरात मेरा, एक का पंजाब घर है, एक का मद्रास तेरा। आग में जलता बिहार, जोश में बंगाल है, उस तरफ देखो कि सरहद पर खड़ा भोचाल है।

मत करो टुकड़े वतन के, मत बनो फिर से गुलाम। एक दिल हम, एक लौ हम, एक हमारी सुबह शाम। रंग कितने ही हमारे, एक मगर तस्वीर है। जो हमें बांधे वो धागा है, नहीं जंजीर है।

बुलाती हूँ, शाम को मत खाओ।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।